मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 37 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ट्यून कर सकते हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं उषा टंडन और साथियों के गाये देशभक्ति गीत से। ये वही धरती है जहां सूरज जैसी ऊर्जा है, चांद जैसी शीतलता है और हर दिल में अपने देश के लिए सम्मान और अपनापन बसता है। आइए इसी गर्व, इसी प्रेम और इसी भावना के साथ सुनते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत।

इस देशभक्ति गीत के बाद प्रस्तुत है शर्मा बंधुओं के स्वर में भजन। मां जगदम्बा केवल शक्ति का स्वरूप नहीं बल्कि करुणा, ममता और विश्वास की भी प्रतीक हैं। उनके चरणों में झुकते ही मन को एक अद्भुत शांति का एहसास होता है।

0: अभी आपकी सेवा में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन। आलेख और स्वर है शिवसागर त्रिपाठी का।
1: प्रकृति स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर है। प्रकृति में विविधता है, अतः प्रत्येक जीवधारी अपने अपने स्वभाव के अनुरूप स्वभाव, रुचिकाल, अवस्था, परिस्थिति के अनुसार प्रकृति से जीवन शक्ति खींचकर पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। प्रकृति के भंडार में स्वास्थ्य संबंधी अकूत संपदा भरी पड़ी है। प्रकृति में प्रत्येक लक्ष्य पूर्ति के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। धूप, जल, वायु, मिट्टी आदि निरोगी काया के लिए यथेष्ट शक्तियां विद्यमान है। आवश्यकता है मनुष्य इसके विज्ञान को जाने और उपयोग करे। मानव प्रकृति का ही अंश है। प्रकृति का स्वभाव आनंद है। आनंद, शांति, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य तथा आरोग्य सभी शक्ति गुणों का नाम ही प्रकृति है। इसलिए प्रत्येक जलचर, थलचर तथा नभचर पुष्पित और फलित हो रहे हैं। प्रत्येक प्राणी एक जटिलता का पुंज है। इस जटिलता की विविधता अपने अपने गुणों के अनुसार स्वास्थ्य के तत्व प्रकृति से खींचकर स्वस्थ, आनंदित और बढ़ सकते हैं। प्रकृति इन अनुदानों और वरदानों की मुक्त वर्षा सभी के लिए बिना भेदभाव के अविरल रूप से करती रहती है। इस लाभ को लेने के लिए प्रकृति अनुशासन प्रत्येक को अपनाना होता है। स्वाभाविक स्वास्थ्य प्रत्येक योनि का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार का उपभोग मानव को छोड़कर सभी योनियां कर रही हैं, अतः सब स्वस्थ व आनंदित है। प्रकृति में सभी रसों का भंडार है। जिसे जिस रस की आवश्यकता है वो प्रकृति से लेकर आनंद में रह सकता है। मधुमक्खी मधुरस लेकर, सर्प विष, नींबू खट्टा रस, करेला कड़वा रस अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकृति से लेकर स्वस्थ और प्रसन्न है। प्रकृति केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं देती बल्कि अस्वस्थ रहने वाली भूलों को सुधारती भी रहती है। शरीर में संचित विषों, गंदगी, अवांछनीय तत्वों को शरीर से निष्कासित भी करती रहती है। प्रकृति इंद्रिय लोलुपता, बस खान पान, असंयम, थकान, जीवन शक्तियों की न्यूनता आदि को स्वमय संतुलित करती रहती है ताकि स्वस्थ रहा जा सके। प्रकृति इतनी दयालु व सक्रिय है कि शरीर के अवांछनीय तत्वों से स्वयं संघर्ष कर उन्हें परास्त करती रहती है। प्रकृति ने मानव को इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न स्वस्थ और दीर्घजीवी प्राणी बनाया है। आरोग्य व उत्तम स्वास्थ्य का राजमार्ग प्रकृति अनुशासन में निहित है, जिसके लिए न विशेष श्रम की आवश्यकता है, न धन की, न प्रयासों की और न ये चिंता का विषय है। मूक वनस्पति अपनी रुचि व आवश्यकता अनुसार मिट्टी, पानी, धूप, वायु से आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर हरी भरी व स्वस्थ रहती है। घने जंगल, हरे भरे, उनका सौंदर्य भरा यौवन कितना शांत और मादक है, कितना मनमोहक है, कितने जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है। प्रतिस्पर्धा करती लताएं, गगनचुंबी पेड़ कितने स्वस्थ और मस्त हैं। संघर्ष करना, आगे बढ़ना उनकी प्रकृति है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी सभी योनियों से अधिक रोगग्रस्त है। प्रकृति की अवज्ञा का कारण रोग है। शरीर के प्रति मानव के अत्याचार असंख्य हैं। शरीर ही नहीं, मन और आत्मा के प्रति भी उसके अत्याचार कम नहीं है। यही कारण है कि मानव रोगों और मनोविकारों का पुंज बन गया है। मनोविकारों का वशीभूत मानव भय, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, लोभ, वासना के दुखदायी भंवर जाल में फंसकर स्वास्थ्य को चौपट कर लिया है। रोग और शोक के पारावार में बुरी तरह बह रहा है। रोग हमारे शत्रु नहीं, मित्र भी हैं। रोग प्रकृति की ऐसी क्रिया है जो शरीर की सफाई करती है, मन को सहज और सरल बनाती है, हृदय भावों को निर्मल करती है। रोग प्रकृति का भाव भरा संकेत है कि स्वयं पर अत्याचार न किया जाए। यद्यपि रोग प्रतिकार का फल है, फिर भी ये पहले विषम अवस्था को मारता है। योग स्वास्थ्य लाभ का एक अवसर है। प्रकृति अनुशासन में चलने का भाव भरा संकेत। रोग के प्रति आशावादी बनने की आवश्यकता है। रोग स्वस्थ लाभ का एक अवसर है। प्रकृति से जुड़ने का एक सुअवसर है। रोग के प्रति भी हमें आशाप्रद विचार रखना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण के शब्दों में, आत्मा के अंतर्भूत आनंद को भूल जाना

0: करना ही रोग है, जिसके कारण मन में इच्छाओं का उदय होता है। आत्मविस्मृति ही रोग है। डॉक्टर फ्रायड के शब्दों में, अनेक स्वाभाविक और शारीरिक रोग मानव के चेतन और अचेतन मन की रहस्यमय गुफाओं में होते हैं। पहले मन रोगी होता है, रोग चेतना पर आता है, फिर विचारों से शरीर पर आ जाता है।
1: ये था चिंतन, आलेख और स्वर था शिवसागर त्रिपाठी का। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर है ए हरिहरन का और संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी, जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे, लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की, ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हो आया और इनकी टाए टाए सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

0: अभी श्री रामचरितमानस का गायन प्रसारित किया गया। स्वर था ए हरिहरन का और संगीत निदेशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हो चुके हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: बेड़ा खाड़ा चौन थाने गोठ निकले से होता पशु जानवर च काम के तो भलक नहीं है। गोबर खत बात ले धरून धान मिंडाई तक गाय वाला से काम हो ऐसे मानतर ये मन सही दखा रखा निकर लो ने कई ठन बीमार से मार बोले हो जाए से उसनी चीज जन माइमर बीमारी हो सत जे चने पशु जानवर के खूब नुकसान हमरे से तो हुन मन लक्षण और बचाव च उपाय के आजी जानवा। पहला है गलघोंटू बीमारी। ये बीमारी ने पशु चो टोडरा फूले से जे चने सर सर चो आवाज निकले से पशु चो पेट वाले फूले से और संगे संगे लहू मिल्लो बीती पेट झड़ा वाले हो से। ये बीमारी एक पशु ले दूसर पशु लगे झपके फैले से और ये ले बचा तो काजे हर साल चमास बतर हमारे तो पूरे टीका लगातार बोले हो से। दूसर बीमारी हो से एक टंगिया जे कि ब्लैक क्वार्टर बोले सत। ये बीमारी ले पशु चो जांग और करण लगे फूला फूला दिखा दे से जे चौने पशु खुड़िया तिरंगे से पशु के खूबे झर धरे से और जुगे होलो ने 12-25 भीतर पशु मरुन जाए से। ये बीमारी ले बचा तो काजे बोले चमास बतर ले पूरे ये चो टीका लगाओ पड़े से। फिर गोटे बीमारी हो से खुरा बीमारी। ये बीमारी जानवर चो खुर और मुँह ने बले होए से ये होलो ने पशु चो खुर ने घा होए से जैसे ने खुर निकरुक बल सके असन होलो ने पशु नंगत रेंगुक तो नहीं सके। ये बीमारी मुँह ने होलो ने जामड़ा जीभ होंठ ने घा होए से मुँह ले जुगे लार निकरे से पशु खाओ पियो नहीं सके। ये बीमारी ले पशु के बचा तो काजे नवंबर ले दिसंबर महीना ने टीका लगातार होए से। उसी चीज महामारी ये बीमारी होए से ये बीमारी ले पशु चो जीभ ने काटा काटा हो जाए से लार बल खूब निकले से टोंडले बास मारे से और पिचकारी असन ऊपर तो बीती दस्त होए से जेचने पशु 4-5 ने मरुन जाए से। ये बीमारी ले पशु के बचा तो काजे अक्टूबर ले नवंबर महीना ने टीका लगातार होए से। उसने से एंथ्रेक्स नाव से गोटोक बीमारी होए से जोन की पशु जानवर के खूब नुकसान हमारा से। ये बीमारी नानी बड़े जम्माए पशु के होए से और जुगे करुण बरसा बेरा होए से। ये बीमारी ले पशु अचानक मरुन जाए से और मरलो पशु चो नाक कान मुंह और शरीर जितने बले छेदास है सबले करिया करिया लहू निकरे से। ये लहू ने जो कीड़ी मन रहे सत तो ये कीड़ी मन दूसरे जानवर मन के फैले सत और ये बीमारी ले बचा तो काजे बरसा ले पूरे टीका लगातार होए से। फिर गोटो जुगे करुन छेरी बोकड़ी होते विद बीमारी है जो नाम है इंट्रोटॉक्सिमिया। ये बीमारी होलो ने माटिया रंग चो दस्त होए से जो झपके नी छांडे। ये जो ने छेरी बोकड़ी खूब्बे कमजोर हो जाए सत और नंगत सही वक्त नी दिलो ने छेरी बोकड़ी मरुन जाए सत तो ये बीमारी ले बचा तो काजे अक्टूबर नवंबर महीना ने टीका लगाओ पड़े से। उसने जी कुकड़ी चिमड़ी मन के बोले कई ठन बीमारी झोंटे से तो गोटक बीमारी होए से जेके बोले सत रानी खेत तवर हम छो गाँव करी लोग मन जेके झुमरी बीमारी बोले सत। ये खूब्बे फलते बीत बीमारी आए ये छोने कुकड़ी झुमुक मुरी आए से पटकी मन के खाले लटकाए से और 15-15 दस्त होए से और कुकड़ी 12-24 भीतर मरन जाए से। ये बीमारी ले बचा तो काजे नानी कुकड़ी के रानी खेत F1 स्ट्रेन और बड़े कुकड़ी के रानी खेत रेगुलर से टीका डॉक्टर मंच सांगलो हिसाब ने लगातार होए से। पेड़ गोटे बीमारी होए से फाउल पॉक्स जे के माता महामारी बले बले सत। ये बीमारी होलो ने कुकड़ी चो आँख मुँह और छेंडी ने दाना दाना होए से जे चो ने पूरा मुंड चो भाग ने सूजन है से और कुकड़ी दखुक नी सके। टोन ले लार निकले से और चारा दाना खाओक नी सकलो ने कुकड़ी मरुन जाए से। ये चले बचा तो काजे फाउल पॉक्स चो टीका लगाओ पड़े से। तो कोनी बल बीमारी होलो ने डॉक्टर कंपाउंडर के सांगुन इलाज तो करतर चाहे मंत्र जुगे नगत हो से कि जानवर की बीमारी ले बचावा। ये चो काजे बीमारी अमर तो पहल पशुपालन विभाग बाट ले लगते बीती टीका लगाओ पड़े से। टीका लगुन रहो ने ये फायदा हो से कि बीमारी अमर ले बोले पशु और जन कुकड़ी चिमड़ी के ये बीमारी नुकसान नहीं अमरा है। मंत्र ये गोट के ध्यान देता रहा है कि बीमारी होलो जानवर के हुनीची बीमारी छुट्टी का के नहीं लगाता रहे असने का हो से कि बीमारी

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप धावड़ा वीर देवपाड़ सुन रहे थे। वादक कलाकार थे पाकलू और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर हम पेश करते हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आज इसमें हास्य तरंग में होगी वार्ता प्रेरणा या नकल। वार्ताकार होंगी मोहिनी ठाकुर और हम पेश करेंगे फिल्मी नगमों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 बातों बातों में। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे फिल्म धर्मवीर के गीत। आजीचो सगा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10। इसमें सुनेगा भित्तीय चित्रकार और वादक कलाकार श्री राजेंद्र राव रावत से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे भरत कुमार गंगादित्य। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीत। गायक कलाकार होंगे त्रिलोक साहू और साथी। एक ही कलाकार दिन में 11:00। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा मशहूर पार्श्व गायक गुरु रंधावा पर। फोन इन कार्यक्रम लोकरस का प्रसारण हम करते हैं दिन में 12:00। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। संयोजिका होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। दिन में 1:00 कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम पेश करते हैं रोजाना दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 का समय होता है कार्यक्रम कला और कलाकार का। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज सुनिएगा हेलो युववाणी। शाम 6:35 पर शिवराम नाग और साथियों का गाया हल्बी गीत सुना जाएगा। शाम 7:00 हम प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी। रात 8:00 कार्यक्रम जोनी उजर में सुनेगा वेदवती और साथियों के गाये भत्री लोकगीत। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजे गोट आज केन्द्रित होगा महाराणा प्रताप सिंह पर। प्रस्तुति रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की होगी। रात 9:15 पर आमचोरान आमचो जीवना कार्यक्रम में होगा नाटक रुक राई संगे जीवना। रात 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और रात्रि 10:00 आदिवासी लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा परदेसिन माता पाड़ और फिरंता पाड़। वादक कलाकार होंगे खगपति और साथी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्र संघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकि संघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकि संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्यप्रदेशे पूर्वीय उत्तरप्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आन्ध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्यप्रदेशे पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45°C यावत् न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

मत डर जो अंधेरी रात है, हो गई अब प्रभात है। अंधकार अब लुप्त हुआ, हर ओर प्रकाश अब होना है। उठकर बढ़ना है अब आगे हमें, न देर तलक अब सोना है। तेज चमकना है अब हमको, सूरज की किरण है बता रही। पंछी की देखो मधुर ध्वनि, जग में है सबको जगा रही। नई सुबह है, नया है मौका, आगे बढ़ने के जज्बात हैं। ये अंत नहीं है जीवन का, हर सुबह नई शुरुआत है। नमस्कार, जगदलपुर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी मनिंदर सिंह देवगुन का प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्रोताओं, सदियों पुरानी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि में ईश्वर को देखना। हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव हमें आतिथ्य सत्कार में निहित गरिमा की याद दिलाता है। अतिथि देवो भव एक शाश्वत मूल है जो हर अतिथि में दिव्यता को देखने का भाव रखता है। आज सच्ची बुद्धिमता इसी स्नेह और विवेक के बीच संतुलन बनाने में निहित है, जिससे हमारी संस्कृति अपने मूल तत्वों को खोए बिना विकसित होती रहे। अतिथि देवो भव बदलते समय में परंपरा, ज्ञान और आतिथ्य सत्कार का सार है। यदि भगवान आपके द्वारा आए तो आप क्या करेंगे? जी हां, आप अपने भगवान का सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, उन्हें पूजेंगे। इसलिए प्राचीन भारतीय सिद्धांत कहता है कि अपने अतिथि में भगवान को देखो, ईश्वर को देखो, उस प्रेम को देखो जो आत्मीयता से पनपता है, स्नेह से बढ़ता है, जो हमें सिखाता है अपने अतिथियों का सम्मान करना। ये परंपरा हमें हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासतों से जोड़ी रखती है। अतिथियों का सम्मान करने से हम सबके घरों में बरकत बनी रहती है। अतिथि देवो भव हमारे देश की संस्कृति में कई सदियों से समाया हुआ है, इसलिए हिंदुस्तानियों के लिए आतिथ्य सत्कार एक पवित्र मूल्य है। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत और अन्य महाकाव्यों की कहानियां इसी सार को दर्शाती है। जब कर्ण अतिथि के भेष में आए, इंद्रदेव को मना नहीं कर सके थे और उन्हें अपना अभेद कवच कुंडल बिना झिझक के भेंट कर देते हैं। इसी प्रकार राजा बलि अतिथि के रूप में वामन के भेष में आए भगवान विष्णु को अपना सिर तक अर्पित कर देते हैं। अतिथि देवो भव यानी मेहमान हमारे लिए सम्मान और खुशियों का प्रतीक है। किसी अपने के आने से घर की रौनक बढ़ जाती है, आंगन में मानो मुस्कान खिल उठती है और माहौल में अपनापन घुल जाता है। तो आइए अतिथि देवो भव की भावना के साथ सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: अभी आपने लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म हकीकत का गीत सुना। बोल इंदिवर के थे, धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ,
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
0: नमस्कार, जगदलपुर में अब प्रस्तुत है हास्य तरंग, प्रेरणा या नकल। प्रस्तुति है मोहिनी ठाकुर की।
7: गुरु शिष्य परंपरा से कुछ कुछ साम्य रखने वाली एक और परंपरा अक्सर देखने में आती है, प्रेरणा लेने की परंपरा। कहीं न कहीं कोई न कोई किसी से प्रेरित होकर कुछ नया सृजन कर डालता है या कोई ऐसा कमाल कर दिखाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। यह निर्भर इस पर भी करता है कि प्रेरणा ली किससे जा रही है। सृजन के क्षेत्र में तो प्रेरणा लिए बिना काम ही नहीं चलता। कवियों की बात करें तो जब तक सुंदर चेहरे की तलाश खत्म न हो कविता गढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक पुरानी क्लासिक फिल्म में तो नायक अपनी पत्नी को ही प्रेरणा मानकर गीत रचता है जिसमें उसका नाम बदल देता है। इधर उसकी पत्नी उसे उसकी प्रेयसी समझकर ईर्ष्या की आग में जलती भुनती रहती है और घर छोड़कर मायके जा बैठती है। बाद में गलत फहमियां दूर होती हैं तब उसे पछतावा होता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। जो लोग सचमुच प्रेरणा लेकर अपने अभियान में जुट जाते हैं वे जब सफल होते हैं तो सफलता का सारा श्रेय ले जाकर अपनी प्रेरणा को समर्पित कर देते हैं, उसके तहे दिल से शुक्रगुजार होते हैं। यह तो नेक नियत की बात हुई, वरना आज के बदलते दौर में कहां कोई पूछता है किसी को। और अब प्रेरणा किसी किसी मामले में तो ढाल का भी काम कर जाती है। एक फिल्म संगीतकार पर आरोप था कि उनकी अधिकांश धुनें पुराने गीतों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। उनसे जवाब मांगा गया तो बड़ी सहजता से उन्होंने जवाब दिया कि वे तो बस उन धुनों से इंस्पायर हुए हैं। अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि इंस्पायर होने में और नकल में बहुत फर्क होता है। शुद्ध प्रेरणा हो तो 1% भी पर्याप्त होती है प्रेरित करने के लिए, बिल्कुल दही के जमावन की तरह। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जी हाँ, प्रेरणा की बात चल निकली है तो अब फिल्मी गीतों से फिल्मों की ओर भी मुड़ेगी। हमारे यहाँ बनने वाली ज्यादातर फिल्में विदेशी फिल्मों पर आधारित होती हैं। इधर हम फिल्मों के निर्माता निर्देशक की प्रशंसा करते थकते नहीं, मुझे असली फिल्म निर्माता निर्देशक इन सबसे बेखबर गुमनामी के भंवर में कहीं डूबते उतर आ रहे होते हैं। कुछ अपराधी तत्व विदेशी फिल्मों से प्रेरित होकर अपराध जगत में नए नए प्रयोग करते हैं। देश में बनने वाली फिल्मों से भी प्रेरणा लेकर बहुत सारे बेरोजगार अपहरण जैसी खतरनाक हरकतों को आमदनी का जरिया समझने की भूल कर बैठते हैं। आए दिन न्यूज चैनलों पर इस तरह की वारदातें देखने मिल रही हैं। इधर फिल्मों के रीमेक का चलन शुरू हुआ तो पता चलता है कि अच्छी भली यादगार क्लासिक फिल्म का कचरा हो चुका है। कभी तो लगता है ये फिल्म का रीमेक नहीं, पैरोडी बनाई गई है, एक तरह का मजाक है जो पुरानी फिल्मों के निर्माता को भी कहीं ना कहीं भावनात्मक ठेस तो पहुंचाता ही है। बहुत कुछ इसी तरह का हाल रिमिक्स

पुराने गानों का होता है, जहां उन्हें सुनकर कानों में हथौड़े पड़ने लगते हैं, वहां उन्हें देखने के लिए भी बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। उन पर नई पीढ़ी भले ही थिरकने लगे, उस जमाने के लोग सिर थाम कर बैठ जाते हैं। जिन महान गायक गायिकाओं ने उन गीतों को आवाज दी थी, वे शर्मसार होकर रह जाते हैं। अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा मानकर खुद को समझा बुझा लेने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। बड़े पर्दे से बात लुढ़कती हुई छोटे पर्दे पर आ टिकती है, तो यहां पर भी वही बात कुछ दूसरे रूप में प्रभावित करती है दर्शकों को। प्रेरणा के रूप में ऐसे ऐसे दुष्परिणाम सामने आते हैं कि पूछिए मत। ऐसे टीवी सीरियल्स की भरमार मची हुई है जो पारिवारिक विषयों पर और खासकर सास बहू की परस्पर साजिशों के जाल में बुने हुए होते हैं। अब दिन रात घर में बैठी गृहणियां, जिनमें सास भी होती हैं, बहुएं भी, तो प्रभावित तो होंगी ही। तुम डाल डाल तो हम पात पात की तर्ज पर सास से टक्कर लेने के या बहू को नीचा दिखाने के पैंतरे सिखाए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर बहुएं अपने आत्मविश्वास के साथ अखाड़े में उतरने के दांव पे सीखती हैं, तो सासें जो कभी बहू हुआ करती थी पछतावा करती रह जाती हैं कि हाय, उन्हें ये सब तौर तरीके उस जमाने में क्यों नहीं सूझे, जब वे चुपचाप सास के जुल्म सहती हुई उफ तक ना करती थी। अब तो सारे सीरियल आधुनिक बहू को मैं हूं ना के अंदाज में मॉरल सपोर्ट देने बड़ी सहयोग भावना के साथ प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाले कृष्ण की तरह। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुर्गी पहले हुई या अंडा की तरह यह भी अनुत्तरित प्रश्न बनता जा रहा है कि सीरियल से प्रेरित होकर घरों में रणनीति बनाई जाती है, या सीरियल बनाने वाले नितांत घरेलू पात्रों की जन्मजात प्रतिभा से प्रेरित होकर अपने धारावाहिकों के पात्र गढ़ते हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसे किसी विशिष्ट चरित्र से साम्यता रखने वाली पड़ोसन का नामकरण ही उसके नाम से कर देती हैं। इधर धारावाहिक में दिखाए जाने वाले महिला पात्रों की साज सज्जा और उनके गहनों के अजीबोगरीब डिजाइन और साड़ियों की नई शैली भी उन्हें कम प्रेरित नहीं करती। सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे तब होती है जब पर्दे पर या टीवी पर दिखाई जाने वाली फिल्मों या धारावाहिकों में जब मुख्य भूमिका निभाने वाले पात्र से उनका इस हद तक भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है कि वे उन पर सितम होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती, भावुक हो उठती हैं। लेकिन ऐसा ही कोई पात्र जब उनके इर्द गिर्द आ जाए तो उनकी हमदर्दी न जाने कहां लुप्त हो जाती है। फिल्में देखकर खुद अपने आत्मविश्लेषण पर चिंतन करने की बात तक नहीं सूझती उन्हें। अगर और कुछ न सही, उनसे प्रेरणा लेकर अपने व्यवहार और सोच को बदलने की पहल करें तो सीरियल देखने में खर्च होने वाले समय की सार्थकता तो होगी ही, घर में भी चैन की बंसी बजेगी सो अलग। शायद इसका एक मनोवैज्ञानिक असर जरूर होता होगा कि उन सीरियल के नेवला सांप की इस लड़ाई में उनकी अपनी भड़ास काफी हद तक निकल जाती है और वे खुद को तरोताजा महसूस करती हैं। अपने आसपास से नजरें हटाकर आसमान की तरफ देखें तो वहां भी नजारा कुछ बदला हुआ है। इस बार काले बादलों की राह तकते सावन सूखा ही बीत गया। मोरों को नाचने के लिए प्रेरित करने वाले काले बादल जाने कहां अंतर्ध्यान हो गए। उनकी इस बेरुखी की वजह जानने हम उनसे गुहार लगाते रहे, उन पर लानत भेजते रहे, उन्हें गुजरे सालों की याद दिलाते हुए कहा भी कि जब बरसने की बात होती है तो जमीन पर लोग तुमसे प्रेरणा लेकर बरसते हैं, अफसर जब देखो अपने माथहत कर्मचारियों पर बरसते देखे जा सकते हैं। इधर शिक्षकों का अपने शिष्यों पर बरसना बदस्तूर जारी है, आजकल तो उनके हौसले और भी बुलंद हैं। इस तरह बेदर्दी से मासूम छात्रों पर नंडे बरसा रहे हैं कि जान के लाले पड़ रहे हैं उनके, तो कम से कम इनसे प्रेरणा लेकर ही कुछ तो बरसो। पूरे विश्व में संस्कृति को लेकर अपनी एक विशिष्ट पहचान है भारत की, लेकिन हमारे देश में ही संस्कृति के लिए उदासीनता अफसोसजनक है। वहीं विदेशी संस्कृति से प्रेरित आयोजन गर्व के साथ संपन्न होते हैं। जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर केक काटना, मोमबत्तियां बुझाना और अंग्रेजी में बधाई गीत गाकर जहां हम अपनी ही संस्कृति को उपेक्षित कर रहे हैं, वहीं विदेशी सिर मुंडाकर भगवे कपड़े पहनकर विदेशों में सड़कों पर कीर्तन करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें हमारे वेद उपनिषद प्रेरणास्रोत बनकर अध्यात्म की ओर खींच रहे हैं, है ना कुछ विचित्र सी बात, वो कुछ कुछ उल्टे बांस बरेली जैसी। अगर प्रेरणा लेनी ही है तो हमारे देश में उन महान विभूतियों
कि कोई

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: नमस्कार, जगदलपुर में अब वक्त है मधुर गीतों की मधुरिमा का। जिंदगी भी कितनी खूबसूरत सरगम है, कभी हंसी की धुन, कभी यादों की तान, तो कभी दिल की मासूम भावनाएं गीत बनकर होठों पर उतर आती हैं। प्रकृति की मधुर आवाज हो या इंसानी दिल के एहसास, संगीत हर रूप में मन को छू ही लेता है।

तेरी बातों का असर कुछ ऐसा हो गया, तेरी बातों का असर कुछ ऐसा हो गया, भीड़ में भी ये दिल तेरा हो गया। तेरे आगे पीछे चलते चलते ऐ सनम, ना जाने कब मेरा दिल खो गया।

कभी कभी दिल की धड़कनें खुद की एक नया एहसास सुनाने लगती है। कभी कभी दिल की धड़कनें खुद को एक नया एहसास सुनाने लगती है। मन में अनजानी खुशी, आंखों में सपने और हर पल किसी का ख्याल, शायद यही प्यार की पहली दस्तक होती है। जब दिल किसी के एहसासों में खोने लगे तो जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत लगने लगती है।

प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दो दिलों की धड़कनों में बसता है। जब किसी का साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो हर खुशी, हर सपना और हर एहसास उसी से जुड़ जाता है। एक दूसरे में अपना संसार ढूंढ लेने का यही खूबसूरत एहसास इस गीत में बेहद मधुरता से महसूस होता है। आइए सुनते हैं।

जब तुम आ जाते हो मौसम भी मुस्कुरा जाता है, जब तुम आ जाते हो मौसम भी मुस्कुरा जाता है, सुना सा ये दिल फिर से गुनगुना जाता है। तेरी मौजूदगी से महक उठती है जिंदगी, तेरी मौजूदगी से महक उठती है जिंदगी, हर अधूरा सपना जैसे पूरा नजर आता है।

आज की मधुरिमा में आपने जिन फिल्मों के गीतों का आनंद लिया वे फिल्में थी आदमी खिलौना है, हम तो मोहब्बत करेगा, अब के बरस, अहंकार और फिल्म महाराजा।

और अब मधुरिमा के नए गीतों के साथ कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से दीजिए इजाजत आपके अपने रेडियो दोस्त मनिंदर सिंह देवगुन को। तो तमाम श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। हैव ए नाइस डे।

0: नमस्कार जगदलपुर, अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जो गोड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
9: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों, और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
10: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्रिषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्रिषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat waves over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
13: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
12: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI, in its release, said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said, later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor of her Cyprus counterpart Nikos Christodoulidis and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसी पर की मित्रता अब से सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
12: प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोदुलिदिस आल्सो हाइलाइटेड द फ्रेंडशिप विद इंडिया।
14: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
12: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
15: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the Female Engagement Team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gawani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
12: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
16: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
12: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
17: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात। और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
12: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this conversation on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99 rupees 51 paise per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92 rupees 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code, UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heat wave conditions. We have a report from our correspondent.
18: The Met Department has issued heat wave warnings in 42 districts today. Tikamgarh, Chhatarpur and Panna are the worst affected. All three are under red alert. Gwalior and 20 other districts are under orange alert for severe heat wave. Bhopal, Indore and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday, the temperature crossed 44 degrees Celsius in 10 cities. Nugaon in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
12: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night, chasing a massive target of 256 runs. Set by SRH, RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
19: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India-Cyprus Inc. Six-Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled Xi Putin Meet, a new axis in the making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
12: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आज सुनिए कान से संबंधित समस्याएं एवं समाधान, इस विषय पर डॉक्टर रूपा मेहता से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है दीपक हटवार।

0: डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कई बार हमें कानों से संबंधित अलग अलग तरह की समस्या का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख समस्या है सुनाई नहीं देना। तो ये समस्या क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसका उपचार हम किस तरह से करवा सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रूपा मेहता को। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मेहता, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम सुनाई नहीं देने की समस्या की बात करें, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं?
1: देखिए, सुनाई नहीं देना बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है और इसकी विशेषता ये है कि ये हर एज ग्रुप में होता है। बच्चे, मीडियम मतलब मिडिल एजेड और बूढ़े, सभी एज ग्रुप को ग्रसित करता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके रिलेटेड ये है कि ये बहुत टाइम तक इग्नोर किया जाता है, स्पेशली इंडियन सेटअप में बहुत टाइम तक, जब तक ये ज़्यादा तकलीफ नहीं देता इसको इग्नोर किया जाता है। तो इसलिए इसके कारण जो है, एज वाइज यदि हम बात करें तो जैसे जन्मजात शिशु है उसमें भी कई मतलब कंजेनिटल रीजंस के चलते, जेनेटिक रीजंस के चलते सुनाई कम देना होता है, मतलब सुनाई कम होता है। फिर जैसे जैसे बचपन बचपन की बात करें, मतलब नियोनेट हो गया जन्मजात शिशु में कॉन्जेनेटल कॉज, फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों को, तो इन्फेक्शन के चलते सुनाई कम हो जाता है, जिसमें कान से पीक भी बहती है और सुनाई भी कम होता है। फिर जैसे यंग एज या मिडिल एजेड में बात करें तो तेज़ आवाज़ या काम के चलते, वो तेज़ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में है, तो तेज़ आवाज़ से जो ध्वनि, तेज़ ध्वनि के कारण उनका नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस कॉमनली है इस एज ग्रुप में। फिर एल्डरली में बात करें, यानी एजेड लोग हैं उनमें बात करें तो नस की कमजोरी है। तो ये मोस्ट मतलब कॉमन एज वाइज है अलग अलग, बट इनमें ओवरलैप भी होता है, जैसे ईयर इन्फेक्शन मिडिल एजेड में भी मिल जाएगा, एल्डरली में भी मिल जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल कारण हैं। और जो सुनाई कम देना है वो दो मेन कंडीशन के चलते होता है, एक होता है नस की कमजोरी और एक होता है इन्फेक्शन के चलते आपका जो कंडक्टिव मैकेनिज्म है, जो आपकी नस तक आवाज़ पहुंचने में के बीच में जो माध्यम है उसमें तकलीफ आने से। तो ये दो मेन कारण हैं और एज वाइज अलग अलग कारण होते हैं।
0: डॉक्टर मेहता, अगर किसी शिशु को ये समस्या है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका पता माता-पिता को कब और कैसे चलता है?
1: ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जितना जल्दी हम पता लगाएं कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, उतना जल्दी उसका हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, और उतने उतना जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी उसका और उतना अच्छा उसका प्रोग्नोसिस और रहेगा, हियरिंग रिहैब रहेगा। तो देखिए, बच्चा जैसे जैसे 3 महीने का, 4 महीने का, वो तेज़ आवाज़ से वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आवाज़ तेज़ हुई तो भी वो टर्न करता है अपनी गर्दन, वो नहीं कर रहा है, मदर फादर की आवाज़ को नहीं समझ रहा है। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है तो क्यूज़ मतलब आवाज़ देंगे तो नहीं सुनेगा, तो ये सब अगर ऐसा हो रहा है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो सब लोग मतलब जनरल पॉपुलेशन या परिवार वाले बोलते हैं ठीक है बड़ा होगा तो सुन लेगा, थोड़ा अभी छोटा है ऐसे करके, या फिर बड़ा भी हो गया 1.5-2 साल का, 1-1.5 साल का बोल नहीं पा रहा है, तो बोल नहीं पा रहा है तो बोलते, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चा, मेरा बच्चा 3 साल में बोला था, उसका बच्चा 5 साल में बोला था, तो वेट करते हैं। तो यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है पहली चीज़, और या फिर छोटा बच्चा भी आवाज़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसकी सुनाई में तकलीफ है, तो उसको जितना जल्दी हो सके अस्पताल में लाके एक बार हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए। तो उससे जल्दी पकड़ में आता है बच्चों के हियरिंग लॉस, और जल्दी फिर हम हियरिंग एड लगा के या उसकी जांच करके समझते हैं कि क्या रीज़न है और फिर आगे उसका इलाज होता है।
0: डॉक्टर मेहता, आपने इन दोनों को ही आपस में एक संबंध बताया है कि अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो शब्द बोलेगा कैसे?
1: बिल्कुल,
0: क्या ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन उसे सुनाई दे रहा है?
1: हाँ ऐसा भी होता है पर वो रेयर है। नॉर्मली अच्छा बच्चा जब सुनाई की है प्रॉब्लम है तो बोल नहीं पाता है, बट बोलना केवल सुनाई अच्छा होना और बोल नहीं पाना ये भी होता है, ये टंग की कोई प्रॉब्लम या अंदर मतलब वॉइस बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम रहा तो ऐसा भी होता है, बट वो थोड़ा रेयर है। और ये जागरूकता लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि बोल नहीं पा रहा है तो सुनाई का टेस्ट करा लो, अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम दूसरे डायरेक्शन में उसका इलाज करेंगे, बट सुनाई जितना जल्दी हम पकड़ेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन बहुत प्लास्टिक होता है, अगर उसको हियरिंग का उसको नहीं मिला स्टिमुलेशन तो जो हिस्सा हियरिंग के लिए होता है वो फिर धीरे धीरे डिम होता जाता है, क्योंकि उसको स्टिमुलस नहीं मिल रहा है और उस दूसरी वो दूसरी मतलब क्रियाओं में काम आने लग जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी सुनाई जब कम हो रही है तो पकड़ें उसका मतलब उसका निदान, उसका मतलब उसको हम डायग्नोस करें और फिर उसको निदान की तरफ ले जाएं।
0: जब हम शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों की बात करते हैं तो उनमें हमारी जीभा और हमारे कान ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे तंत्र होते हैं कि कान से हम दुनिया की कोई भी आवाज सुनते हैं और जुबान से हम कोई भी बात बोल सकते हैं। क्या आज की तारीख में मेडिकल साइंस की तरक्की में अब ये भी संभव हुआ है कि जब गर्भस्थ शिशु की जांच की जाती है तो उन जांचों में उसके शरीर के सारे ही अंग सामान्य हैं इस बात की भी जांच की जाती है, तो ऐसे में क्या उसके सुनाई देने या बोलने की स्थिति कैसी होगी, इसकी भी कोई जांच संभव है?
1: देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वही स्क्रीनिंग, एक यूनिवर्सल नियोनेटल स्क्रीनिंग बोलते हैं, हियरिंग स्क्रीनिंग, वो कराना चाहिए। अभी जैसे एम्स में होता है और फिर मतलब सारे हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है विद इन 2 डेज 3 डेज वो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको OAE बोलते हैं, कान के अंदर डाल के वो देखते हैं, तो उससे स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। यदि उसमें पास है तो मतलब हियरिंग ठीक है, यदि हियरिंग ठीक नहीं होता तो उसमें फेल रिजल्ट आता है, तो फिर उसका हम वापस रिपीट करते हैं 1-1.5 महीने बाद, और नहीं तो फिर बैरा के लिए उसको मतलब रिकमेंड करते हैं। बैरा टेस्ट एक होता है तो उसके, और उसके बेसिस पे फिर उसकी जांच होती है। और जैसे कि मतलब गर्भस्थ में आइडेंटिफाई करना, तो एक्चुअली कोई सिंड्रोमिक यदि है तो वो सिंड्रोम में हियरिंग लॉस एक कॉम्पोनेंट होता है, बट जांच जो है वो जांच पैदा होने के 2-3 दिन के भीतर ही हो जाती है और हर किसी को कराना चाहिए। यदि वो 2-3 दिन के भीतर नहीं हो पाई, जैसे अस्पताल घर में डिलीवरी हुई, तो जब आप टीके के लिए जा रहे हैं, टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, तो कराइए। बट हर शिशु की जांच, सुनाई की जो OAE स्क्रीनिंग, उसमें कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब बिल्कुल कुछ मिनट ही लगते हैं और बहुत इजी टेस्ट है, तो वो जरूर कराना चाहिए हर शिशु को।
0: डॉक्टर मेहता, आपने बताया कि हर शिशु को इस तरह की सुनाई देने वाली जांच करवा लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए माता पिता जन्म होने के बाद कुछ माह तक भी इस तरह की जांच नहीं करवाते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि बच्चे को सुनाई देने में कोई समस्या है, तो क्या ये लेट होने की वजह से या विलंब होने की वजह से कोई बात बिगड़ जाती है?
1: देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेन हमारा प्लास्टिक होता है, तो इसलिए जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे ना, उतना हम हियरिंग एड लगाते हैं, हियरिंग एड से स्टिमुलेशन मिलता रहता है उस पार्ट को, जितना भी जा रहा है बट स्टिमुलस मिलता है, वो पार्ट एक्टिव रहता है, तो ये चीज़ है। और अभी हमारा यही एम है कि हम जितना जल्दी, मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम डायग्नोस कर लें, 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रिहैबिलिटेशन हियरिंग एड या लगा लें, और यदि हियरिंग एड से भी नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कॉकलियर इम्प्लांट होता है, तो वो फिर जितना जल्दी हो सके 1-1.5 साल 2 साल में हम लगाएं, तो उससे बच्चे का इंप्रूवमेंट, जो स्कूल गोइंग एज में बच्चा मतलब अगर सुनने लग जाएगा तो बोलेगा अच्छे से, उसका बौद्धिक विकास उतना अच्छा होगा। तो एम ये रहना चाहिए कि भाई स्कूल वो 3 साल में जाता है तब तक उसका रिहैबिलिटेशन, मतलब हियरिंग इन प्लेस हो, ताकि वो सब बच्चों के साथ, मतलब सब बच्चों के बराबर उसका बौद्धिक विकास भी हो सके, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें सुनाई देने पे निर्भर होता है। वो सुनेगा तभी समझेगा और बोलेगा, और मतलब हर चीज़, आप पढ़ाई से लेके हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट रहती है। तो इसलिए जितना जल्दी, हमारा एम ये रहता है जितना जल्दी हम पकड़ेंगे सुनाई, मतलब कम बात सुनाई के बाधित बच्चों को, उतना जल्दी उनका उतना हर तरह से सर्वांगीण विकास होगा।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम नवजात शिशु के साथ की जाने वाली क्रियाओं की बात करें, जैसे कि बच्चे की मालिश की जाती है, और उसके अलावा पहले तो ऐसा भी होता था कि बच्चे के कान में तेल डाला जाता था, तो इस तरह की चीज़ें भी की जाती थी, तो आप बताएंगे कि नवजात शिशु के साथ वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसका दुष्प्रभाव उसके कानों पर पड़ सकता है?
1: देखिए, एक तो ये है कि कान में तेल डालना मतलब एडवाइजेबल नहीं है, नहीं करना चाहिए, बट उससे मतलब अगर आपका कान का पर्दा ठीक है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट सुनाई पे ऐसा कुछ नहीं होता है। कान की क्लीनिंग खुद नहीं करना चाहिए, पीरियोडिक चेकअप्स कराएं, अगर कान में खुजली हो रही है, कान में पीक आ रही है तो उसको लाइटली ले लेते हैं, कोई भी ड्रॉप्स ले लेते हैं, हम दुकान से डाल लिया ठीक हो गया, तो ऐसा ये नहीं करना है। आपका अगर कान में पीक आ रही है, दिखाना है कान में छेद हुआ है पर्दे में तभी आ रही है, उसमें भी 2 तरह के होते हैं, हड्डी गलने वाली बीमारी एक होती है, एक नॉर्मल छेद होता है, तो यदि ऐसा है तो वो सब चीज़ें आप ENT के पास जाके ही चीज़ करा सकते हो, जितना जल्दी चीज़ें पकड़ में आएंगी उतना जल्दी उसका इलाज होगा। तो इसलिए मतलब इग्नोर नहीं करना है मेनली ये, ना हियरिंग लॉस को और ना कान से पीक या कान के कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, एक जुकाम बहुत होता है बच्चे को, छींके बहुत आती है, या फिर नाक बंद बहुत रहता है, नाक के पीछे एक ग्रंथि होती है, इसको एडिनॉइड बोलते हैं, तो वो भी यदि बाधित रहा तो फिर उसमें भी सुनाई लॉस होने का रहता है। तो यदि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार ENT चेकअप कराना और दिखाने में कोई नुकसान नहीं है, जल्दी चीज़ें पकड़ में जाएंगी और जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम शरीर के छिद्र वाले अंगों की सफाई की बात करें, तो नवजात शिशु के कान की सफाई किस तरह से करनी चाहिए?
1: देखिए, अपने आप सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, बच्चों में या बड़ों में किसी में भी, वैक्स जो बनता है उसका एक फंक्शन होता है बॉडी में, और वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, अपने आप मीडियल से लेटरल करके बाहर आता है वो और अपने आप निकलता है।

0: लग रहा है कि नहीं निकल रहा है और दिख रहा है कि वैक्स स्मेल है, तो बेटर है कि डॉक्टर के पास जाके निकाला जाए. तो उससे ट्रॉमा होने के, जो कैनाल में ट्रॉमा होता है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ट्रॉमा होता है, या वो वापस अंदर फंसने की जो रहता है, वो सब चीजें नहीं होती है.
1: डॉक्टर मेहता, ये तो हो गए वो कारण जिसकी वजह से कान में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। अब अगर हम इसके उपचार की बात करें, अभिभावकों को ये पता चलता है कि उनका बच्चा बोल नहीं पा रहा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इसको सुनाई नहीं देता, तो इसका जो उपचार है वो किस किस तरह से संभव है?
0: देखिए, छोटे बच्चे की जैसे हम बात करें कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो पहले जैसे मैंने बताया ओएई करते हैं, फिर बैरा करते हैं. यदि उसमें सुनाई समझ आता है कि नस की कमजोरी है और सीवियर कैटेगरी में आ रहा है बच्चा, तो मॉडरेट टू सीवियर, तो हम हेयरिंग एड पहले लगाते हैं. बच्चे को हियरिंग एड रेगुलरली लगाना है, जब वो मतलब नहा लेता है, सुबह नहाने के बाद लगा दीजिए, सोने के टाइम निकालिए, और उससे देखते हैं 3 महीने 6 महीने वो यूज़ करता है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है. कुछ बच्चों में, कुछ प्रतिशत बच्चों में हियरिंग एड से अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो हम एडेड ऑडियोग्राम करके बोलते हैं, सुनाई की जांच हियरिंग एड के साथ. तो उसमें यदि अच्छा वो सुन पा रहा है चीज़ें, तो हम हियरिंग एड उसका ये एडवाइजेबल होता है. यदि उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, 6 महीने यूज़ किया, देखा नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम कॉकलिया इम्प्लांट, एक डिवाइस होती है जो इनर ईयर में, कॉकलिया में, जो हमारी सेंसरी हियरिंग ऑर्गन है जो हड्डी के अंदर होता है, तो उसमें डालते हैं, और वो डायरेक्ट फिर नर्व्स को इम्पल्सेस देता है और सुनाई के लिए इम्प्रूवमेंट होता है. तो वो हम तभी करते हैं जब 6 महीने उसने हियरिंग एड यूज़ किया है, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, और उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम सीटी एमआरआई और करा के फिर देख के उसको कॉकलिया इम्प्लांट के लिए लेते हैं. तो ये मेनली प्रक्रिया है इसके निदान की. ये तो हो गया जब जन्मजात, मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुनाई कम है, नस की कमजोरी है. एक होता है जैसे कान में इन्फेक्शन हुआ, पस आ रहा है बार बार, कान में भारीपन रहता है, तो उसका भी हम मेनली मतलब पहले जांच करके पस निकालते हैं, उसको सूखा होता है कान, दवाई देके, और उसके बाद फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन करके उसकी सुनाई बेहतर की जा सकती है.
1: डॉक्टर की सलाह के आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर रूपा मेहता जी हमारे साथ हैं और आप कान से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर मेहता, इस विषय पर हम आगे और आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मन कर रहा है कि इस बातचीत को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर ले चलें और आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर की सलाह के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपा मेहता। आप कान से संबंधित समस्या और समाधान के बारे में हमें बता रही हैं। डॉक्टर मेहता, इस गीत से पहले आपने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट करने से बच्चे को सुनाई देने लगता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या पूरे जीवन में सिर्फ एक बार करनी होती है?
1: हाँ जी, उसको मतलब जैसे बच्चे में करते हैं तो उसका लाइफ 20-25 साल होता है, फिर उसके अपग्रेडेड आते हैं तो वो हम ऊपर मतलब एक सर्जरी करके चेंज करना पड़ता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी जो AVT एक करके थेरेपी होती है, केवल इम्प्लांट लगाने से बच्चा मतलब एकदम नॉर्मल बोलने लग जाएगा ऐसा अगले ही दिन, ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांट की सेटिंग्स करनी होती है जो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं, उसकी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होती है, वो होती है। तो वो लगभग ऑपरेशन के 1.5-2 साल बाद तक रेगुलर कराते हैं, घर में स्टिमुलेशन देते हैं, तब जाके बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी और नॉर्मल सुन और बोल पाता है।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम किसी ना बोलने वाले बच्चे के उपचार के लिए अभी तक आपने जो प्रयास बताए हैं उन प्रयासों से बच्चा बोलने लगता है, ये आपने बताया, क्या ऐसे भी कुछ मामले होते हैं कि जिसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये संभव नहीं होता कि उसे सुनाई दे?
1: देखिए, नॉर्मली जैसे मैंने बोला, जन्मजात जब बच्चों का होता है तो कई बार ना मालफॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉकलिया मालफॉर्म्ड है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि हम कॉकलिया इम्प्लांट डाल ही ना पाएं। तो अभी तो कॉकलिया इम्प्लांट जहाँ नहीं डलता है तो वहाँ पे, और जब नस ठीक नहीं है तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट ब्रेन स्टेम में करते हैं, वो भी अभी इंडिया में भी हुआ है काफ़ी जगह। तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट भी है जो हर जगह नहीं किए जा रहे बट अभी हो रहा है वो भी। तो ऐसे मतलब एक लेस प्रपोर्शन, एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन को हम हेल्प कर सकते हैं, बहुत एक कम प्रतिशत ही है जिनको हम बिल्कुल हेल्प ना कर पाए ऐसा।
0: क्या अब ये मानकर चलें कि पहले और आज के दौर में काफी अंतर है, किसी जमाने में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान की तरक्की ने बहुत सारे असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, चिकित्सा विज्ञान की तरक्की डेफिनेटली, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, तीसरी चीज गवर्नमेंटल सपोर्ट बहुत बड़ा है, NPPCD जो प्रोग्राम चल रहा है और बाकी भी मतलब बहुत बड़ी स्कीम से ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है टू लेस देन 5 ईयर्स चिल्ड्रन और उनके कुछ कुछ क्राइटेरिया है, तो बहुत उससे बहुत एक सब्सटैंशियल चेंज हुआ है हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के और बड़ों के मतलब ट्रीटमेंट में।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम उम्र की बात करें, कई बार ये होता है कि जब जागे तब सवेरा, बहुत से लोगों के यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुन नहीं पा रहे थे और लंबे समय तक बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि इसका भी अब उपचार किया जाना संभव है, और एक उम्र के बाद अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं और उम्र ज्यादा है तब भी क्या यह संभव है कि उनका उपचार किया जा सकता है जो उपचार आपने बताया है और वो अच्छे से सुन सकते हैं, बोल भी सकते हैं?
1: देखिए, उसमें ना ये जो है जैसे मैंने बोला कि कारण क्या है, कारण देखना बहुत जरूरी। कुछ होता है कि कुछ टाइम तक ठीक थे फिर कोई एक्सीडेंट हुआ और सुनाई चली गई, तो डेफिनेटली उनका हम मतलब उनका ये कर सकते हैं, डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनको हियरिंग बहुत बेटर हो सकता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो ऑपरेशन करके उसका ठीक हो सकता है। अगर नस की कमजोरी है और जो बचपन से ही थी और हम नहीं मतलब उसका कुछ निदान नहीं हो पाया, कुछ नहीं दिखा पाए, और तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग हर मरीज को और हम लोग ये अवेयरनेस इसीलिए अवेयरनेस ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक बार दिखाएं, जितना जल्दी पकड़ में आएगा, क्योंकि वो 1% जो शुरू से नहीं सुन पाया और बोल नहीं पाया और नस की कमजोरी थी जिसकी, वो एक फिर लेटर स्टेज में मुश्किल हो जाता है। बट बाकी इन्फेक्शन है या पहले बोल पाते थे, कोई एक्सीडेंट की वजह से सुनाई कम हो गई, तो फिर वो रिहैबिलिटेट हो जाता है।
0: डॉक्टर मेहता, अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर किसी घर में कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है और उसको सुनने की समस्या है, तो वे कौन से हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेकर जाएं, और जो शासन की जो सुविधाएं चल रही हैं, खासकर आयुष्मान योजना है या अन्य इस तरह की जो चिकित्सा लाभ प्रदान करने वाली योजनाएं हैं, क्या इनमें जैसा कि आपने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट भी लगाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें क्या उस योजना के अंतर्गत फ्री में लोगों को मिल सकती हैं?
1: हाँ, मतलब पैकेजेस हैं, BPL और APL, और वो ऐसे अप्लाई करना रहता है, उसके एक सारे क्राइटेरिया होते हैं। और बाकी हियरिंग टेस्ट तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में होता है, कॉकलियर इम्प्लांट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, हमारे यहाँ एम्स में हो रहा है, फिर और भी एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शुरू हुआ है। तो ऐसा मतलब आजकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर बस अवेयरनेस होना जरूरी है कि सही टाइम पे दिखा दें, बाकी सहायता प्राप्त करना और करवाना सर्जरी इतना डिफिकल्ट नहीं है अभी।
0: डॉक्टर मेहता, एक मनुष्य को अपने शरीर के प्रत्येक अंग को लेकर सतर्क रहना, सावधान रहना और सुरक्षा अपनाना बहुत जरूरी होता है, खासकर आज के इस भागदौड़ के जीवन में। अगर हम कानों की सुरक्षा की बात करें तो आज हमारे आसपास के वातावरण में वे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे कान पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं?
1: सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है तेज आवाज़, पटाखों की आवाज़, जो म्यूज़िक बजता है, लाउड स्पीकर्स, हर मतलब जो छोटे मोटे फेस्टिवल्स आते हैं तो स्पीकर पे इतना फुल वॉल्यूम,
0: डीजे,
1: डीजे, पब्स रेस्टोरेंट्स में जो तेज़ म्यूज़िक बजता है वो बहुत हानिकारक है। और इससे हमने बहुत रेगुलरली हम ओपीडीज में देखते हैं, मरीज़ आते हैं कि कान के पास पटाखा छूटा है, सुनाई कम हो गई, बिल्कुल सुनाई बंद हो गया, सुन हो गया कान। एक अभी हमारे पास रिसेंटली एक टीचर आए थे जो रामलीला कुछ थी गांव में, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, स्पीकर उनके पास था और उनका तेज आवाज़ से वो 1-1.5 घंटा उन्होंने सुना और उनका ये चला गया। तो ये तेज जो ईयरफोन्स यूज़ करते हैं उसमें लाउड नॉइज़ सुनते हैं यंगस्टर्स स्पेशली, या फिर ट्रैफिक पुलिस या जो वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स जो तेज़ आवाज़ से कंटिन्यूस रहते हैं, तो उसमें नस की कमजोरी होना बहुत कॉमन है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल हियरिंग लॉस का कॉज है। तो इसलिए उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप्स, पूरी सोसाइटी को जागरूक रहकर स्टेप्स लेना रहेगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबल हो जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और नस की कमजोरी होती है तो नस की कमजोरी का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, फिर हियरिंग एड रहता है। और तो इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नॉइस का हम बचें, लाउड नॉइस से, रेगुलर कंटिन्यूअस एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है थोड़ी देर के लिए हो गया बट फिर भी उसमें भी प्रिकॉशंस लें हम, है ना। तो एक लाउड नॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है, एनवायरमेंटल हो गया, आपको ऑक्यूपेशनल हो गया, या फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्फेक्शन जब होता है ना कान से पीक निकलना, वो अभी भी हमारे रूरल सेटअप्स में कॉमन समझा जाता है, बच्चों को पीक निकलती है और बूंदे डाल देते हैं, खत्म, दिखाते नहीं हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी जो अनसेफ ओटाइटिस मीडिया, CSOM हम बोलते हैं, उससे वो ब्रेन तक वो इन्फेक्शन चला जाता है, नस, मुंह का जो नस होती है उसको मतलब उसको अफेक्ट करके मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंख बंद होना, मतलब आंख नहीं बंद होती है, ये सब प्रॉब्लम्स अभी भी इंडिया में देखा जा रहा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग अवेयर रहते हैं, जल्दी दिखा देते हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम है। अभी भी हमारे पास कान की वजह से ब्रेन में एब्सेस, ब्रेन में पस भर जाना, ये सब कॉमन है। तो कान के इन्फेक्शन को इजी मतलब इतना लाइटली ना लें, केवल ईयर ड्रॉप से दिखा, बिना दिखाए ईयर ड्रॉप डाल दिया और फिर उसके आगे भूल गए, उसको नहीं पूरा चेकअप कराया, पूरा ट्रीटमेंट कराया, तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रिवेंटेबल है। तीसरी कुछ कुछ वैक्सीन्स हैं वो दे देनी चाहिए, मीजल्स, मम्स, रुबेला, उससे बचता है। और चौथा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसको हम अच्छे से कंट्रोल करें, जैसे ये आईज को भी अफेक्ट करते हैं वैसे ईयर्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो शुगर है यदि या BP है तो उसके बराबर दवाई लें, उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखें, तो ये सब करने से हम हियरिंग हाइजीन अच्छा रख सकते हैं, हियरिंग ईयर्स अच्छे रख सकते हैं। और सेल्फ क्लीनिंग ना करें, उससे भी ट्रॉमा और इन्फेक्शन होते हैं, तो सेल्फ क्लीनिंग ना करें, ड्रॉप्स डाल के हॉस्पिटल जाके क्लीन कराएं यदि ईयर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो।
0: एक बात और देखी गई है कि लोगों को जब भी कान में खुजली होती है तब वो मार्केट में जो बर्ड्स मिलते हैं वो बर्ड्स खरीद कर लाते हैं और खुद ही कान में खुजाने के आदि हो जाते हैं, कुछ लोग तो माचिस की तीली भी डालते हैं, इस तरह की लोगों को आदत पड़ जाती है, ये कानों के लिए कितना नुकसानदायक है?
1: देखिए बर्ड्स तो आगे का एंड उसका बहुत मोटा होता है, तो वो और उसको ना मतलब वैक्स को अंदर की तरफ ही ढकेलता है निकालने के बजाय, तो वैक्स बर्ड्स तो हम एडवाइज नहीं करते हैं। और कान की तीली और ये वो तो हमने बहुत बार देखा है, वो अंदर टूट जाती है फिर वो लेके आते हैं
0: जी,
1: बहुत सारे मरीज वो मेटल से, की से क्लीन करते हैं,
0: हाँ।
1: तो उससे वो ट्रॉमा हो जाता है, एक्सट्रॉडिटरी कैनाल की स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो उसमें वो ब्लड आ जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ड्रॉप्स आती हैं जैसे मैंने बोला वैक्स के लिए, या इचिंग हो रही है तो आप ड्रॉप्स डाल दें, उसको थोड़ा लिब्रिकेट हो जाता है तो उससे आराम मिलता है।

0: डॉक्टर मेहता, आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समाज में समस्या देखी जा रही है वो है समारोह में तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाना, खासकर डीजे का प्रयोग किया जाता है। या फिर एक दौर था जब बड़े ही मधुर संगीत के साथ बैंड वादक बारात में दिखाई देते थे, लेकिन अब बारात से बैंड वादक लुप्त हो गए हैं और अब वो धुमाल और डीजे ही दिखाई देता है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता का अभाव। बहुत तेज आवाज में वो डीजे होता है, इतनी तेज उसकी आवाज होती है कि कई लोगों को तो दिल की भी समस्या उसकी वजह से होती है। तो इस तरह के समारोह में जब मेहमान बहुत दूर दूर से आते हैं और वो आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं, आवाज इतनी तेज होती है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप?
1: देखिए, मतलब बहुत हानिकारक है। जिनको जब तक तकलीफ नहीं होती तब तक समझते नहीं है, वो वाली बात है। जिनको तकलीफ, फिर अचानक से कितने, मैंने बताया, यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास जिनका यही पूरा एक कान चला जाता था, उसको फिर हम बताते हैं भाई दूसरे कान का ध्यान रखना, क्योंकि वही आपका सुनने का मतलब। एक हेलेन केलर करके एक डेफ और ब्लाइंड लेडी थी जो बहुत फेमस, उन्होंने बुक्स भी लिखी, तो उन्होंने यही लिखा कि डेफनेस जो है वो इंसान को इंसान से अलग करती है, वो अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और ब्लाइंडनेस इंसान को एनवायरमेंट से अलग करती है। तो जब तक हम ईयर का इंपॉर्टेंस, तभी हमें समझ आता है जब हमारी हियरिंग लॉस होता है, वो वाली बात है। इसलिए इतनी जागरूकता नहीं है, बट यही हमारा प्रयास भी रहता है एज अ डॉक्टर। हम लोग बताते हैं कि तेज आवाज बहुत बहुत नुकसानदायक है, और बहुत सारे रीजन, डीजे हो गया, पटाखे हो गए, आप और फैक्ट्रीज में होता है, तो ये नॉइस एक्सपोजर, जो लाउड नॉइस एक्सपोजर, किसी भी हाल में हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि एसएन लॉस, रिवर्सिबल एसएन लॉस करता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत प्रॉब्लम करता है आगे, उसके आगे फिर कुछ मतलब हियरिंग एड के अलावा कुछ रहता नहीं है इलाज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट किया जाए लाउड नॉइस।
0: एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है, अगर हम महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित बात करें तो ईयर रिंग्स पहनने का जो रिवाज है वो हमारे सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, तो खासकर महिलाओं के लिए इसको लेकर भी कोई हिदायत आप देना चाहेंगी?
1: नहीं, जो ईयर पियर्सिंग लोब्यूल में जो करते हैं वो तो जो मतलब प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो करवाना चाहिए। उसमें कुछ कुछ मतलब उसमें है, पीछे साइंस भी है। बट ये जो कई बार इधर अलग अलग जगह जो लगाते हैं कार्टिलेज में, तो वो मतलब यंगस्टर्स लगाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, बट सही टेक्निक से, एसेप्टिक टेक्निक से, उससे इन्फेक्शन ना हो, अच्छी जगह से जाके लगवाएं करें कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कार्टिलेज में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत टाइम से लेता है ठीक होने में, और पेनफुल भी बहुत रहता है। तो बस साफ सुथरी जगह से, अच्छे से क्लीन जगह से करवाएं, और जितना हो सके लोब्यूल में करवाएं, बट फिर भी यदि कराना है तो वो पर्सनल चॉइस है, इन्फेक्शन हो जाए तो मुश्किल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
0: तो श्रोताओं, डॉक्टर रूपा मेहता जी ने बताया कि हमें जब भी अपने कान में छिद्र करवाना हो या फिर गहने को पहनने के लिए जो ईयर रिंग्स पहनी जाती है जिसे बाली कहा जाता है, उसे पहनने के लिए जब भी कानों में छिद्र करवाएं तो किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाएं। हमें दुनिया की हर आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने कानों को भी सुरक्षित रखें, और आज की तारीख में कानों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बात डॉक्टर साहिबा ने बताई वो यही है कि हमें तेज आवाज से बचना है। तो डॉक्टर रूपा मेहता जी, आज आपने कान से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे कान से संबंधित समस्याएं और समाधान इस विषय पर डॉक्टर रूपा मेहता से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे दीपक हटवार। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। आज उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई विशेष भेंट वार्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है विकल्प रंजन शुक्ला की।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद वहां के स्थानीय लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उन तक सभी शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक अभिनव पहल की जा रही हैं। इन सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा।
2: सर नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
3: जी बहुत आभार आपका।
2: सर, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को नक्सली समस्या से मुक्त बनाने के बाद अब वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शहीद वीर गुंडाधूर के नाम से नेतानार में सेवा डेरा का शुभारंभ किया है। यह पहला ऐसा सेवा डेरा है। सर, आने वाले समय में ऐसे और भी सेवा डेरा शुरू किए जाएंगे, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
3: नक्सल उन्मूलन के अभियान में दक्षिण बस्तर और वो कोर इलाके जहां पर नक्सली बड़े ही दिनों से लाल आतंक के साए में लोगों को रखे हुए थे,
2: जी,
3: जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी, उन स्थानों पर सुरक्षा बलों ने अनेक सुरक्षा कैंप लगाए हैं। वो जो सुरक्षा कैंप अनेक अर्थात सैकड़ों की संख्या में 200 लगभग दक्षिण बस्तर और कोर इलाकों में लगे हुए हैं। इन कैंपों को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता हुई और वो संसाधन उसमें उपलब्ध कराया गया है। इन कैंपों के साथ में अनेक बिल्डिंगें उसमें बनी हैं, अनेक स्थान बने हैं, गार्डन बना है, ओपन एरिया बना है, ये सब कुछ वहां बना हुआ है
2: जी।
3: तो अब जब हम इस योजना में हैं कि हमारे सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस भी इन कैंप को खाली करेंगे तो ये कैंप हमारे स्थानीय लोगों के काम आने वाले हैं
2: जी।
3: और जो शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का प्रारंभ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है, ऐसा ही इन सारे ही कैंपों में किया जाएगा। ये सारे कैंप आज जो सुरक्षा के कैंप हैं
2: जी,
3: कालांतर में ये विकास के कैंप होंगे, सेवा के कैंप होंगे
2: जी। सर, यहाँ पे जो कैंप है तो बहुत अच्छी पहल है। वहाँ पे जो रहने वाले जो स्थानीय नागरिक हैं, उन्हें किस तरह की सुविधाएं इन सेवा डेरा के माध्यम से मिलेंगी?
3: ये जो कैंप है, ये स्कूल भी होंगे, ये हॉस्पिटल होंगे, ये पंचायत के स्थान होंगे, ये आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, इसके साथ ही साथ यहाँ ये ट्रेनिंग कैंप होंगे। बस्तर के जीवन में लघु वनोपज का बड़ा महत्व है
2: जी,
3: और लघु वनोपज आधारित इनके जीवन में ये लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र बनेंगे
2: जी।
3: ये पूरे ही बस्तर की आर्थिक गतिविधियों को और सामाजिक गतिविधियों को संचालित और उन्नत करने के केंद्र होंगे
2: जी। सर, एक बात और है कि बस्तर में सहकारिता के माध्यम से श्वेत क्रांति यानी डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में एनडीडीबी के साथ अनुबंध भी किया है। आपने इस संबंध में गुजरात का दौरा भी किया था और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो जनजातीय लोग हैं वहां के, उनको सरकार की ओर से गाय और भैंस भी इसके लिए दी जाएगी। इस बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: प्रसन्नता है आपके इस प्रश्न के लिए, आभार व्यक्त करता हूं, और वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि कहीं सहकारिता कागज में होती होगी, कहीं सहकारिता फाइलों में होती होगी, बस्तर के जन जीवन में, जनमानस में सहकारिता है। बस्तर का गांव सहकारी माध्यमों के तरीके से ही जीता है, इस तरह से बस्तर में होता है
2: जी।
3: तो सहकारिता बस्तर में बहुत आगे बढ़ सकता है। आने वाले समय में वहां पर दुग्ध का भी उत्पादन हो, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़े चारागाह है, बड़ी हरियाली है वहां पर, तो दूध का भी अच्छा उत्पादन हो और सहकारिता के माध्यम से ये सब कुछ एक साथ एकत्रित हो। जो गुजरात की बात, गुजरात में अनेक डेयरियां हैं, उसमें से एक बनासकांठा डेयरी है। उस बनासकांठा डेयरी को मैं देखने गया था, उस डेयरी का ये सहकारी समिति है, उस सहकारी समिति का उनका प्रोजेक्शन है कि आने वाले वर्ष में उनका टर्नओवर 21,000 करोड़ का होगा
2: जी।
3: वहां मैं एक गांव गया था, वहां एक महिला की कथा थी कि 2,52,00,000 का दूध उन्होंने बेचा था एक साल में, तो 40-45% का मार्जिन इसमें होता, मतलब 1 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया था। तो ये बड़ा ही विषय है जो वहां पर हुआ है। मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से गुजरात आगे इस दिशा में बढ़ा है सहकारिता के दिशा में, बस्तर भी समूचे भारत का सिरमौर होगा।
2: जी बिल्कुल सर, अपने इस बस्तर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है कि आने वाले 5 सालों में यानी वर्ष 2031 तक बस्तर देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। इसके साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों की जो औसत आमदनी है वो करीब 6 गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए किस तरह का एक वैज्ञानिक रोड मैप केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर तैयार किया है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
3: माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपनी बातों में इस बात को स्पष्ट किया है। ये बड़ा विषय है कि बस्तर की उन्नति बस्तर के लघु वनोपजों के आधार पर होगी, बस्तर की उन्नति बस्तर के लोगों के कृषि के उन्नयन के आधार पर होगी
2: जी।
3: और आने वाले समय में बस्तर देश के समस्त आदिवासी संभागों में सर्वाधिक विकसित आदिवासी संभाग बनेगा
2: जी।
3: इसके लिए प्राणपंत से कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक प्रोग्राम डेवलपमेंट का तैयार हुआ है और विशेष रूप से आपसे बताना चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, ये जो स्थूल निर्माण की बात नहीं है, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के फर्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग की बात है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लॉजिस्टिक्स के लिए बात है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रेड की बात है, और इसके लिए महिला स्वसहायता समूह और सहकारी संस्थाओं को जोड़कर काम करने की बात है। ये मसौदा बना है, ये इस आधार पर बना है, और इसलिए हम लोग इस बात की अपेक्षा करते हैं, जिसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर लोगों की आमदनी बढ़े। इनफैक्ट हर महीने 40-50 हजार रुपया तो प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी होनी चाहिए, और इसलिए ही ये रोड मैप इस ढंग से तैयार किया हुआ है।
2: जी सर, एक बात और है कि बीते महीनों के दौरान आपके यानी छत्तीसगढ़ सरकार है और केंद्र सरकार के प्रयासों से आपने एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति भी बनाई थी, तो उससे प्रभावित होकर और फिर जो सुरक्षा बल है उनके दबाव की वजह से भी करीब 3,000 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं, ये फिर से गलत राह पे ना चले जाएं और फिर से वो माओवाद की विचारधारा से प्रभावित ना हो, इसके लिए उनके जो पुनर्वास है या कौशल प्रशिक्षण या उनको आजीविका के अच्छे साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं?
3: मध्य क्षेत्र की बैठक हुई थी, उसमें सभी प्रदेशों से लोग आए थे
2: जी।
3: और उससे पहले 8 प्रदेशों से पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी, डीजीपी सब कुछ यहाँ पर आए थे
2: जी।
3: उस सारी बैठकों में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से लागू किया गया है
2: जी।
3: क्योंकि हमने पुनर्वास उनके किसी व्यक्ति का पुनर्वास ही ऐसा नहीं कहा, हमने कहा इनका सामाजिक पुनर्वास होगा, इनका आर्थिक पुनर्वास होगा, इनका मानसिक पुनर्वास होगा, हम इन सारे विषयों पर हम लोगों ने काम किया है
2: जी।
3: और यहाँ पर हमारे जितने पुनर्वास केंद्र है वहाँ पर SOP डिजाइंड है, सुबह से लेकर शाम तक की गतिविधियां डिजाइंड है, उसमें भगवान की प्रार्थना भी है और उसमें स्किल डेवलपमेंट भी है
2: जी।
3: ये दोनों ही चीजें उसमें है, अध्ययन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इन सभी चीजों के साथ हमारे पुनर्वास केंद्र आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखा है कि प्रारंभ में जब ये नक्सली वापस आए थे उस समय इनके मन में जो भी भाव रहा हो ये धीरे धीरे बदल रहा है। अब इनके मन में ये बात है कि हम भारत के संविधान के दायरे के अंदर ही अपनी बात रखेंगे और सरकार को इस बात से कहीं कोई गुरेज नहीं है। हमारा आग्रह था आप हथियार छोड़ दें, उसमें से 3,000 से अधिक लोगों ने हथियार छोड़ दिए, उसमें लगभग 2,000 लोग गिरफ्तार हुए और 536 न्यूट्रलाइज हुए
2: जी।
3: इसके बाद इन सारे ही बातों का पहला श्रेय किसी को जाता है तो वो सशस्त्र बल के जवानों को जाता है
2: जी।
3: कालांतर में इन पुनर्वासित लोगों के फिर से वापस नहीं जाने का जो प्रश्न है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये बस्तर की प्रकृति के अनुरूप भी नहीं था और बस्तर के लोगों को तो बस उपयोग किया गया था
2: जी। सर एक बात और है कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि पिछले करीब 5-6 दशकों तक बस्तर को माओवाद की समस्या की वजह से जो नुकसान पहुंचा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, फिर वो चाहे केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार, वो अगले 5 सालों के दौरान उस पूरे नुकसान की भरपाई करेगी। इस समय सर इस कार्यक्रम को पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही विशेषकर जो बस्तर संभाग है उसमें भी बड़ी संख्या में श्रोता इस कार्यक्रम को और हमारी जो बातचीत है उसे सुन रहे हैं। किस तरह का नुकसान इस माओवाद ने बस्तर को पहुंचाया है ये थोड़ा सा बताएं। लोग तो वहां जानते हैं क्योंकि उन्होंने उसको भोगा है, लेकिन फिर भी आप बताएं और कैसे इसकी भरपाई की जाएगी। सेवा डेरा तो एक पहली कदम है, इसका थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं सर।
3: लियोन ओयना एक योजना हम लोगों ने चलाई थी पंचायती राज के अंतर्गत
2: जी,
3: जिसमें बस्तर के युवाओं को लेकर के हम रायपुर और अन्य स्थानों पर घुमाने ले जाते थे
2: जी, जी।
3: मैं अनेक ऐसे युवाओं से मिला हूँ जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी लेकिन उन्होंने अपने जीवन में टीवी नहीं देखा था।
2: अच्छा,
3: अब इस तरह की बात करने वाले कि बस्तर में अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और वो बच्चा बस्तर का टीवी भी ना देख पाया रहे, आप अजायब घर बनाकर रखना चाहते हैं बस्तर को
2: जी।
3: इससे मैं पूछना चाहता हूँ, बस्तर हमारा हरा भरा रहे, उन्नत रहे, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण रहे, प्राकृतिक जंगलों से परिपूर्ण रहे, लेकिन वहां के बच्चे में जितनी प्रतिभा है उसके उन्नयन का रास्ता कैसे प्रशस्त नहीं करेंगे आप
2: जी।
3: वहां के नौजवान दुनिया के क्षितिज पर छाने वाले हैं, इसलिए उन नौजवानों के लिए तो हमको मेहनत करनी ही चाहिए। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि बस्तर के गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं कुछ नहीं पहुंच पाई आज तक
2: जी।
3: क्या दिया इस माओवाद ने? यही दिया कि 25 साल का बच्चा टीवी नहीं देख पाता है।
2: बिल्कुल,
3: इन लोगों ने हमारे शिक्षा दूतों के गला काट कर मार दिया उनको
2: जी।
3: हमारे 250 से अधिक स्कूल बम से उड़ा दिए
2: जी।
3: नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे उन्होंने IED बिछा दिए
2: जी।
3: ये सिर्फ ID पहचानता है क्या कि कौन आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति है और कौन सामान्य जनता है?
2: बिल्कुल,
3: ऐसे कितने ही हजारों की संख्या में बस्तर के आदिवासी हैं जिन आदिवासियों ने अपने शरीर के अंग खोए हैं इन आईडी के चक्कर में
2: जी।
3: कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये सारे लोग तो दिल्ली भी गए थे, राष्ट्रपति महोदया से इन्होंने मुलाकात की और अपनी बात रखी थी
2: जी।
3: मैं कहना चाहता हूं कि ये आईडी लगाने का अधिकार आपको कैसे हो सकता है एक सामान्य स्थान पर
2: जी?
3: इन सारे ही लोगों ने बस्तर के लोगों को बंधक बना लिया था। एक गांव का व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता था, आने पर उसको 100-100 बातें विश्वास दिलाना पड़ता था इन लोगों को, अन्यथा सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने पुलिस के मुखबिर कहकर के मौत के घाट उतार दिया, सैकड़ों लोगों को
2: जी।
3: इन लोगों ने मणिकोंटा, झीरम, दरभागुड़ा, घोड़ा गांव, ऐसे अनेक स्थान है जहां पर बस्तर के आदिवासियों की सामूहिक नृशंस हत्याएं की
2: जी।
3: कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? ताड़मेटला हमको ध्यान है, हमको ध्यान है मानपुर मोहला का, हमको ध्यान है तर्रेम का, जहां दर्जनों की संख्या में इन लोगों ने हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को शहीद कर दिया
2: जी।
3: क्या करना चाहते हैं? फाइनली एक ही लाइन है, बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं। और इसको भी माओवाद पढ़े लोग जानते होंगे, हमारे बस्तर के लोगों से इससे कोई लेन देन नहीं था, हमारे बस्तर के लोगों को तो बचपने में ही ऐसे ही उठाकर ले गए और फंसा दिया इन सारे मामलों में। माओवाद अभी जो 3000 मैंने आपको पुनर्वास बताए हैं उसमें से आधे से अधिक तो निरक्षर है भाई।
2: बिल्कुल,
3: मैं आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि इन 50 सालों में, लगभग 40 सालों में पूरे ही बस्तर को मीलों पीछे धकेलने का काम इन लोगों ने किया है
2: जी।
3: और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि आने वाले 5 सालों में हमको 50 सालों की दौड़ लगानी है और बस्तर को उस स्थिति में लाकर खड़ा करना है जो आज समूचा देश हमारा है
2: जी। सर, इस विषय से अलग हटकर एक सवाल, ये अंतिम सवाल है कि छत्तीसगढ़ में डायल 112 आपातकालीन सेवा अभी तक 16 जिलों में थी और अब इस सेवा का विस्तार राज्य के सभी 33 जिलों में कर दिया गया है। इसके तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वाहन हर जिले में उपलब्ध कराए गए हैं। आपने भी यहाँ पर रायपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी किया और अलग अलग जिलों में मंत्रीगणों ने इन वाहनों को रवाना किया है। इन वाहनों की क्या विशेषता है सर, ये जो नेक्स्ट जेन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, और नागरिकों को इस सुविधा से क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: ये वेल इक्विप्ड नए हमारे वाहन हैं, 400 की संख्या में हैं, पूरे प्रदेश में इनको वितरित किया गया है। 112 डायल करने पर वेल विद इन द टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है उसमें ये वाहन पहुंच जाएंगे, इस बात की उम्मीद है। इन वाहनों में अब ऊपर जो कैमरा लगा है वो 360 डिग्री घूम सकता है, सभी तरफ के दृश्यों को देख सकता है। इसमें अंदर इस गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए 3 संसाधन हैं। एक गाड़ी के साथ अटैच्ड मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें मोबाइल ट्रेसिंग होती है। गाड़ी के अंदर GPS इनबिल्ट है, उसमें भी इस गाड़ी की ट्रेसिंग होती है। और तीसरा एक विषय है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक कंट्रोल पैनल लगा है, उसमें कंट्रोल सेंटर से कमांड आते हैं तो उसमें भी लोकेशन की ट्रेसिंग होती है। अब ये गाड़ी जो हमारी है इसकी ट्रेसिंग होना, और 112 जो कोई कॉल करेगा उसको अपने लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसका लोकेशन ऑटोमेटिक आएगा, उसके नियरेस्ट 112 की जो हमारी गाड़ी खड़ी होगी वो जाकर असिस्टेंस देगा। वहां पर अगर कुछ घटना घटी है तो उस घटना स्थल को प्रिजर्व कर सके थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए उसको सुरक्षित रख सके, इसके लिए भी इसके अंदर इक्विपमेंट है। इसमें एक पुलिस के जवान भी एक तैनात होगा ताकि किसी स्थिति के लिए हम समझ सके। 112 की इस व्यवस्था से जनता तक पूरे ही जिले में, पहले 16 जिलों में था, अब ये 33 जिलों में अब आने वाला है। मैं इसमें एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन सिस्टम से भी जुड़े। आज गाड़ी सड़कों पर चलकर पहुंचती है, उससे पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाए 112 कॉल करने पर, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
2: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम जानते हैं बहुत व्यस्त समय है आपका, लेकिन उसमें से भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं।
3: बहुत आभार आपका, बहुत आभार।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के साथ हमारी यह भेंटवार्ता। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:16 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म पूनम के गीत से। आवाज है मोहम्मद रफी और चंद्रानी मुखर्जी की। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म देश प्रेमी का गीत, आवाज किशोर कुमार की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म देश प्रेमी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं फिल्म धर्मवीर के गीत और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ये फिल्म 6 सितंबर सन 1977 को रिलीज हुई थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि पीढ़ियों के दिलों में बस जाती है। ऐसी ही एक शानदार और यादगार फिल्म है धर्मवीर। रोमांच, दोस्ती, प्रेम, त्याग और शौर्य से सजी इस फिल्म ने दर्शकों को मनोरंजन का ऐसा रंग दिया जो आज भी फीका नहीं पड़ा।

इस शानदार फिल्म में अभिनय का दमदार रंग जमाया हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र ने, जिनकी दमदार अदायगी ने धर्म के किरदार को यादगार बना दिया। वहीं चंचल अंदाज और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ नजर आए जितेंद्र, जिन्होंने वीर के रूप में दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म की खूबसूरती को और भी बढ़ाया जीनत अमान और नीतू सिंह ने, जिनकी अदाओं और अभिनय ने कहानी में प्यार और नजाकत का रंग भर दिया। इसके अलावा इस फिल्म में अन्य कलाकार थे प्राण, महारानी मीनाक्षी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, जीवन, रंजीत, सुजीत कुमार, प्रदीप कुमार और बी एम व्यास, डी के सप्रू, चांद उस्मानी, मास्टर बॉबी और रामदीन लोहार के रूप में थे धर्मेंद्र के दत्तक पिता के रूप में हरक्यूलिस। इस फिल्म की कहानी हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

फिल्म धर्मवीर के पटकथा लेखक थे प्रयागराज और उनका साथ दिया था केपी पाठक ने। कहानी जीवन प्रभा, एम देसाई और पुष्पा शर्मा ने लिखी थी मिलजुलकर और संवाद लिखे थे कादर खान ने। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे मनमोहन देसाई। फिल्म के गीत जो लिखे आनंद बख्शी और विट्ठल भाई पटेल ने और इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म में जो गीत हैं उसमें आवाजें थी मोहम्मद रफी, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार की।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म धर्मवीर के गीत। धर्मवीर की कहानी कुछ इस तरह है कि किस्मत बचपन में दो बच्चों को एक दूसरे से दूर कर देती है। समय बीतता है, दोनों अलग अलग माहौल में बड़े होते हैं, लेकिन नियति एक बार फिर उन्हें मिला देती है। एक ओर है धर्म, साहसी, ईमानदार और न्याय के लिए लड़ने वाला। दूसरी ओर है वीर, निडर, खुशमिजाज और दोस्ती निभाने वाला। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हर मुश्किल में वे एक दूसरे का साथ निभाते दिखाई देते हैं। इस फिल्म में जीनत अमान और धर्मेंद्र की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। जब भी पर्दे पर यह जोड़ी आई, दर्शकों ने उसे बेहद पसंद किया। एक ओर धर्मेंद्र का दमदार और आकर्षक व्यक्तित्व, तो दूसरी ओर जीनत अमान की ग्लैमरस अदाएं और आत्मविश्वास से भरा अंदाज। दोनों की केमिस्ट्री ने फिल्म धर्मवीर को और भी रंगीन बना दिया। इन दोनों कलाकारों के बीच की नोक झोंक, रोमांस और चुलबुला अंदाज दर्शकों को

का हनी से जोड़े रखता है। और जब पर्दे पर इतनी खूबसूरत जोड़ी हो तो गीतों में भी अलग ही जादू महसूस होता है। तो आइए अब सुनते हैं जीनत अमान और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया बेहद लोकप्रिय और मस्ती भरा ये गीत।

फिल्म की कहानी की ओर रुख करें तो फिल्म में राजमहल की साजिशें, प्रेम है, त्याग है और रोमांस से भरी इस फिल्म के कई दृश्य भी हैं। कहीं तलवारों की टकराहट है तो कहीं भावनाओं से भरे रिश्तों की मिठास। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कई राज खुलते हैं, रिश्तों की सच्चाई सामने आती है और अंत में सत्य, प्रेम और दोस्ती की जीत होती है। फिल्म में शानदार संवाद, रंगीन दृश्य, मधुर गीत और दोस्ती की अनोखी मिसाल पेश करती है ये फिल्म। आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। तो अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं

एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म धर्मवीर के गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी और राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 96 पैसे महंगा हुआ है। रायपुर में आज सुबह से पेट्रोल 105 रूपए 36 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 98 रूपए 47 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी तीसरी बार हुई है। राज्य शासन ने कल जारी आदेश में सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनके लिए अब अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल 24 मई तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। माई भारत और जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आज दंतेवाड़ा जिले के शिक्षित और कुशल युवाओं के लिए विशेष प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से चयनित स्थानीय युवाओं को एनएमडीसी दंतेवाड़ा में इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित होने वाले प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह 9,000 रूपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 6,000 रूपये का एकमुश्त ज्वाइनिंग बोनस भी देय होगा। यह पंजीकरण शिविर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज जवांगा दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया। साथ ही करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बने शंकरनगर खमाड़ी कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा राजधानी में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान ने सुगम संगीत पेश किया। उन्होंने कबीर के सूफी कलाम गाए, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उप शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। दोनों ही गायकों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान स्वागत उद्बोधन आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने दिया, वहीं आभार प्रदर्शन कार्यक्रम प्रमुख पंकज मेश्राम ने किया। नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम के अंतर्गत बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड ने 2025 में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सेंट्रल इंडिया जोन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी और राज्य शासन ने सभी पेट्रोल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। कार्यक्रम आजीचो सगा में आज प्रस्तुत है भित्तीय चित्रकार और वादक कलाकार श्री राजेंद्र राव रावत से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है भरत कुमार गंगादित्य।
2: आजीचो सगा ये कार्यक्रम सुन तो जम्माए दादा दीदी सियान सजन मन के मचो बाटले खुबे खुबे जुहार। दादा दीदी मन आजीचो सगा कार्यक्रम भीतरे आमी बेरा पस्ता कएक झन लोग मन के हाक देऊ से जे मन कोनी कलाकार रसोत, कोनी साहित्यकार रसोत और कोनी दूसर प्रकार चुबले हुनरकारी लोग मन रसोत। एमन संगे आमी भेंटघाट कराऊ से असनी आजी आमचो लगे अमरला से एमन चोय ढूंढले आमी जानू एमन चो परिचय के आले दादा तुमचो परिचय के सांग दिया।
3: सपाए सियान सजन मन, दादा दीदी मन, पिला पिचका मन सब के मैं जुहार बोलने से मोचो नाव राजेंद्र राव आसे और मैं बस्तर चो कला भित्रे बस्तर चो भित्ति चित्र के बल बनाए से और बस्तर ने हल्बी गीत के बल लिखूं से इतना नहीं मैं नाटक ने बल्ले काम करें से और जसन हल्बी गीता से लेजा गीता से झालियाना से चैत पर्व आसे गीत मन में बजाएं से बल ढोलक बजाएं से नाल बजाएं से तबला बजाएं से तो ये सफाए काम के मैं बेरा बेरा जसन जसन मक के काम मेरे से मैं करते जाए से।
2: तो तुम गांव चुनाव बोल साहब
3: मचो मैं कुंडा गांव ने रहे से कुंडा गांव ने मचो जन्म बल उठाए होली तो बोले मैं उठाए यहाँ से और ये सब कला काम ने भिड़ू रहे से मैं
2: तो इतरो कला मन के तुम ही सांगलास।

0: तो ये कलामन ने सबले मुरने आमी गोठ्यावा तुम छो भित्ति चित्र बल शास्त्री के बलों ने भित्ति बलों ने ये बाना लिख तो भीती
1: जसन दीवार होए से घर चो दीवार होए से कहीं बल अच्छा दीवार बना सत लोग मन
0: उता
1: आमी चित्र मन के बना हुआ
0: हाँ। तो ये के तुम्ही कहाँ ले सीखलास और केबले के सिक्तो मूर होली और कसन कसन ये भित्ति चित्र हिसाब ने तुम्ही आगे बढ़ते गेलास ये घोट के सांगुन दिया
1: भित्ति चित्र चो पूरे मैं थोड़े असन जसन हमी पशु पक्षी चो चित्र के बनाते रहे उन थोड़े पेड़ पौधा चो चित्र बल्लों ने जसन प्राकृतिक चित्र वगैरह रहे थे नी उनके बनाते रहे और ये काम के मुझो आया सिखा लो
0: अच्छा।
1: आया बल्लों ने पहले उन जो जमाना में उन टीचर रहला
0: अच्छा अच्छा
1: तो उन जानते रहला तो उन्हीं में के सिखा लो तो सीख लो पाछे मैं अपने घरे बसुन भाती काम करते रहे। एक दिन खेम दादा हम चो भित्ति चित्रकला चो उन बल अच्छा जानकार आसे दादा आसे
0: खेम दादा
1: खेम वैष्णव दा आसे उन इला घर बाटे उन दख लो मके उन बोलो कि बाबू तु भित्ति चित्र कसन नहीं बना हुआ ये चित्र मन के बनाऊ कहीं नहीं होए थे तू भित्ति चित्र के बना हुआ जाले आम चो बस्तर चो संस्कृति चो बल रक्षा होए दे और बढ़िया हिसाब ने तुझ नाव बल पढ़े दे। तो मैं दादा के पूछ ले मल कसन करें दे मैं भित्ति चित्र का जे तो उन्होंने मके इजी कसन सांगला आसन आसन भित्ति चित्र बना तो रहा है ये दीवार ने बने से उनके तुई घर ने बल बना हुआ जाले घर ने बनाओ कहीं बल बना हुआ जाले बना नी बोलो ने कागज ने बोले तुई बना सकते और काय बोलो ने कहीं कपड़ा ने बोल तुई उनके बना सकते बोले तो मैं शुरू कर लिया उसने धीरे धीरे तो जसन मैं नानी बेरा ले था कोंडा गांव ने आसे तो था मचो संगवारी पीला मन खेलतो बीता पीला मन जोन मन ना आसत उनचो संगे ये बोलो ने बस्तर चो चित्रो रुसुमा से बस्तर चो चित्रो मेला मड़ी हो से नाचा गम्मत हो से नाचा हो से सबके मैं देखते रहे तीज त्यौहार से उनके सबके देखते रहे तो गांव ने बोल जाते रहे आप लोग घर क्षण भती कहीं मचो दोस्त मन हाक दिला जाले मैं उन बाट बोल जाते रहे तो उन बिहाव के देख ले मेला मड़ी के देख ले नाचा के देख ले तीज त्यौहार के देख ले तो उन हिसाब ने मैं विचार कर ले ये सब चीज तो उत्तर बना लो ने अच्छा पढ़े थे उन्हीं हिसाब ने मैं आप लोग विषय वस्तु तैयार कर ले बल्लो ने जसन मड़ई कसन होए दे मड़ई चो बेरा कसन कसन देवता मन बिहार सत कसन बाजा मन बास
0: बाजे
1: से उन मन आसन सबके दखुन भाती उन हिसाब ने मैं मल्लो ने भित्ति चित्र बनाते हिसाब तो आसन करते करते मैं मचो लगे मने संस्कृति चो जानकारी बल मके हो मुरियाली जसन बिहाव ने कसन होए से इथा चो लोक कथा मनासत तो लोक कथा ने कसन काय काय लोक कथा मनासत जसन मामा भांजा चो लोक कथा से चाला कोल्याचो बाग चो कहानिया से और खूब चाय ललचाह काकड़ा से बेलकन्या से ऐसा खूब कहानी मन आ सो तुम तो उन कहानी मन के बल मैं
0: ये सब जो बोले बनातुर हिसाब
1: बनातुर हिसाब के मैं हाँ चित्र बनातुर हिसाब के फिर मैं आप लोग विचार करुण भाती और फिर मचो अंदर ये कला तो मैं कहीं नहीं सीख ले सीखू रहे आप लो हिसाब ले उन लोग ने और आप लो आया चो हिसाब ने उन मके सांगते रहला तो उन्हीं हिसाब ने मैं सबके आगे बढ़ा ले तो आसन करते करते मैं पूरा संस्कृति चो ज्ञान बल होली मके
0: तो दादा जसन तुम्हें बोलास कि भित्ति चित्र ने खूबे आसन भिने भिने रुसुम मंचो तुम्हें चित्र मन के बोले बना लास तो ये के बना लो ने तुम के काय फायदा होली और आगे तुम्ही काय काय काम के करलास एक बल के निकसांगुन दिया
1: भित्ति चित्र बना तो हिसाब ने मैं जसन मैं चित्र बनाते गेले और लोग मन उनके दखला तो मचो चित्र चो प्रदर्शनी जगह जगह लगली बन छो जैसे दिल्ली हाट ने बोल लगली दिल्ली
0: अच्छा,
1: दिल्ली बल जाऊ रहे मैं
0: हाँ,
1: दिल्ली एमबीसी में एमबीसी उठाएबल मचो चित्रकला चो प्रदर्शनी लागली
0: हाँ।
1: इतरो ने प्रगति मैदान ने बल मैं मचो
0: प्रगति मैदान बोले कहा
1: प्रगति मैदान दिल्ली
0: अच्छा दिल्ली चाहे
1: दिल्ली चाहे उतरो ने भोपाल ने बल मचो प्रदर्शनी होली
0: भोपाल ने कहा
1: भोपाल ने भारत भवन
0: अच्छा उता बोले लागली
1: भारत भवन ने बल होली उतरो ने नागपुर साउथ जोन कल्चर इथा बल मचो प्रदर्शनी लागली चित्र चो और रायपुर ने बोले जसन आमचो नुआ राज बनली छत्तीसगढ़ बनली उन बेरा बल मचो चित्र चो प्रदर्शनी उठा टाउन हॉल ने लगु रहे इतरो ने फिर मैं पुना बल गेले हैदराबाद बल गेले चेन्नई ने बल मचो बेंगलोर ने बल लागली एबे मैं बेंगलोर बल जाऊ रहे इस उबर तो ये सब भित्ति चित्र चो हिसाब ने मुझे नावल होली और मके 1997 में मध्य प्रदेश राज्य रला हुन बेरा राज्य पुरस्कार बल मिले था ने
0: अच्छा।
1: तो ये मचो मने चित्रकला चो क्षेत्र ने मैं काम करते रहे ये मुख्य फायदा होली
0: इतरो सब पर का जमान चो गोट आए कि तुमके मध्य प्रदेश राज्य बाटले अच्छा सम्मान बल तो और ये चित्र हिसाब ने सोचे भित्ति चित्र बना साहस कि और बोले कहीं कहीं विधा रहे से हुन हिसाब ने कहीं बना साहस
1: ये भित्ति चित्र कला चो हिसाब ने मैं एबे जसन बस्तर चो जो दशहरा से 75 दिन चो उन चो 75 दिन चो मैं कहानी मिलो ने चित्र रुसुमा से उन चो 75 चित्र बन के बना ले से
0: अच्छा
1: और उनके बले बे प्रदर्शित करते हिसाब आ से मचो
0: उनके दखा उन प्रदर्शन ना जुनता
1: एबे ना जुन होली से और बस्तर शैली ने बस्तर भित्ति चित्र शैली ने ही बल्लो ने मैं रामायण चो बल काम करे से दुपट्टा कोसा चो दुपट्टा मन ने
0: अच्छा।
1: मैं उन रामायण बनाए से तो हुन्ने थोड़े भित्ति चित्र शैली के थोड़े डेवलप कर ले से बल्लो ने ऐसा ना से कि उन चो विकास कर ले से और विकास कर लो ने कहा है कि जसन राम और लक्ष्मण जो ना से सीता से रावण ना से ये सब चो चित्र जसन बनाए से उन बस्तर शैली ने उन मने उनचो पहनावा उनचो रतो हिसाब चलतो हिसाब बस्तो हिसाब उन एकदम बस्तर शैली था आसे और उनके धरुन भाती मैं उन रामायण के बनाए
0: बोलो ने होता राम जसन धनुकांड धरे दे उन बस्तरिया हिसाब
1: बिल्कुल बस्तरिया हिसाब ने
0: उनचो पिंधा ओढा
1: बले हां जसन हुन दोती बल पिंधे ताले घुटना लियो घुटना हिसाब ने पहन लंगटासन पल पड़े दे सीता बल पिंधे से बल्लो ने हुन पाटा आसन पिंधे दे बल्लो आसन ये
0: तो ये जसन तुम्ही शैली बल्लास भित्ति चित्र हम बोलू से हुन दीवाल ने भित्ति ने बनातो तो हुन जसन बस्तर ने बने से हुन बना जसन बना सोत हुन हिसाब ने आमी काय ने बनाऊ से जसन एबे तुम्ही सांगला सुन दुपट्टा हुन कोसा भित्ति ने हुन वडक नुआ प्रयोग
1: नुआ प्रयोग
0: तो एबे और तुम्ही जसन बना लो काय ने बनवा हस कागज ने बनवा हस काय
1: जसन उन चोका जी मैं आप लो हाथ ने ही कैनवास बनाए से जसन हाँ। उन लट्ठा कपड़ा मिरे से
0: हाँ।
1: उन सूती चो कपड़ा के आनुन भाती फिर गेरू मिट्टी पीली हाँ। छुई मिट्टी सफेद मिट्टी बल्लो ने सफेद छुई रहे से हाँ। छुई मिट्टी रहे से नहीं उनके पक्का भिजाऊ से आमी उनके उनके बिल्कुल चिकना बनाऊ से और उनने फिर थोड़े गोंद वगैरह मिरा उन भाती कहीं लाशा के लगा उन भाती उनने फिर कपड़ा ऊपर पोतुआ होता उत्तरो मस्त चिकना होए से पाछे हुन चोपरे बाना लिखुआ में उन्हें अपलो बस्तर भित्ति चित्र जो हिसाब ने
0: तो असन करुन आगे हुन के बनाऊ के लागे से वो तो फ्रेम महा बनाऊ के लागे
1: फ्रेम बना तो जसन
0: लोग देसी महा बने
1: देसी मने हुन लोग मन जसन बलसत नहीं कि भाई तुम्ही आमचो घर यून भाती बनाऊ दिया अब कहाँ कहाँ जाऊन भाती बनाऊ है तो उन मन बोल सत के ठीक है तुम्ही एक काम कर आम के कपड़ा ने बनाऊ दिया से तो फिर मैं आप लोग हाथ में कैनवास बनाए से और उन कपड़ा ने बनाऊन भाती उनके दीऊंदा है फिर उन मन आप लोग हिसाब ने फ्रेम कर सत मन पसंद हिसाब ने कि कुन मन मेटल चो बना सत, कुन मन लकड़ी चो बना सत, कोई बीजा लकड़ी चो, तो सागुन लकड़ी चो, कहीं वाल फ्रेम बना सत, रंग रंग चो, उन हिसाब ने बना उन भाती
0: उनके आप लोग घरे लगा हुआ था, डांस होता तो भित्ति चित्र ने और जैसा चित्रकला प्रदर्शन ने कहा है जवन और बोले कहीं काम कर ला सा सांग तो बीच कहीं बात ली से था।
1: मैं लगभग बल्लो ने बड़े बड़े शहर ने गेलो से और मचो बना लो चित्र मन जैसा इटली बाट आप लोग भारत से बाहर बल गेली से इटली गेली से
0: इटली
1: हाँ फ्रांस ने बल गेली से
0: अच्छा
1: उठा चो मैं नहीं जाऊ रहे उन उठा चो मने लोग मन यू रला घर यू रला और घर यून भाती उन मन पेंटिंग के
0: घेनुन ने खूब नंगत गोटा है कि हम चो देश भारत ने ची नहीं दूसरा देश ने बोले तुम चो बना लो चित्र मन अमरली
1: से
0: तो ये तो तुम चो गोटो विधा भित्ति चित्र चो गोट के गोठियालू और जैसा तुम्हें सांगते रहला इसकी जैसा कहा है कोनी गीत गा हुआ तो उन संग में बाजा बजाऊ और बाजा बोल लो ने ढोलक बल्ला इसका
1: ढोलक आसे तबला आसे तो ये ढोलक बजा तो और तबला बजा तो बोल ये
0: कसन सीख ला एक साथ
1: मैं कसन सीख ले ये एक बड़े मने जोरदार घटना आसे रोचक घटना आसे बोलो ने ऐसा ना है कि मैं दसवीं पढ़ते रहे उन बेरा मके ये सीखतो हिसाब मने मैं घरे पेटी के बजाउन भाती टेबल के बजाउन भाती नानी बेरा ले बजातो हिसाब आज कसन बोलो ने घर ने रेडियो रहे तो रेडियो ने गाना मन के सुनुन भाती मके बोल बजाऊ भाई तो मैं उन सब चीज कैसे बजाते रहे तो पाछे मैं देख ले कि मैं थोड़े अच्छा बजाऊ सके से बोलून भाती मचो उंगली मन चले से हाथ खेले से बोलून भाती तो मैं आप लोग घर ने बाबा के बोलने मचो बाबा मके थोड़ा पैसा देस मैं तबला घिनू ना आने दे बोलून भाती तो मचो बाबा पढ़ाई लिखाई कर उन कहा तुम तबला सीखुआ कौन सिखाए तुके फोकट ने आनुन भाती तु खर्चा बड़ा हुआ मैं पाछे फिर हो गए हूं दिन एक दिन मचो घर सगा मनीला मुझे बड़े बाप मुझे बड़े बाप ही लो तो बड़े बाप के मैं सांग ले मुझे बड़े बाप मके 250 रुपया दिलो
0: अच्छा
1: तो 250 रुपया दिलो तो मैं उन पैसा की धरुन भाती जगदलपुरी ले जगदलपुर यून भाती मैं था चांदनी चौक ने एक ठन दुकान रहे स्टेशनरी चो था तबला बल बिकते रहे तो मैं उठा तबला दखुन भाती गे नहीं पूछ ले कितरो चौहा से बोले तो उन खूब महगा महगा सांग लमके 500-700 आसन बोल फिर एक ठन तबला के देख ले पूछ ले कितरो आसे थोड़े नानी आसन रहे तो उन बोलो 250 रुपया आसे मैं बोल रहे मचो लगे 250 रुपया तो आसे दिले मैं हूं के उन तबला के घेनू नहीं घर नहीं ले मैं घरे नी उन भाती फिर मैं अब कसन करें उनके बजातु हिसाब बोलो ने तबला तो सब उन उठा फिंगर सेटिंग जरूरी आसे और कसन कौन लगे स्ट्रोक कर लो ने कौन लगे उंगली लगा लो निक कौन आवाज निकरे दे उन सब सीख तो जरूरी आसे कसन करें दे बोले तो मैं एक ठन गाइड के घेन ले गाइड के घेनुन भाती मैं उठा मन लगाऊ बहुत मने मैं काय सांगू आए एकदम भया होले मैं सीख तो खाजे जसन लोग मन उन कराटे ग्रुप सीख तो खाजे भया हो सत नहीं कहीं बोल दीवार के दख ले दरवाजे का दख ले कहीं मारून दे सत था उसने मैं बोल नहीं एकदम काय बोलो ने बजा तो हिसाब ने मैं बोल पागल हो रही रेडियो ने गाना सुन ले बोल ले नहीं ओ भात खातो बेरा बल ओ गाय नहीं रहतो रहा है माने गाना सुन ले माने मचो हाथ पाए चालो मचो ये हिसाब के दखुन भाती आया बल रीस हो ये तुई कसन कर सी तुई भात खातो छानुन तुई ढोलक बजा सी तो तबला बजा सी
0: ये कितरो पढ़तो
1: ये मैं दसवीं पढ़तो बेरा चो मचो अब दखा दसवीं पढ़तो बेरा बल्लो ने आजकल चुल्ले का मन खूब सियान हो सत आमी उतरो नी उ रहे लेकिन कला काज एकदम पागल हो रहे अब उतरो ने मैं धीरे धीरे सीखुक मुरियाले तो मोचो गुरु बन ली रेडियो रेडियो ने अच्छा अच्छा गीत मन जसन जसन सरल सरल गीत मन बाजा मन हाँ तो जसन दादरा कहरवा काय बोलो ने झपताल ये सब धीरे धीरे बजात मुरिया तो
0: सब सीख
1: ले मैं और सीखते ने मैं जसन जसन सीखते गिल मके हरी खूक और मचो फिर लगन बल बाढ़ ली हुनी साहब ने फिर मैं तबला ढोलक मुरियाती उतरो ने फिर आमचो कोंडा गांव ने सांस्कृतिक पार्टी में शुरू होला सांस्कृतिक पार्टी में शुरू होला तो मैं बनफूल सांस्कृतिक समिति उठा जाऊ रहे उठा बल सीखने थोड़े बजाते बजाते फिर नवरंग सांस्कृतिक समिति उठा बल सीखने फिर कुड़ी फूल सांस्कृतिक समिति रहे उन बेरा उठा बल जाऊ थोड़े दखने उठा बल तो असने सागर सांस्कृतिक समिति रहला उठा बल जाऊ बजाते रहे तो उठा रिहर्सल बेरा बजातो के मके अच्छा ज्ञान मिली कसन बल्लो ने एक रिहर्सल ने एक एक गीत के 10 हार 20 हार 25 हार बन जाता अच्छा है तो उन्नी साहब ने मैं बजाते रहे और सीखते गए
0: हाथ रोटते गेली
1: और मचो
0: बाजती गेली
1: बल्लो असन तो असने मने मैं एक गोट के पते आले बिना भया होलो कोनी गुण नहीं मिरे
0: असन है तो ये तो होली बजा तो बीती गोट तो ये और लिख तो हिसाब ने काय काया से और
1: लिख तो हिसाब ने मैं हल्बी ने मैं लिख तो शुरुआत करने से और पाछे फिर मैं जसन अपन मन जाना सी मैं टीचर बला से तो मैं जोन स्कूल ने पढ़ाते रहे उठा बरक पीछे बोलो ने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बोल पीलामन का जे गीत लिखते रहे कहीं भजन लिखते रहे कहीं देशभक्ति गीत लिखते रहे तो हिंदी ने बल मैं लिखते रहे
0: अच्छा, हिंदी
1: और मैं जब नवरंग सांस्कृतिक समिति ने रहे हुन बेरा था हल्बी गीत छत्तीसगढ़ी गीत ये गीत मन ने लेखा लेखी मन नाचते रहला ये गीत नाटक ने बल रहला तो उठा मैं हल्बी गीत लिखते रहे तो हल्बी गीत ने अलग अलग विषय रहला अलग बल्लो ने जसन कहीं पढ़ाई चो संदेश दे तो हिसाब चो गीत रहे कहीं उन सरस्वती वंदना चो रहे असन गीत वंदना वगैरह चो रहे फिर उन्हीं लेखा लेखी चो श्रृंगार गीत रहे बल्लो ने असन गीत मन के मैं हल भी नहीं लिखते रहे
0: अच्छा गोटो कौर पूछ तो गोट बाज ली कि जैसे बाजा बजा तो हिसाब ने पाछे फिर कहाँ कहाँ बजा तो काम होली
1: मैं जसन नाटक जब खेलुक जाते जाते रहे थिएटर में उठा मैं जसन तबला ढोलक लोकगीत ने बल बजाते रहे और हिंदी गीत बल ने बजाते रहे तो और जसन मचो बोलो ने सफलता बोलतो मचो बड़े सफलता काय रली मैं जब आकाशवाणी ने यून भाती इथा चो लोकगीत ने मैं बजा ले
0: ये बोले
1: नंगत गोट रहे एकदम बल्लो ने मैं भूलकू रहे दखा खेम वैष्णव और साथी बल्लो ने लोकगीत मन एवेबल बाजुआत उनमें जसन गीत मन रला कोन कोन रे नवदल जावा बे कोन कोन रे नवदल जावा बे कोन कोन रे नवदल जावा बे उन असन गीत मन रल ने उन ने मैं बजाने से
0: ये आम चुलग नानी असन ढोलक बोले ऐसे ये खेड़ी का गाउन सुना लो ने अच्छा लगती बजाते बजाते गाओ खोए से कसन जाए
1: खोए से जी जी कत
0: लेकिन फिर कोई नहीं
1: पड़े सांस बल फुलुन जाए से
0: नाल मई बल गाओ लागे
1: लागे जाली तुम्ही मुरिया वासे तुम्हें थोड़े अच्छा बजाओ दखिस्ता
0: हले

0: बड़े हैं तो जमली दादा।
1: तो ये मचो मने संगीत प्यार आसे उन संगीत चो काजे पहुंचो चित्रो मने मया से और मैं उनके जीए से मया संसागे से क्योंकि संगीत नी रलो ने मैं मचो जीवना नी आए असन आए।
0: और ये जसन मैं हल भी गीत लिख ले बोलून बोलते रला से फोटो का तक तुम चो लिख लो भी तिक सुना वहा
1: मचो लगे आ से तो जसन संदेश बीती बल गीत आ से तो
0: संदेश
1: संदेश बल मैं दे तो उन गीत क्या सुना।
0: हाँ,
1: जो

0: खूब सुंदर गीत है दादा। तो असन तो और बोले गीत लिखला सा
1: और गीता से
0: और काय
1: ये
0: तो संदेश बीती रहे।
1: हाँ
0: और कसन गीता से
1: ये श्रृंगार ने बल मैं जसन लिखने से
0: तो दिया।

0: तो ये अच्छा नगद गीत रहे। तो ये अच्छा तो भी गीत मन बोले लिखते रहा सब गीत मन चो प्रदर्शन बोले होते रहे। और गोटोक विधा तुम चो सांगलो हिसाब ने बाचली से होना है नाटक तो नाटक बोले हो से अभिनय सुवांग तो नाटक विधाने काय काय तुम्हें आदित लेकर
1: नाटक विधाने मैं सूत्रधार चो बल रोल करते रहे और पात्र बल बने मैं नाटक ने जसन एक हार मैं जज चो कुर्सी ने बसुन भाती न्याय करते हिसाब बल रहे
0: एक नाटक जो नाम
1: उन युगांतर रहे
0: नाटक जो नाम युगांतर
1: युगांतर रहे नारायणपुर दूसर एक नाटक और रहे
0: नाटक जो नाम रहे नारायणपुर
1: नारायणपुर उन नारायणपुर नाटक में सूर सदन आगरा
0: अच्छा
1: उन बड़े थिएटर आसे सिया जो बहुत बड़े थिएटर आसे हुन उठा मैं खेलुक जाऊ रहे तो उठा मैं एक पागल लेकी चो बाप चो रोल करू रहे मचो उन बेरा उम्र रहे 20-21 साल रहे और मैं आप लोग उम्र चो हिसाब ने खूब बड़े रोल बड़े उम्र चो रोल
0: उम्र रहे नानी अंतर बड़े लोग चो रोल करूं दिखाओ रहा
1: दिखा तो हिसाब रहे मचो तो हुन बेरा मैं सुर सदन ने हुन जब थिएटर ने उतर ले और बाप जो रोल के मैं कल ने मके खूब हरी मन ने होली कि मैं आज थिएटर जो दुनिया ने बोल उतरून भाती एक अच्छा कलाकार बन भाती काम कर ले से बोलू मने मचो हुन काम के दखुन भाती खूब प्रशंसा हो रहे
0: और कहां कहां
1: और था जसन ये भारत भवन ने बल आमी एक नाटक खेलू रहू उतरो ने रिसाली थिएटर भिलाई
0: भिलाई
1: इथा बल आमी जाऊ रहू और

0: दिल्ली नेबल आमचे एक कार्यक्रम हो रहे तो उथाबल आम्ही नाटक केलं जब रह तो ये असन मुचो 10-15 साल जो जीवना रहे ये नाटक खेलतो हिसाब जो तो उन बेरा मैं हुन बस्तर नवरंग सांस्कृतिक समिति ने रहे
1: अच्छा
0: उठाए हम रिहर्सल करते रहो
1: उन्हीं संस्था बाटले
0: संस्था बाटले जाते रहे हम और उठाए मैं रहुन भाती दे हल्बी गीत के बल लिखने जसन और उत्रो ने हिंदी गीत बल लिखने हिंदी गीत ने देशभक्ति गीत मचो एक आ से क्यों रक्त बह रहा है मेरा देशवासियों जागो उठो जवानों मेरे देशवासियों बल्लो ने जसन आज पुलवामा आतंक होली जसन घटना होली से हुन हिसाब ने बल ये गीत देश का जो फिट हो से कि क्यों रक्त बह रहा है आज मेरा देशवासी
1: खुबे नगद गोठा है कि तुम्ही बस्तर चो गोटो संस्कृति भित्ति चित्र के तरुण बले के। तुम्ही चल सास हुन चो संगे बस्तर चो गीत मन में बाजा बले तुम चो बाजे से और संगे तुम सांगलास की हिंदी ने बले लिखते रहो से और हल्बी ने बले लिख सास और नाटक विधान बले कई छाने जाऊन भाती तुम्ही दखालास तो कितरो सुंदर तुम ये काम के कर सास और ये तो समय ने और कई योजना से
0: ये तो समय ने मैं जसन ये गोंचा पर्व चो बोल मैं भित्ति चित्र बनाए दे और आम चो बस्तर चो जो नाचा मनासत
1: नाचा
0: लोक नृत्य मनासत लोक नृत्य चो कसन बोलो ने ये आम चो हुलकी नृत्य से कोनी नहीं जान उतरों ने कक्षाड़ गीत उनके कोनी नहीं जाना उतरों ने परब गीत मना सत उनके कोनी नहीं जाना था तो ये नाचा मन ने काय होए से कसन होए से उनके बल मैं चित्र ने दखाएं दे मैं चित्र के आगर बल्लों ने एचो काजे पूरे करे से मैं कसन बल्लों ने लोग मन किताब मन के पढ़ून भाती समझून भाती उनके जनुक नहीं सक आधुनिक युग होला सी इथा लोग मन लगे बेरा नहीं आए तो कम से कम बेरा ने मैं चित्र दखाऊन भाती कि चित्र चो हिसाब ने
1: और मन झटके समझुक सको
0: झटके समझुक सको एचो काजे मैं भीती चित्र के आगर ध्यान दे से एचो वाट आगर काम करे
1: ये तो खूबे नगद गोठा है दादा तो राजेन दादा आजी तुम चो संगे भेटघाट होली और तुम्ही कसन करून आपलो कला ने तुम्ही पुरे इलास कसन सीखलास और काय काय काम करलास ये सपाय आमचो सुनतो लोग मन के सांगलास तुम्ही और सुनून भाती जसन सुनतो लोग मन के बले खूबे नगत लागली होती तो आले आजी चो सगा कार्यक्रम ने असनी फेर कोनी दिन दादा दीदी मन आमी दूसर कोनी असन कलाकार कोनी अच्छा गुणकारी हुनरकारी माने संगे फेर भेटघाट हुआ तो आले जाते पूरे सपाय सुनते लोग के खूबे खूबे जुहार
0: मचो बाट लेवल सपाय बस्तरवासी के जुहार में पले से
1: जुहार
2: आजी चो सगा इस कार्यक्रम में अभी आप भित्ति चित्रकार और वादक कलाकार श्री राजेंद्र राव रावत से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। इनसे बातचीत कर रहे थे भरत कुमार गंगादित्य। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीत। गायक कलाकार हैं त्रिलोक साहू और साथी।

0: खेत डहर जाथो खेत डहर जाथो खेत डहर जाथो।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी गीत। गायक कलाकार हैं त्रिलोक साहू और साथी।

बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे त्रिलोक साहू और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक, गीतकार और संगीतकार के बारे में, जो है गुरु रंधावा। उनका असली नाम गुरशरण जोत सिंह रंधावा है, जो पंजाबी और बॉलीवुड संगीत जगत में सबसे लोकप्रिय कलाकारों में गिने जाते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं उनके गीतों का,

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गुरु रंधावा का जन्म 30 अगस्त 1991 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी। उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों और समारोहों में प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली में रहते हुए रंधावा ने MBA की पढ़ाई पूरी की। रैपर बोहेमिया ने उन्हें गुरु का नाम दिया, जो मंच पर उनके पूरे नाम को छोटा करके बोलते थे। तब से गुरशरण ज्योत सिंह रंधावा गुरु के नाम से पहचाना गया।

गुरु रंधावा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे स्तर से की। उनका गाना सेम गर्ल, जिसे उन्होंने गायक अर्जुन के साथ गाया। गुरु रंधावा को असली पहचान गाने पटोला से मिली, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सुपरहिट गाने गाए।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर गुरुवार और शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: गुरु रंधावा ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। फिल्म हिंदी मीडियम का गाना सूट सूट बहुत हिट साबित हुआ। इसके बाद वे बॉलीवुड के लोकप्रिय गायकों में शामिल हो गए। वर्ष 2019 में उनका गाना स्लोली स्लोली अमेरिकी रैपर पिटबुल के साथ गाया। इस गाने ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई।

गुरु रंधावा ने गानों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में अभिनय भी शुरू किया। उन्होंने पंजाबी और हिंदी फिल्मों में विशेष उपस्थितियां दी और बाद में मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया। गुरु रंधावा अपने स्टाइल, हेयर स्टाइल और फिटनेस के लिए युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। वे अक्सर नए फैशन ट्रेंड अपनाते हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं।

गुरु रंधावा पंजाबी और बॉलीवुड संगीत जगत में लोकप्रिय गायकों में से एक हैं। अपने सुपरहिट गानों, शानदार गायकी के कारण उन्हें कई पुरस्कार और अवार्ड से नवाजा गया। उनमें है पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड, मेल डेब्यू मेल सिंगर अवार्ड, बेस्ट ग्रुप अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, आईफा अवार्ड आदि शामिल हैं।

गुरु रंधावा ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से संगीत जगत में बड़ी पहचान दिलाई। उन्हें मिले पुरस्कार ये साबित करते हैं कि वे आधुनिक पंजाबी और बॉलीवुड संगीत के सबसे सफल कलाकारों में से एक हैं। हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायक, गीतकार और संगीतकार गुरु रंधावा पर केंद्रित कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। सबसे पहले सुनिए उदित नारायण की आवाज में ये गीत। गीत लिखा है फैज अनवर ने और धुन बनाई है निखिल विनय ने।

विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है।

0: रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे, वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है संपतराम नाग की, संयोजक बलवीर चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: फोन इन लोगरस के सुन तो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो फोन इन लोगरस।
2: मेरी कुरासिया कांग्रेस जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ।
1: सांगा ना कसन आसास दादा।
2: हाँ दादा।
1: हाँ कसन आसास बोले।
2: ठीक है दादा, आज मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग में जा रहे हैं ड्यूटी तरफ से।
1: हाँ।
2: तो ट्रेनिंग एक दिन के भेजे रहे।
1: हाँ।
2: तो वही आएंगे एक बजे करीब, उसके बाद थोड़ा सा लेटर लेने के बाद ध्यान रही तो वो बोले तो फोन करना है डॉक्टर से।
1: हाँ।
2: तो दादी से बात करना है। तो दादा मौसम एकदम गर्मी खूब बढ़ गई थे, हालत खराब हुई थी, खूब गरम गरम लू हवा चला थे। तो लोगों से आग्रह करूँ मेरा कि ये मौसम है सेहत पर विशेष ध्यान दे और जिन घर से जरूरी हवे तभी घर से बाहर निकले उमन।
1: हाँ क्या गांव आए जानू गांव आए गांव बेरा नहीं टावेल नल साता चाती दरुन निकलतो रहे और संग संग पानी बाटल ने बोल पानी दरुन जातो रहे
2: पानी बोतल खीरा ककड़ी कलिंदर ये सब खाए।
1: हाँ
2: तीनों में पदार्थ ना खाने दादा और सेहत पर विशेष ध्यान दे और जानवर मन के पशु मन के झूठ नहीं बांध गैया मन के भैंसा मन के झूठ नहीं बांधना है उमन के एकदम छाये जगह में पाठे जरूर उमन करे नाला या नदी करती दे जाए या तालाब करती उमन के पानी में जाते हुए डूब के नहाते भैंसा मन ऐसे करे और सफाई का विशेष ध्यान दे और छाए जगह में बांधे के उनका गैया गरी हो गई कुत्ता हो गई एवन हो गई पशु पक्षी मन हो गए मन के मतलब खाना वाना दे और बाकी भोजन न।
1: और इंद्रवान दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला ससना।
2: आज मैं सुनू दादा।
1: ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पोनी लोगराज।
1: राम राम भैया।
0: हाँ राम राम। आगे कौन बोला सर? दादा ना संगस नहीं ना।
1: मैं सुधीर कुमार सारथी बोला था भैया, कुर्मी पारा बेमे तरह ले।
0: हाँ और दादा सांगा ना कसना सर तुम्हें।
1: सब बढ़िया। तो धूप होती है कि नहीं है? बहुत धूप है।
0: हाँ ये बात बोलो सुनिए आए दादा जी क्लिक तो बादरी बादरी कर ली से।
1: हाँ। अब इतनी तो कड़ाके की गर्मी हवा है और घर ले निकले के इच्छे नहीं हुआ है। अब ये सब पेड़ कटा से खा नाम से गर्मी तेज हो गए है। पानी के घरों संकट अब घर आगे है।
0: हाँ उन तो है। अबे पानी चो बोले कि कम होते जाए से रुख रही मन बोले कम होते जाए से उन गर्मी ने बाहर बढ़े से नहीं ना। एबे बरसात शुरू हो देवे तो उदल दाए हम के काहे बूटा मन मंडा तो रहने।
1: एक ठन बात है संगवारी,
0: हाँ हाँ संगवारी।
1: ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगावा है ना।
0: हाँ
1: ट्रैक्टर से का है गर्मी में निजात पाए जाही
0: जी।
1: और पानी के संरक्षण करो का बने रही।
0: हाँ
1: तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाबो तब तो गर्मी है ज्यादा महसूस नहीं हो है।
0: हाँ
1: और अभी भीषण गर्मी है तो गर्मी में अपन सेहत के ख्याल जरूर रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ
1: घर से बाहर निकला था तो अच्छा से मुंह कान ला ढक के निकला है, छाता लेके निकला है, छाता ओढ़ के जावा है आवा है। और खान पान में ज्यादातर मिर्च मसाला वाले खाना नहीं खाना चाहिए। अब से हर हर आधा घंटा एक घंटा में पानी अवश्य पीना चाहिए लोगन मल्ला। और संग में फूल फ्रट है जैसे ककड़ी है, खीरा है, कलिंदर है, आम का जूस है ना, ये पीना चाहिए। और हो सकते ना तो बेल के शरबत घर में बना के पूरा परिवार सहित पीना चाहिए भैया।
0: जी जी जी जी सही बोले संगवारी
1: है ना। तब आपके पोमक आए पानी के जो मात्रा है ना शरीर में बराबर रूप से बने रही तो ओकर से तबियत है नहीं बिगड़े।
0: गर्मी बेरा नहीं हम के काई बोले उठ पटांग निका तो राय ने कहाँ बोल गेलो जाले खिंडिक बिजान बाती पानी ओकरा पी तो राय उठ।
1: हाँ आप का है तबियत बिगड़ते ना तो डॉक्टर दिखाना चाहिए तुरंत।
0: हाँ
1: और घरेलू इलाज घलो खावा है।
0: हाँ
1: हमारे छत्तीसगढ़ में घरेलू इलाज से ही घलो फायदा मिलते बहुत।
0: हाँ हाँ संगवारी संगा जी कौन गीत के सुनते कच फोन लगा ला सस ने।
1: मैं यार सुनना चाहता हूँ और लड़का मन के नाम ले लेते हैं संगवारी। मोर बड़े लड़का हवा कमल कांत सारथी जो PWD में कार्यरत है
0: जी।
1: दो लड़का हवा एक वीरेंद्र कांत सारथी और वृक्ष कांत सारथी।
0: हाँ
1: हाँ और पूरा सारथी परिवार की ओर ले आपके पूरा यूनिट ला आपके पूरा परिवार ला आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत बधाई।
0: हाँ ठीक है संगवारी तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते सफाई मिलो।

0: हेलो पोनिन लोगराज।
1: धन्यवाद राम, जय जोहार।
0: हाँ जय जोहार। कौन बोला सर? दादा आगे ना संगा सही ना। हाँ
1: रेलवे कॉलोनी जंगल पीछे मैं बात कर रहा हूँ दादा, रमेश भारद्वाज।
0: अच्छा रेलवे कॉलोनी ने आए बना आवाज दादा।
1: सब बने बने चले थे दादा, अपन मन का दुआ
0: हाँ
1: भगवान का दया सब चले थे। आज गीत सुना करी दादा,
0: हेलो सांगा कौन गीत के सुन तो काजे फोन लगा ला दादा।
1: गीत का बोल है राशि देव और रोमन के संगवारी गाय है।
0: हाँ
1: गीत के
0: हाँ
1: बोल है ए बाटो जासी आके चुरी दो रा चुरी
0: हाँ
1: घने दे दादा मोके, ये गीत सुना करी दादा।
0: हल ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
1: जय जोहार दादा।
0: जय जोहार।

0: हॅलो, कोण इन लोकरस
1: हेलो फोन इन लोकरस
0: सांगा
1: जुआर
0: ना,
1: ना दादा जुआर
0: जुआर ना कोण बोला सा सागे ना सांगा नाही दादा।
1: अमीर कसे बोले है ना पान में लाले
0: और अमीर दादा सांगा ना कस ना सर तुम्ही।
1: आम्ही तो नगो ता सुना आजकल गर्मी खिनिक ज्यादा बोली है ना। हो
0: आजकल गामची आहे ना।
1: दादा तुम्ही तुम्ही कोण बोलता ना निश्चित आले तुमके।
0: हाँ मैं संपत नाग बोले दादा।
1: हा हा हा संपत दादा खूप दिन ले तुमचे संग
0: हो
1: गोठ होय ना।
0: हाय ना खूप दिन ले। और आजकल काय काय काम बुता चलत दादा।
1: ए आजकल खिनिक सन जोंदरा लगो रहे दादा उनकी टूटा उसे जोंदरा के।
0: हाँ और बिया मन सर ला ना।
1: हा बिया मन बोल सर दी ना।
0: हाँ एदाय तो
1: हा
0: बाजार मन शुरू है सद बे काय नो गांव
1: हा
0: में बाकी।
1: बाजार मन शुरू होय से दाय फिर बेड़ा बूता मन बोल चालू होय देवे।
0: हो बेड़ा मन तो कौन कौन जॉब तो बिता मन जॉब ला से बे।
1: हाँ का है तो चालू कर ला।
0: हाँ कोनी कोनी बाट तो बुन तो बिता उन बुनुक बोल मोरी आला होती।
1: हाँ
0: और अमीर दादा सांगा आजी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सस ना।
1: ए दादा मके गोटो कुन का तो चो गीत की सुना उन दिया ना
0: काचो ना।
1: तुम गुरु चंद्रिका पोयाम चो आए का ले ना हल्दी गीत
0: हाँ
1: तुम चो गोटो उन खेती किसानी बीती गीत आसे ना का गीत जल तोरता नहीं है खेती किसानी
0: हाँ
1: बीती है उन्हें गीत सुना उन दिया ने।
0: हल ठीक है अमीर दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते बेना
1: हाँ जुगार दादा जुगार
0: जुआर ना।

0: हेलो पोनी लोगरास।
1: हेलो।
0: हाँ
1: हाँ
0: पोनी,
1: दादा
0: हाँ जोहर ना, आगे ना संगस नहीं, कौन बोला सर?
1: मैं नवनुरा मर काम भले हाँ माला कोट ले कोंडा
0: हाँ जिला कहाँ, कोंडा गाँव दादा?
1: गांव जिला है दादा।
0: हाँ और दादा संगा ना, आज काय काय काम
1: काय
0: तो चले से?
1: संग दादा बिहार चले थे ना।
0: हाँ बिया वन नी सरला से ने।
1: ओ आज एक ठन आखिरी होली फेरे चालू है
0: हाँ।
1: एक ठन। ओ ना आज पहली बार लगली दादा।
0: अच्छा पहली बार लगा ला सास।
1: ओ
0: हाँ
1: लगाऊ आए जान सबले लगनु है।
0: अच्छा। कौन कौन मेरा है पेता फोन नेते रुआ है नहीं ते बिजी लग
1: ओ
0: ते रुआ है।
1: अचानक लगू दीली था तुम एक
0: चलो
1: ही बार
0: बढ़िया
1: में
0: है।
1: उठाऊ दी
0: हाँ
1: चला गई।
0: नहीं लगा ए दाई लगा ते रुआ था असनी था काय को
1: ओ
0: बे फोन नेते।
1: लगाऊ आए
0: हाँ
1: जान खूब काय तो रिंग करू आए लेकिन बात हो ही नु है।
0: हाँ
1: 15-20 बार लगाऊ आए फिर अस्कट होले जलसा ढूंढे में।
0: लगाते रह लेने कोनी नाल कोनी दिन लगो ची आ जान ना मौका
1: ओ,
0: नहीं जाए, लेकिन लगाते
1: ओ,
0: रहता रहे ने।
1: ओ, ए जोंदरा जोंदरी मन लग राका राकी रहूं उनका।
0: हाँ ये भी कहे जोंदरा लगा ला सस इसे जेट बेरा छे।
1: ओ लगा लूं से तोड़ तो लाए खोली से।
0: हाँ नी टूटा ला सस।
1: ओ बिहाव कर लूं तोड़ तो ऐसे। हाँ
0: हाँ। और सांगा आजी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सस जल ना कुट।
1: ए आया मैं तो दमते स्वरी भी थी।
0: हाँ हाँ
1: ओ
0: अल्ले
1: दादा
0: अल ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो
1: जुआर
0: गीत
1: दादा
0: के
1: जुआर ना
0: सुनाओ सुना दे
1: अच्छा
0: रहे।
1: हरी किलाग लूना लग गई तब।
0: हाँ अदाय लगाते रहो दादा।
1: हाँ हो
0: हाँ हाँ ठीक है।

0: हेलो पोनिन लोगरस।
1: मैं
0: हाँ दादा, कौन बोला सासना आगे ना सांगस नहीं ना।
1: जगदलपुर गीदम रोड जगदलपुर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ,
1: राजू राव।
0: और राजू दादा सांगा आजकल काय काय काम बुता करूँ आसना तुम्ही।
1: हमारा मोबाइल का दुकान है दादा, और कापी पुस्तक का दुकान है दादा।
0: हाँ, ये जगदलपुर नहीं आसे तुम चो।
1: हाँ, जगदलपुर में ही है
0: हाँ, और रेडियो की दौलदा सुनो आज फिर दादा।
1: दादा। मैं तो रेडियो हो गया 20-25 साल से सुन रहा हूँ दादा। 25-30 साल हो गया मेरे को सुनते हुए।
0: हाँ,
1: मैं आकाशवाणी जगदलपुर का बहुत पुराना श्रोता हूँ दादा। आपका नाम दादा?
0: मैं संपत राम नाग बोले दादा।
1: अच्छा, नाग दादा, जोहार दादा।
0: हाँ, जोहार ना। दुकान कसम चलू आज दादा।
1: ठीक है दादा,
0: हाँ
1: जगदलपुर में माई दंतेश्वरी की कृपा से अच्छा ही चलता है दादा। दो
0: हाँ
1: गोप का रोटी मिल जाता है दादा यहाँ पर। यहाँ पर हमारी आराध्य देवी है। मेरा तो जन्म यही हुआ, जगदलपुर में ही हुआ दादा।
0: हाँ
1: और माता की कृपा से, मैं उन्हीं की कृपा से आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ दादा।
0: आय जान दादा। और राजू दादा सांगा आज कौन गीत के सुनो आसना।
1: मेरे को ममता चंद्राकर का गाया हुआ छत्तीसगढ़ी गीत तो सुना दो दादा। कोई
0: अल्टी।
1: अच्छा सा गीत, छत्तीसगढ़ी गीत सुना दो दादा।
0: हाँ अल्टी का है राजू दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: अच्छा दादा, एक बात बताना था।
0: हाँ
1: जैसे अभी गर्मी का सीजन है दादा,
0: जी
1: तो मैं ये कहता हूँ दादा कि मनुष्यों के जो अपना कहीं भी धूप में निकलेंगे अपन, कहीं काम है, कोई इमरजेंसी काम है, तो तभी निकलिएगा। साथ में पानी भी साथ में लेके चलिए दादा।

0: फर्जी वर्दी पहनकर गिरफ्तारी का वारंट दिखाना, पीड़ित को वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर करना और घर से न निकलने की धमकी देना। ऐसे में घबराए नहीं, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती, तुरंत कॉल काट दे और पुलिस की साइबर अपराध हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।
1: श्रोताओं, जानकारी के अभाव में आज बहुत से लोग इस तरह के स्कैम का शिकार हो गए हैं और हो भी रहे हैं, तो ऐसी किसी भी तरह की परिस्थिति में संयम बनाकर रखें और अपने घर के लोगों से बात जरूर करें।

0: रफी और आशा भोसले की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे हैं, फिल्म है मेरे सनम।
1: बिल्कुल, और आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। दीजिए मंजुला
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: दादा दीदी मन कार्यक्रम फोन इन लोगरास जो रिकॉर्डिंग रोज लेकिन बार दिन के 3 बजे ले दरुन 3:30 बजे तक वैसे एता तुम्ही बोले फोन करून तुम चमन कर लो गीत के सुनुक सकास। फोन कर तो काजे आम चो नंबर आए 222-666 और गोटक नंबर आए 222-160। फोन कर तो पहिल जगदलपुर चो STD कोड नंबर आए 077782 लगाऊक नी भूलका। एदाय फोन इन लोगरास ले मकेदिया विदा जुआर।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति थी संपतराम नाग की। संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
3: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
2: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहली मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: अपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: यह आकाशवाणी जगदलपुर है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिक की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण।
5: बेड़ा खड़ा चौगोट थाने गोट निकले से होता पशु जानवर चो काम के तो भूल को नहीं है। गोबर खत बात ले धरन धान मिंडाई तक गाय वाला चो काम हो से मानतर यह मंच सही दखा रखा नहीं कर लो ने कई ठन बीमार से मार बोले हो जाए से उसनी चीज माइमर बीमारी हो सत जे चने पशु जानवर के खूब नुकसान हमरे से तो हुन मंच लक्षण और बचाव के उपाय के आज जानवा। पहला गलघोंटू बीमारी। ये बीमारी ने पशु चो टोडरा फूले से जे चने सर सर चो आवाज निकले से पशु चो पेट वाले फूले से और संगे संगे लव मिल्लो बीती पेट झड़ा वाले हो से। ये बीमारी एक पशु ले दूसर पशु लगे झपके फैले से और ये ले बचातो काजे हर साल 6 मास 72 हमारे तो पूरे टीका लगातार बोले हो से। दूसर बीमारी हो से एक टंगिया जे कि ब्लैक क्वार्टर बल बले सत। ये बीमारी ले पशु चो जांग और करण लगे फूला फूला दिखा दे से जे सोने पशु खुड़ाते रहेंगे से पशु के खूबे जहर धरे से और जुगे होलो ने 12-25 घंटा भीतर पशु मरुन जाए से। ये बीमारी ले बचा तो काजे बले 6 मास 72 ले पूरे ये चो टीका लगाओ पड़े से। फिर गोटक बीमारी हो से खुरा बीमारी। ये बीमारी जानवर चो खुर और मुँह ने बले हो से ये होलो ने पशु चो खुर ने घा हो से जैसे ने खुर निकरुक बल सके असन होलो ने पशु नंगत रेंगुक तो नहीं सके। ये बीमारी मुँह ने होलो ने जामड़ा जीभ होंठ ने घा हो से मुँह ले जुगे लार निकले से पशु खाओ पियो नहीं सके। ये बीमारी ले पशु के बचा तो काजे नवंबर ले दिसंबर महीना ने टीका लगातार हो से। उस रिच महामारी ये बीमारी हो से तो ये बीमारी ले पशु चो जीभ ने काटा काटा हो जाए से लार बल खूब निकले से टोंड ले बास मारे से और पिचकारी असन ऊपर तो बीती दस्त होए से जेचने पशु 4-5 दिन ने मरुन जाए से। ये बीमारी ले पशु के बचातो काजे अक्टूबर ले नवंबर महीना ने टीका लगातार होए से। उस नीचे एंथ्रेक्स नाव से गोटक बीमारी होए से जोन की पशु जानवर के खूब नुकसान हमारा से। ये बीमारी नानी बड़े जम्माए पशु के होए से और जुगे करुन भरसा बेरा होए से। ये बीमारी ले पशु अचानक मरुन जाए से और मरलो पशु चो नाक कान मुँह और शरीर जितने बल्ले छेदा से सबले करिया करिया लहू निकले से। ये लहू ने जो ने कीड़ी मन रह सत तो ये कीड़ी मन दूसरे जानवर मन के बेल फैले सत और ये बीमारी ले बचा तो काजे बरसा ले पूरे टीका लगातार हो से। फिर गोटे जुगे करुन छेरी बोकड़ी होते विद बीमारी है जे नाव है इंट्रोटॉक्सिमिया। ये बीमारी होलो ने माटिया रंग चो दस्त हो से जो झपके नी छांडे। ये जो ने छेरी बोकड़ी खूब कमजोर हो जाए सत और नंगत सही वक्त नी दिलो ने छेरी बोकड़ी मरुन जाए सत तो ये बीमारी बचा तो काजे अक्टूबर नवंबर महीना ने टीका लगाओ पड़े से। उस नीचे कुकड़ी चिमड़ी मन के बोले कई ठन बीमारी झोंटे से तो गोटक बीमारी हो से जेके बोले सत रानी खेत तवर हम छो गाँव करी लोग मन जेके झुमरी बीमारी बोले सत। ये खूब फलते बीत बीमारी आए ये छो ने कुकड़ी झुमुक मुरी आए से पटकी मन के खाले लटकाए से और 15-15 दस्त हो से और कुकड़ी 12-24 घंटा भीतरे मरन जाए से। ये बीमारी ले बचा तो काजे नानी कुकड़ी के रानी खेत F1 स्ट्रेन और बड़े कुकड़ी के रानी खेत रेगुलर से टीका डॉक्टर मंच सांगलो हिसाब ने लगातार हो से। पेड़ गोटक बीमारी हो से फाउल पॉक्स जे के माता महामारी बले बले सत। ये बीमारी होलो ने कुकड़ी चो आँख मुँह और छेंडी ने दाना दाना हो से जे चो ने पूरा मुँह चो भाग ने सूजन है से और कुकड़ी दखुक नी सके टोन ले लार निकले से और चारा दाना खाओक नी सकलो ने कुकड़ी मरुन जाए से। ये चले बचातो काजे फाउल फॉक्स चो टीका लगाओ पड़े से। तो कोनी बल बीमारी होलो ने डॉक्टर कंपाउंडर के सांगुन इलाज तो करतर चाहे मंत्र जुगे नगत हो से कि जानवर की बीमारी ले बचावा। ये चौका जे बीमारी अमर तो पहल पशुपालन विभाग बाटले लगते बीती टीका के लगाव पड़े से। टीका लगुन रहो ने ये फायदा हो से कि बीमारी अमर ले बले पशु और जन कुकड़ी चिमड़ी के ये बीमारी नुकसान नहीं अमराए। मंत्र ये गोट के ध्यान देता रहे कि बीमारी होलो जानवर के हुनी ची बीमारी टीका के नहीं लगाता रहे। असे ने कहा है कि बीमारी जुगे बढ़ुन जाए से जोन जानवर और कुकड़ी चिमड़ी मन बीमार नहीं आत उनके टीका लगाता रहे और असन कर लो ने हम पशु जानवर और कुकड़ी चिमड़ी के बचा सकू और हमके फायदा मिल सके।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामय की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक। तो स्वीकारे मेरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज फिल्म राज के इस गीत के साथ। आवाज है अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है नदीम श्रवण ने और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। छत्रपति सभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनवीत, मनविंदर सिंह पांधा। हिंदराज रेडियो श्रोता संघ खुपटी महाराष्ट्र से आप हैं बंडू लोहार, पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से आप हैं हरिभाव बेडले, श्रवण अनीता बेडवे। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। विडुल महाराष्ट्र उमरखेड़ से आप हैं गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, लक्ष्मी पोपलवाड़, भारत धुले। अंबेडकर चौकी बाकोड़ी से आप हैं उत्तम जमधाड़े, देवशाला जमधाड़े। गौतमनगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापाजी नायक चंद मल्होत्रा आप हैं खेल बाजार पानीपत से। रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का और कुनिका सिक्का। सब्जी मंडी बुलढाणा से आप हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयज अनम। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। वली उल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी, फातमानाज अंसारी और हिना परवीन अंसारी आप हैं पुराना तालाब डुमराव से। जेल रोड बक्सर से आप हैं राज अंसारी, शिल्पीराज और नेहाराज। जेल रोड मधुबनी से आप हैं गुड़िया कुमारी, नरेंद्र डोम, महेंद्र डोम और उमा डोमीन। दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जामनिया जिला गाजीपुर यूपी से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, विपिन जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल आप हैं गम्हरिया जमशेदपुर से। ग्राम वड़गांव डिघी तहसील नादुड़ा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं वासुदेव बोधबड़े, माधुरी बोधबड़े और आकाश कुमार बोधबड़े। गांव जमधड़ा जिला कच्छ भुज से आप हैं गंगा वणकर, प्रीति जूली, गीता महिमा, विशाल, विजय, विराट और समस्त वणकर परिवार। जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना और विपुल कांबड़े। ग्राम छिंदडीही पुजारीपारा जिला कोंडागांव से आप हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। कुलसिटी बरकाकाना से आप हैं अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक। बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तेजवती सिंह, राज सिंह, अदिति सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। चितलवाड़ी अकोला से आप हैं अमोल इंगोले, अर्चना इंगोले, सर्वेश इंगोले, अधीरा इंगोले और राजवी। तुलसीराम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती, ममता, गोमती जिगर, हर्षिता साहू आप हैं महुआ खापर खेड़ा से और नोनेलाल साहू आप हैं तेंदुडावर से। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया। फागेश्वर मांडा भी आप हैं ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव से। अभनपुर धर्मपुरा बस्तर से आप हैं वी पूनम नायडू, वी विनीता नायडू, डी कृष्णा नायडू, कृष्णा राव नायडू, डी सोमशेखर नायडू, डी रोजा देवी नायडू, डी अक्षय नायडू और डी प्रांजल नायडू। सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्क यादव और नौबत यादव आप हैं ग्राम पीपल नीम चौक अमोड़ा केशकाल से। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने, निर्वृत्ति आडोकार और तुषार करांगले। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। जमानिया रेलवे स्टेशन से आप हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: श्री श्रृंगी ऋषि सिहावा पर्वतंचल ग्राम बेलर गांव से आप हैं, मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की रानू, रविंद्र सेन और यहीं से खुशी रौनक सेन। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से आप हैं दरिया नामल, अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से आप हैं हरीश कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला दीदी। पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। राजपूत कृषि फार्म ग्राम मीरतला जिला महोबा यूपी से आप हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेंद्र सिंह, गौरव सिंह, गुरु महाराज, जानवी राजपूत और विनीता सिंह। देवकी विहार कॉलोनी सलारपुर सारनाथ बनारस से आप हैं बाबू यादव, सीमा यादव, अनु यादव, दुर्गेश यादव और अरुणेश यादव। ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर यूपी से आप हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम खगल जिला जालौन यूपी से आप हैं दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और उनके समस्त परिवार। ग्राम जैसेला फलोदी राजस्थान से आप हैं राजा राम जवर, बिश्नोई, नाथु कोडेचा और महिपाल। ग्राम टौरी जिला दतिया से आप हैं सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल केवट, छोटू केवट, खुशी, खुशबू, पायल केवट, रितिक, अमित और आरुषि केवट। गायत्री मोहल्ला पनवाड़ी जिला महोबा यूपी से आप हैं देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्या, मोहिनी, पवन, अनुज गुड्डी और अंकुश पांचाल। शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से आप हैं राजेश खोबड़खेड़े, शिवसागर खोबड़खेड़े और इंदिराबाई खोबड़खेड़े। खांडवी बुलढाणा से आप हैं दीपाली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े। थिलोरी अमरावती से आप हैं सुनैना, पवन, भोंडे। ग्राम फुलझर घटारानी धाम से आप हैं योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू और कोकिला साहू। मुजगहन बालोद से आप हैं चिंताराम साहू, नरबदियाबाई साहू, दिनेश दुलार और उर्वशी साहू। जटपुरा पनवाड़ी महोबा से आप हैं देवीदीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कपिल और पूजा अहिरवार। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, प्रांशु पाल, निवेदिता पाल, ज्योति पाल, मानसी पाल, सुदीपा पाल और सुशीला पाल। आप हैं ग्राम पोस्ट बीरखेरा जिला हमीरपुर यूपी से। रजौनी जिला महोबा से आप हैं उदय भान पाल, दीक्षा पाल, जय हिंद पाल, प्रतीक्षा पाल और विमलेश पाल। शिवकोटी ओमकारेश्वर से आप हैं राकेश पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, ओम सेन और पिंकी सेन। स्नेह रेडियो श्रोता संघ ग्राम मीरतला जिला महोबा यूपी से आप हैं सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, रश्मि, दीपिका, सुषमा, देवांश भास्कर, नंदी किशोर और ब्रिजनंदन। जय सिया माता रेडियो श्रोता संघ ग्राम पवई जिला हमीरपुर यूपी से आप हैं किन्ना बाबू कुशवाहा, बलराम कुशवाहा, रामरतन कुशवाहा, अभिजीत कुशवाहा, बलराम कुशवाहा, रामरतन कुशवाहा, नंदिनी कुशवाहा, अंशिका कुशवाहा, शिवेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र कुशवाहा। जय मां सरस्वती रेडियो श्रोता संघ ग्राम ममना जिला महोबा से आप हैं सोहन सिंह राजपूत, भैया एल के राजपूत, आकाश, सोनम सिंह, प्रियांशी और एस एस राजपूत। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, मिट्टू भैया, साजदारानी और हिना। संत गागड़े नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं अनिता गाठोड़े, रामचंद्र गाठोड़े और लोकेश। ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर यूपी से आप हैं रोहित सिंह यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष यादव, आर्यन यादव और आदर्श यादव। ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख बहाव और नूरजहबानो। बदलापुर मुंबई से आप हैं बंटी गवणकर और सुभाष पोतेवार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, धनेश तिवारी, सावन नायक, आनंद राठौर, गिरिजा राठौर, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बबला यादव, अंकिता जोशी और बेबी वैदेही जोशी। सहारनपुर यूपी से आप हैं राधा नामदेव। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 अपनपुर से आप हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू। लोरमी गोलबाजार खपरी गला छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा और पूर्वी। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव और तेजल यादव। पाकुड़ झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु और रोनिका यादव। उदिता विश्वकर्मा और सुजिता विश्वकर्मा आप हैं देवरिया यूपी से। मदनपुर कवर्धा से आप हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से आप हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। ग्राम फरांसी हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरव डूडी। शंभुदयाल खटक आप हैं गांव जाखोल राजस्थान से। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत। नगमा निगार मजरू और मौसीकार हैं आनंद मिलिंद। तो लीजिए आपकी पसंद, आपकी नज़र करते हैं।

कुमार सानू की आवाज में सुनिए फिल्म आशिकी का गीत। गीत रचना मदन पाल की और तर्ज बनाई है भूषण दुआ ने। अनुरोध आप सबकी। श्री रोकड़ेश्वर नगर जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले सिद्धांत धोंडीबा इंगोले सिद्धांत इंगोले टिंकू इंगोले रमाबाई सुरेंद्र इंगोले मयूरी सुरभी मंजूषा गौतम इंगोले नामदेव राव शिंदे पाटिल मास्टर विलास शिंदे पाटिल सुनील जबड़े अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं दीपाली राजू ठोके पार्वती सखा ठोके रोही सोनू मोनू ठोके झुमरी तलैया से आप हैं झकुली इंगोले देव इंगोले छोटू दादा इंगोले पेंटर रामचंद्र इंगोले और महेंद्र चौरसिया चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा बोड़सरा नैला से आप हैं प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और पियांशु साहू डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभी राधिका गजभी बेबी अनिष्का और तन्मय गजभी जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत शमरीन परवीन मोहम्मद रिफान और माहिरा नूर गोलबाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धा नंद आर्य अभय नंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित और मोहित बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं विनोद मुड़त नेहा जैन दीपक मयंक मुड़त चेतना नाहटा दिलीप सिंह पवार दीक्षा और कुश मुड़त लगन पंडरिया से आप हैं रुक्मणी बघेल उत्तम कुमार साहिल और भारती बघेल चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से आप हैं दुर्गा राम साहू अजय कुमार साहू जय किशन साहू श्रीमती कुमारी साहू इंद्राणी साहू और माया साहू शीतला माता चौक खंडवा से आप हैं कन्हैया मालागार और राधिका मालागार रामगंज खंडवा से आप हैं विजय महोबिया कविता महोबिया विशाल और विवेक महोबिया आजादनगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहम्मद इशहाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ मोहम्मद इमरान इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा आप हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से मेघापारा लोरमी से आप हैं मनोज कुमार साहू कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू सूरजपुर से आप हैं तिजन सिंह मरावी देवानंद देवीलाल मरावी एवं समस्त मरावी परिवार डबरापारा सौगा मगरलोड जिला धमतरी से आप हैं कोमल सेन तोषण कुमार सेन पिंकी और रीना सेन सुराना मोहल्ला बीकानेर से आप हैं नरेंद्र सुराना कांतिलाल सुराना शरद सुराना मयंक सुराना विमल अभाणी लालेंद्र होलेंद्र आचार्य रोनी जैन महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल कुमार धनजे शीला धनजे और गायत्री धनजे खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वेद रानी वेद महिमा वेद नीतू वेद और वैदिक वेद रोहनसी पलारी से आप हैं मुकेश कुमार साहू नंदिनी साहू मनीष साहू और मयंक साहू कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ जिला खरगोन ग्राम गोगावा से आप हैं उस्मान खत्री रिजवान खत्री और अब्दुल गफर खत्री कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गाफर डावर जी अब्दुल हक डावर जिया उल हक डावर अब्दुल रहमान डावर अब्दुल कादर डावर और हमजा डावर गोयलजीन सनावत से आप हैं मोहम्मद सुफियान मोहम्मद हाशिम मोहम्मद इसहाक और तलहा बब्बू डब्बू कासम कॉलोनी सनावत से आप हैं यूनुस खत्री शफी खत्री इदरीश खत्री नूर मीना इरफान मीना और कासिम मीना ग्राम कुमरी लौंडीगुड़ा से आप हैं बसंती पांडे दुधेश पाणीग्रही अवनीश पाणीग्रही चिनौती पाणीग्रही तेजल हिमांश और कमल पाणीग्रही तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। बागबहरा भद्रासी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खड़ से, विनोद खड़ से। गोरबा भिलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कर्ष, कामिनी कर्ष और यश कर्ष। गुमला झारखंड से आप हैं SM जावेद, शगुप्ता अंजुम। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। पोटियाकला दुर्ग से आप हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। शहीद टेकराम चौक हाथबंद करेली से आप हैं भाई रामाधर ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव, संजू कुमार ध्रुव। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवणकर राही, सरिता गवणकर, सिद्धांत गवणकर, प्रिंस एकांश गवणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश गवणकर, वैशाली गवणकर, श्वेता सुमित गवणकर, ध्वनि गवणकर परी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागर कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। हरदेवलाल पारावाड़ सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सनी,

अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। छत्तीसगढ़ धमदा ग्राम सुकरी कला से आप हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि जंघेल और ओशिका जंघेल। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, हेमंत बबलू जैन, गुड्डू तिवारी और उमा तिवारी। सिद्धार्थनगर दरियापुर से आप हैं गजानन एले और नवदीप एले, विश्वदीप एले। ग्राम शेरी वार्डनेर से आप हैं बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक तिरसुनिया, मनोहर निषाद, दिव्यांश धैर्य और आराध्य। ग्राम अमलेश्वर से आप हैं डोमान ठाकुर, सुमान ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। ग्राम दुल्हापुर से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। जम्मू कश्मीर से आप हैं रवि राजदान, एम एस अब्बासी, देवलाल, रोशनलाल, मीरचंद और साहिल डार। पीपरपारा पलचुआ मुंगेली से आप हैं उत्तरा दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेशराम मिस्त्री। एकता कॉलोनी रोहतक से आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और सुभाष टोना। दुर्गा कॉलोनी हंसी से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। पूर्वी चंपारण बिहार से आप हैं आर्यन राज, सुमित राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ग्राम घुटकू से आप हैं नकुल सिंह लोनिया, अंशु, आयुष चौहान, शांति, काजल सिंह राजपूत, पूनम सिंह राजपूत, पुनीत सिंह राजपूत और ओमशंकर लोनिया। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। लालपुर मारो से आप हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निमी पम्मी ध्रुव, सिया और हर्षिता ध्रुव। अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और नवासी देवी गव्या। गांधीनगर गुजरात से आप हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल राठौर और निशा। चावला चौक गांधीधाम से आप हैं रमेश मूलचंदानी और जय मूलचंदानी। आप सभी ने सुनना चाहा है समीर का लिखा गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। शब्द हैं नदीम श्रवण के, फिल्म है कसूर। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म बाजीगर का गीत। स्वर दिया है विनोद राठौर ने, रानी मलिक के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, चाहत आप सबकी। दिल्ली शहर मोरीगेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। भाटापारा से आप हैं दानसी रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमलोला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तफा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। बठिंडा पंजाब से आप हैं जागमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। खेड़ावाड़ी जिला हिंगोली से आप हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा आरवी और बोड़खे परिवार। पुणे से आप हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। डोंडीलोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया, डॉली बेबी और पूजा तामोरिया। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं चरोदा से आप हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी। पटेल नगर मलोट से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीतारानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया। संत कंवर वार्ड भाटापारा से आप हैं राम गुलाब सेन, नूतन कुमार सेन, बेबी पूजा सेन। ग्राम नागरकौका जिला राजनांदगांव से आप हैं जग्गा राम साहू, बबलू, जामुन देवी साहू, राजू दुष्यंत, लल्ला प्रांजल, प्रेम, पूजा, बेबी आराध्य साहू। शनि मंदिर चौक खंडवा से आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी और दीपिका सैनी। सालर पहलगाम कश्मीर से आप हैं पीरजादा महराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन। रानीगांव नगरी से आप हैं अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। भवानी माता वार्ड खंडवा से आप हैं भाई राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन। दतरंगी से आप हैं भवगत वर्मा, लेवाई से गुलाब दास। लचनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन और पुष्पराज सेन। मदनपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस राज। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव से आप हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। बनबघेरा डोंगरगढ़ से आप हैं योगेश शर्मा, आशा शर्मा, नीरज, नीलेश और अंजलि शर्मा। अनुपूर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। दुर्गा चौक रायगढ़ से आप हैं गेंदलाल श्रीवास, लक्ष्मी बरेट, लक्ष्मण वाधवानी, अब्दुल सलीम, संतोष श्रीवास, मनोज यादव और केंदु भाई। पारून विश्रामपुरी से आप हैं प्यारी दास मानीपुरी, खिलेश मानीपुरी, रोहन दास मानीपुरी और नैन्सी मानीपुरी। ग्राम भंडार शिवनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे कहा भारत युवाओं को अवसर रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
3: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।

0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के

0: विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादर, दादर, दादर, दादर, दादर, दादर, दादर, दादर, दादर, दादर,

0: की रोजे रोजे कहीं ना कहीं कला चो गोट गोट गया हूँ ने उन्हीं हिसाब ने दक आजकल तो तू जाने इसकी शादी ब्याह चो समय चले से और आजकल तो दक जोन वाट बले शादी ब्याह होए से नहीं तो गोटो की बड़े बाजा सूतो और दक तो का जो मेरे से डीजे वाले आज
1: और आजकल जो बाबुनों ने मन बल्कि भी मन कर रहा डीजे बाजा
0: और डीजे बाज लिया तो दक का नाचुक जान लो वाले।

0: जो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेनतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
6: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना दुमिद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। एथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 से 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, मीडियम वेव पर यह सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम फिर हाजिर होंगे। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जाने आज के कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 5:05 पर आनंद लीजिएगा समूह स्वर में देशभक्ति गीत का। संध्या 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम यू वाणी। संध्या 6:35 पर सुनिएगा शिवराम नाग और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। संध्या 7 बजे क्षेत्रीय कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आज संध्या 7:20 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम पीलामन का जे गोट रात्रि 8:30 पर प्रस्तुत करता होंगे रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर। रात्रि 9:15 पर भेंट वार्ता कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10 बजे आदिवासी लोकवाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़ में आज हम लेकर आएंगे परदेसीन माता पाड़ एवं फिरंता पाड़। वादक कलाकार होंगे खगपति और साथी। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जाने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 7:10 पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी एवं कल संध्या 6:05 पर कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:20 पर कार्यक्रम प्रकाश किरण कठोपनिषद से आत्म तत्व संबंधी विचार का प्रसारण होगा। प्रस्तुति होगी सुमति भुत्ताकर और गंगानाथ की। श्री रामचरित मानस का गायन होगा प्रातः 6:25 पर। कृषि साम्य की कार्यक्रम बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में कल प्रातः 6:40 पर सुनिएगा सनाह पाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। प्रातः 7:45 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। विभिन्न बोलियों में लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमंजरी कल सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे नए तराने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन इन चाहत सुबह 10:30 पर। प्रस्तुत होगी आशा की एवं संयोजक होंगे चंद्र ऋषि ठाकुर। गुरदुम कार्यक्रम में सुबह 11:30 पर सुनिएगा लोकनाथ वैष्णव और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम रुसरुसा में हम आपके लिए लेकर आएंगे लोकगाथा चंद्रकांत राजा का तीसरा भाग। गायिका होंगी शांति एवं साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। कला और कलाकार कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर। संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।
दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर संध्या 7 बजे। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को यह कल मुबारक। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम विवाणी में। मैं हूं आपका रेडियो साथी प्रशांत दास मणि।
1: और मैं हूं पराग चंदेल। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक बेहद ही प्रेरणादायक और जीवन से जुड़ा विषय लेकर आए हैं, और वो विषय है आत्ममूल्य और सफलता।
0: पराग, आज के समय में हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है। कोई पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है, कोई नौकरी में, तो

0: अपने सपनों को पूरा करना चाहता है।
1: बिल्कुल, लेकिन सफलता की इस दौड़ में एक चीज है प्रशांत जो अक्सर पीछे छूट जाती है, और वो है आत्म मूल्य, यानी स्वयं की पहचान और अपनी अहमियत को समझना।
0: सही कहा तुमने प्राग। बहुत बार लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और धीरे धीरे अपने गुणों को भूल जाते हैं।
1: हाँ, जब व्यक्ति खुद को कम समझने लगता है तब आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है, और बिना आत्मविश्वास का सफलता पाना कठिन हो जाता है।
0: तो क्या हम यह कह सकते हैं कि सफलता की शुरुआत आती है मूल्यों को समझने से, आत्म मूल्यों को समझने से?
1: बिल्कुल, जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है तभी वह बड़े लक्ष्य हासिल करने का साहस जुटा पाता है।
0: आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को पीछे समझने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
1: सही बात है, किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति कम योग्य है।
0: पराग, आत्म मूल्य बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है?
1: मुझे लगता है कि खुद को स्वीकार करना, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होती है, तो जरूरत है कि हम उसे पहचानें और निखारें।
0: और शायद असफलता को भी सही नजरिए से देखना जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि असफलता जीवन का अंत नहीं होता बल्कि सीखने का एक अवसर होता है। कई महान लोगों ने भी कई बार असफल होने के बाद ही सफलता प्राप्त की है।
0: यदि व्यक्ति हर असफलता के बाद खुद को ही दोष देने लगे, तो उसका आत्ममूल्य धीरे धीरे कम होने लगता है।
1: जी हाँ, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों के साथ साथ अपनी खूबियों को भी याद रखें।
0: आजकल सफलता को अक्सर पैसे, प्रसिद्धि, बड़ी उपलब्धियों से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या यह असली सफलता है?
1: नहीं, सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से शांत है, अपने काम से संतुष्ट है और अपने रिश्तों को महत्व देता है, तो वही वास्तविक सफलता है।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने, क्योंकि कई बार लोग बाहरी सफलता को पा लेते हैं लेकिन भीतर से खुश नहीं रहते।
1: और वही आत्म मूल्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वही दूसरों का सम्मान करना भी सीखता है।
0: हमारे समाज में भी बच्चों पर हमेशा सबसे अलग या सबसे आगे निकलने का दबाव डाला जाता है। ऐसे में कई बच्चे अपनी असली पहचान खो देते हैं।
1: सही कहा, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। किसी में कला की प्रतिभा होती है, किसी में खेल की, तो किसी में नेतृत्व की क्षमता होती है।
0: इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी विशेषताओं को समझें।
1: बिल्कुल, जब व्यक्ति खुद को पहचान लेता है तब सफलता उसके लिए केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक संतुलित यात्रा बन जाती है।
0: और शायद यही आत्ममूल्य को सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें परिस्थितियों से लड़ने का साहस देता है।
1: हाँ, आत्ममूल्य हमें ये एहसास दिलाता है कि हम भी महत्वपूर्ण हैं, हमारी सोच और हमारे सपनों की भी कीमत है।
0: तो श्रोताओं, सफलता पाने की सबसे पहले स्वयं को पहचानने और खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि जब व्यक्ति अपने मूल्य को समझ लेता है तब सफलता केवल उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मसंतोष का माध्यम बन जाती है।
0: दोस्तों, ये तो थी आत्ममूल्य और सफलता विषय पर हमारी बातचीत। वैसे दोस्तों, आज के दिन का हमें बेसब्री से इंतजार होता है, क्यों है ना प्राग?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज होता है कार्यक्रम हेलो युवानी का, जहाँ हम करते हैं अपने श्रोताओं से कुछ बातें और सुनते हैं उनके पसंद के गीत।
0: हम तो चलो प्राग, लेते हैं आज का पहला कॉल और जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता।
1: हेलो युवानी, नमस्कार।
2: नमस्कार दीदी,
1: जी नमस्कार, आपका नाम बताइए।
2: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा था दीदी, उर्मी पारा बेमेतरा से।
1: जी सुरेश जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है मैम। गर्मी, अभी भीषण गर्मी पड़ रही है इधर।
1: जी जी जी
2: तो इसका कारण है ना मैम, तो पेड़ों की कटाई हो रही इधर अल्लर से ना, इस नाम से गर्मी और जल संकट घरा गई है मैम।
1: जी जी सुरेश जी, तो इस गर्मी में आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं यही कहना चाहूंगा मैम, जैसे बरसात लगेगा तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
1: जी जी
2: पीपल, बरगद, करण, आम का झाड़ जो है
1: जी,
2: लगाएं,
1: जी जी
2: ताकि आगे वाले आने वाली जो पीढ़ी है
1: जी,
2: वो जल संकट और भीषण गर्मी का सामना न कर सके।
1: जी जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया।
2: और इस गर्मी के मौसम में सेहत का भी तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है मैम।
1: जी जी,
2: ऐसे में खान पान है, खीरा है, ककड़ी है, कलिंदर है, आम का जूस है, ये सब खाना चाहिए ताकि शरीर में पानी का मात्रा बनी जाए।
1: जी जी, मतलब ठंडा चीज ज्यादा हमें इस समय सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। जी जी, सुरेश जी तो बताइए आज कौन से फिल्म का गीत सुनवाए आप?
2: रोटी का पड़ा और मकान का है मैम, लता मंगेशकर की आवाज में।
1: जी।
2: हाय हाय ए मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए तेरी दो टकिया की नौकरी रे, मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी।
1: अरे वाह, बहुत ही सुंदर गुनगुनाया सुरेश जी आपने। चलिए सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आप।

0: हेलो युवानी, नमस्कार
1: नमस्ते
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी। हम सिरवा बांध से दोनों तरफ से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं
0: योगेश जी, कैसे हैं आप
1: जी। बढ़िया है सर।
0: जी? और बताइए, क्या करते हैं आप?
1: अभी गर्मी बहुत है तो घर में ही ज्यादातर आराम करते हैं।
0: गर्मी में क्या क्या करना पसंद करते हैं?
1: अब देखिए ज्यादा घूमने फिरने का तो मन नहीं करता इस
0: जी
1: गर्मी में,
0: जी
1: और बुक्स वगैरह पढ़ने ये सब अच्छा लगता है।
0: जी बुक्स पढ़ते हैं आप?
1: हाँ जी, हिस्टोरिकल चीजें ज्यादा अच्छी लगती।
0: तो आज बताइए, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आप?
1: फिल्म जय हो का कोई भी गीत सुनवा देंगे सलमान खान की मूवी
0: चलिए
1: जी।
0: सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: हेलो योनी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरार से अतौलरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान
1: जी मैडम, और आपसे बातचीत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। और मैं डीसी पीरियड में हूँ और आपका कैंसर में फोन किया हूँ। आज मैं ट्रेनिंग में गया था एक दिन के लिए और कुछ जानकारी मैं ये चाहता हूँ कि अभी गर्मी काफी बढ़ गया है, उमस कई के भी है और क्या बोलते हैं काफी लू हवा है। तो लोगों से आग्रह करूंगा कि इस मौसम में अपना, बच्चों का, अपने परिवार का विशेष ध्यान दें।
0: जी जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया इंद्रभान सिंह जी। अभी गर्मी का जो मौसम है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखना, है ना। के लिए
1: जी
0: हमें
1: जी
0: जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
1: हाँ,
0: जी तो आज बताइए, आज हम आपके लिए कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है जाने तू जाने ना, जाने तू जाने ना, गाय के वो गीत वो है पप्पू के डांस।
0: जी चलिए सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आप।
2: दिस इज द फ्यूचर मैन।

0: हेलो योनी, नमस्कार।
1: हेलो, हम रेलवे कॉलोन से बोल रहे हैं।
0: जी,
1: रमेश भारद्वाज।
0: जी भारद्वाज जी, कैसे हैं आप?
1: सब ठीक ठाक चल रहा है, अपना दुआ है, भगवान का दया है, सब चल रहा है।
0: जी,
1: हमको आज एक गीत सुनना है।
0: जी बताइए।
1: गीत है फिल्म है राम और श्याम।
0: जी,
1: ये तो बोल है, आज की रात मेरी दिल की सलामी ले ले।
0: जी चलिए सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपको।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: हेलो यानी, नमस्कार।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरविला सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: जी तोमर जी, कैसे हैं
2: आप? आपकी दुआ इसी कृपा से बहुत अच्छी तरह से।
1: जी और बताइए, क्या करते हैं आप?
2: इस समय तो खेती का काम, केवल मूंग बोई हुई, उसमें रात को पानी देने जाना पड़ता और कोई काम नहीं चल रहा है।
1: जी जी, तो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो पानी की पर्याप्त सुविधा है?
2: हाँ, निजी नलकूप है, उनसे पानी दिया जाता है।
1: जी जी, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं?
2: इसके अलावा रेडियो में रुचि है, कई केंद्रों से जुड़ा हूँ, सहभागिता करता हूँ।
1: जी जी, हमारे केंद्र के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
2: सबसे अच्छा लगता है श्रोता सुमन लगता है, वो सुनते हैं।
1: जी
2: ये हेलो वाणी, हेलो चाहत सुनते हैं।
1: जी तो आज बताइए, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
2: फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।
1: जी और गीत?
2: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार।
1: जी चलिए सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आप।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: नमस्कार।
3: हेलो गौरी
2: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
3: मैं मेघनाथ नाग बोल रहा हूँ, माकड़ी वाला से।
2: मेघनाथ जी, कैसे हैं आप?
3: जी मैं तो ठीक हूँ
2: जी। और बताइए, क्या करते हैं आप?
3: मैं तो ड्राइवर हूँ
2: जी। और हमारे केंद्र के प्रोग्राम सुनते हैं आप?
3: मैं तो डेली सुनते रहता हूँ आपके प्रोग्राम जगदलपुर के।
2: जी कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम तो आपको?
3: अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है
2: जी। तो और बताइए, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाया आप?
3: तो वाला सुना राजा हिंदुस्तानी का।
2: कौन सा गीत?
3: आए हो मेरे जिंदगी में। और
2: जी चलिए सुनवाते फिर ये खूबसूरत सा गीत आप।

0: हेलो इवाड़ी, नमस्कार
1: हेलो इवानी
0: जी। आज सर आपका नाम क्या है?
1: रुपधर कोरम सतो सा तुपारा गौरवार।
0: ओके सर, बहुत प्यारा नाम है सर। सर आप अभी क्या कर रहे होंगे?
1: अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केतो का जोताई कर रहे हैं सर।
0: सर आपके पसंद का गीत कौन सा है सर?
1: दिल वाले का सुना दीजिए सर।
0: दिल वाले का गीत कौन सा
1: और
0: सुना?
1: कोई सा भी
0: तो लीजिए, सुनते हैं आपका प्यारा सा गीत।

0: हेलो युवानी, नमस्कार
1: हेलो
0: जी, किनसे बात हो रही है?
1: मैं जितम रो जगदलपुर से टी राजू राव बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। राव जी, कैसे हैं आप?
1: जी ठीक हूँ मैडम जी।
0: जी और बताइए, क्या करते हैं आप?
1: बस मेरा तो बुक स्टॉल है मैडम जी।
0: जी बुक स्टॉल है
1: जी जी जी, काफी पुस्तक बेचते हैं मैडम जी।
0: जी मतलब आपको किताबों से प्रेम है?
1: हाँ मैडम जी, किताबों से तो शुरू से प्रेम है मैडम जी। मैं
0: जी जी, तो आप किताबें पढ़ते हैं?
1: हाँ करता हूँ ना मैडम जी।
0: जी जी, तो आज बताइए राव जी, आज हम आपको कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं?
1: आर आर आर का जो गीत है
0: जी
1: नाच नाच वाला गीत, उसको सुना दीजिए मैडम
0: जी। बहुत ही सुंदर गीत सुना है आपने राव जी।
1: जी
0: जी, इस गीत को आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ मेरा फ्रेंड है मैडम जी, हैदराबाद में रहता है।
0: जी जी,
1: मैं उसी को ये गीत डेडिकेट करना चाहता हूँ मैडम जी।
0: जी क्या बात है, मतलब दोस्ती के नाम ये गीत।
1: जी मैडम जी,
0: जी चलिए सुनवाते हैं फिर आपको ये खूबसूरत सा गीत।

गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो रानी, नमस्कार।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार। किन से बात हो रही है हमारी?
3: बिना दरवेश
2: जी, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ मैम।
2: तो आज बताइए, आज कौन से गीत सुनवाए?
3: अनाड़ी में कोई सा सुनवा दीजिए मैम, कुमार सानू की आवाज़ में।
2: चलिए सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत आप।

0: दोस्तों, कॉल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
1: साथियों, हेलो युवानी की रिकॉर्डिंग हम प्रत्येक गुरुवार को 3:30 से 4 बजे तक करते हैं। आप हमसे बात करने के लिए हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर है 222-666 यानी 222-666। साथ ही हमारा दूसरा नंबर है 222-160 यानी 222-160। दोस्तों, इन नंबरों के आगे जगदलपुर का STD कोड 07782 लगाना न भूलें।
0: दोस्तों, आज की वाणी कार्यक्रम में बस इतना ही।
1: कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात किसी नए कंपेयर साथी के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। मैं पराग चंदेल
0: और मैं प्रशांत दास मणिकपुरी,
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं हिंदी में समाचार। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास

0: यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला बांटी नियुक्ति पत्र। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घो फिर बाढ़ गए है। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हुए है। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले आने आने सरकारी विभाग और संगठन मन में चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला नियुक्ति पत्र बांटिन। ये मौका में श्री मोदी कहिन कि सरकारी नौकरी नागरिक मन के जीवन ला बेहतर और आसान बनाए के महत्वपूर्ण माध्यम हरय। प्रधानमंत्री कहिन कि देश अपन कर्मयोगी मन ऊपर भरोसा जताये है और अब ये उखर जिम्मेदारी हरय कि ओमन अपन लगन आचरण और रोजमर्रा के काम ले वो भरोसा के मान रखें और ओला और मजबूत करें। श्री मोदी कहिन कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा के हिस्सा बने बर उत्सुक है। प्रधानमंत्री कहिन कि हर भारतीय देश ला विकसित भारत बनाए के संकल्प के संग काम करत है। श्री मोदी नव नियुक्त कर्मचारी मल्ला आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करे बर प्रोत्साहित घलो करें। रोजगार मेला आज देश में 47 अलग अलग जगह मनमा आयोजित

0: कदेगिस रायपुर में यह आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में करेगिस। कार्यक्रम में केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा के उपस्थिति में 257 युवा मल्ला नियुक्ति पत्र सौंपेगिस। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्पना ला धरातल में उतारे बर केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय डहर ले नवा रायपुर में पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्य मन के क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करेगीस। एमा छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी मन शामिल हुईन। कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी करें। कार्यशाला में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के पहल में संचालित योजना मन के प्रगति के समीक्षा करेगीस। विशेषज्ञ मन बतायन कि पैक्स समिति मल्ला केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं रख के बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करे जाते। एकर तहत खाद वितरण, खाद बीज वितरण, धान खरीदी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डेयरी, मत्स्य पालन, वेयर हाउसिंग और ग्रामीण उद्यमिता जैसे गतिविधि मल्ला बढ़ावा दे जाते। एकर ले किसान और ग्रामीण मल्ला गांव स्तर में ही बेहतर सुविधा और रोजगार के अवसर मिली। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घो फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हुए है। रायपुर में अब पेट्रोल 105.36 रूपया और डीजल 98.47 रूपया प्रति लीटर मिलत है। पाछू 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी तीसरैया घाव हुए है। इस बीच राज्य शासन हा काली जारी आदेश में सबो पेट्रोल डीजल पंप मन में ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन के बिक्री ऊपर तत्काल रोक लगा दे है। हालांकि रबी खरीफ सीजन पर किसान कलेक्टर मंडहरले चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्य और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसे अत्यावश्यक सेवा मल्ला ये प्रतिबंध में छूट दे गए है। एकर बर अनुविभागीय अधिकारी परीक्षण के बाद सुरक्षा मानक मन के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। प्रदेश के आने आने जिला में डायल 112 के जगह अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराए जाते। यही कड़ी में आज मुंगेली जिला में घलो ये सुविधा शुरू हो गए है। जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और दूसर वरिष्ठ अधिकारी मनहा हरी झंडी दिखा के ये वैन ला रवाना करें। ये कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअली शामिल हुईन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण कर इला आम जनता ला सौंपीन। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र डिले कर ही। ये बखत के अंक में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बाकी समाचार को। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाही। ये परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली बिहनिया 9:30 ले 11:30 तक और दूसरिया पाली बंझनिया 2:30 ले 4:30 तक होगी। दोनों पाली में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहली परीक्षा केन्द्र के दरवाजा बंद कर दे जाही। ये बखत परीक्षार्थी मल्ला फेस स्कैन सिस्टम ले गुजरना होगी। चेहरा मैच होने के बाद ही उमल्ला परीक्षा केन्द्र के अंदर जाए के अनुमति दे जाही। ये परीक्षा पर रायपुर जिला में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा ला लेके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करे गए है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह परीक्षा केंद्र ले 5 मीटर के दायरा में ध्वनि प्रदूषण और कोनो भी प्रकार के अव्यवस्था ला रोके के निर्देश दे हैं। आकाशवाणी के 90 पूरा होए के मौका में आज अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र में वॉकथन के आयोजन करेगीस, जेमा आकाशवाणी परिवार के सदस्य मन के संगे संग जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आने आने सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मन शामिल हुईन। वॉकथन आज बिहनिया आकाशवाणी केंद्र

0: रिले शुरू होके आने आने रद्दा ले होवात लहुटत आकाशवाणी केन्द्र मा सिरईस। ये मौका मा लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंझा कहिन की रेडियो आज भी समाज के हरेक वर्ग तक पहुंचने वाला प्रभावी माध्यम हरे। कार्यक्रम के आखिरी मा आकाशवाणी केन्द्र अंबिकापुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम परमेन्द्र कुमार हके अपन संबोधन मा आकाशवाणी के 90 बच्छर के ऐतिहासिक और अनवरत यात्रा ला सुरता करीन। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केन्द्र रायपुर डहाले राजधानी में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करेंगे। दू सत्र में होए ये कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान हा सुगम संगीत पेश करें। उन्हें श्वेता शिवाले डहाले उप शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देगी। दोनों ही गायन मन अपन मनमोहक प्रस्तुति ले दर्शक मल्ला मंत्र मुग्ध कर दिन। ये अवसर में बड़ संख्या में संगीत प्रेमी मन उपस्थित रहें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित करेंगे है। एक बर एक ले 18 आयु वर्ग के लेका मन आवेदन कर सकत है। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम ले ऑनलाइन स्वीकार करे जाहे। छत्तीसगढ़ शासन हा प्रदेश के प्रतिभाशाली लेका मल्ला ज्यादा ले ज्यादा संख्या में आवेदन करे के अपील करे है। दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा बल आज बारसूर थाना क्षेत्र में माओवादी मंडहार ले लुका के रखे 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद करीन जिला मौका में ही निष्क्रिय कर देगे है। मिले जानकारी के अनुसार जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बल की टीम हिड़पाल गांव के पहाड़ी और घना जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकले रहीन। इस दौरान ये आईईडी बरामद करेगी। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में ए बखत भारी गर्मी पड़त है जेखर ले जनजीवन प्रभावित होवत है। मौसम विभाग अवैया 48 घंटा के दौरान रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव महासमुंद समेत प्रदेश के 18 जिला मन में एक दो जगह में लू चले की संभावना जताये है। ये दौरान गर्म हवा चले और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे की संभावना है। इस बीच विशेषज्ञ मन लू ले बाचे पर सावधानी बरते की अपील करे है। विशेषज्ञ मन पानी और तरल पदार्थ के सेवन करें, हल्का रंग के सूती कपड़ा पहने और पूरा शरीर ढक के राखे की सलाह दे हैं। संगे संग बिना कारण बाहर झन जाए के अपील घरों करे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौका में बिलासपुर जिला के कोपरा रिजर्वायर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन ल लेके जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला बांटी नियुक्ति पत्र। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घोफेर बढ़ गए है। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हो गए है। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाहे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 1,00,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटम राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल 20 प्रतिविंशति क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्य नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे सप्तचत्वारिंशत् विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्णदेशात् चयनिताः एते नूतनकर्मचारिणः रेलमन्त्रालये, गृहमन्त्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये, उच्चशिक्षाविभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् प्रशासनिकनियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीयकर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वम् अस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् संपूर्ण विश्व भारतस्य विकास यात्रायां सम्मिलितं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीय विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमंत्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमपर्यन्तं भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढसंकल्पेन कार्यं करोति।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नवनियुक्तान प्रधानाधिकारिणः आईजीओटी इति कर्मयोगी मंचस्य सम्यक लाभं ग्रहीतुं प्रोत्साहितवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन ते स्वकर्तव्यानि सरलतया अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। श्रीमोदी विश्वासः प्रकटितवान् यत् एते नवनियुक्ताः पदाधिकारिणः राष्ट्रस्य प्रगतौ योगदानं दास्यन्ति तथा च तेषां कार्याणि निर्णयाश्च विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं साकारयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। राजस्थानस्य जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर चेत्यादिषु नगरेषु आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र एकादशशतधिकेभ्यः युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः राज्यस्तरीय आजीविका मेलके सहभागित्वं कृतवान्। जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे श्रीवैष्णवः सभां सम्बोधयन् अवदत् यत् रेलविभागे षष्टिसहस्राधिकैकलक्षपदेषु नियुक्तिप्रक्रिया प्रचलति, यस्मिन् चत्वारि कोट्यधिकाः अभ्यर्थिनः सहभागं कुर्वन्ति। पंजाबराज्यस्य अद्य कपूरथला पटियाला चेत्येतयोः द्वयोः स्थलेषु ऊनविंशतितमं आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र एकाशीत्यधिकद्विशत नवलाभार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। कपूरथला स्थिते आरसीएफ संस्थाने केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्य इंधन मंत्री हरदीप पुरी कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन् उक्तवान् यत् आजीविका मेलकम् एकं सुदृढं राष्ट्रीय संस्थानरूपेण परिवर्तितम् अस्ति, यत् पारदर्शितां तथा योग्यता आधारितां समयबद्धतां नियुक्तिं सुनिश्चितं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य उद्घोषितवान् यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। शिक्षा विभागस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशने मुख्यमन्त्रिणा अधिकारिणः निर्दिष्टः यत् प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं 20,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः सुनिश्चिता भवेत्। सः अवदत् यत् नियुक्तिप्रक्रियां सुगमां कर्तुं शिक्षकनियुक्तेः अधिसूचना इदानीं प्रतिवर्षं जुलाई मासे एव प्रसारयिष्यते। अवधेयं यत् शिक्षामन्त्री मिथिलेश तिवारी अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः अनया घोषणया शिक्षकनियुक्तिपरीक्षायाः चतुर्थचरणं प्रति अनिश्चिततायाः स्थितिः समाप्ता अभवत्। सः सूचितवान् यत् शिक्षाविभागः शीघ्रमेव रिक्तानां शिक्षकपदानां मूल्याङ्कनं विधाय अग्रे नियुक्त्यर्थं नूतनं याचनापत्रं प्रेषयिष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। पूर्वम् एषा तिथिः अद्य यावत् आसीत्। CBSE इत्यनेन उक्तं यत् गतदिनेभ्यः जालपुटे अभूतपूर्व परिचालनभारस्य तथा अनधिकृत हस्तक्षेपस्य अनेकप्रयत्नानां कारणेन जालपुटस्य कार्ये व्यवधानम् उत्पन्नम्। अतः एषः निर्णयः स्वीकृतः। CBSE इत्यनेन सूचितं यत् छात्राः स्वस्य उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्य अंकानां सत्यापनस्य अथवा पुनर्मूल्याङ्कनस्य अग्रिमचरणाय आवेदनं कर्तुं द्विदिनात्मकं समयं प्राप्स्यन्ति। सहैव अभ्यर्थिनः विस्तारितसमयसीमायाः सम्यक् उपयोगं कृत्वा प्रक्रियां सम्पूर्णां कुर्वन्तु इति। अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो अद्य प्रातः चतुर्दिवसात्मके भारतयात्राप्रसङ्गे कोलकातानगरं सम्प्राप्तवान्। द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं सहैव वाणिज्य रक्षा ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी हिन्द प्रशान्त व्यूहरचना इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य विस्तारार्थम् एषा तस्य प्रथमा भारतयात्रा अत्यन्तं महत्वपूर्णा वर्तते। भारते नियुक्तः अमेरिकी राजदूतः सर्जियो गोरः कोलकाता विमानपत्तने रूबियो महोदयस्य स्वागतं कृतवान्। विमानपत्तनात् आगमानन्तरं सः सद्य एव कोलकातानगरस्थं सेण्ट् टेरेसायाः मिशनरीज आफ् चेरिटी इत्यस्य मुख्यकार्यालयं मदर हाउस तथा बाल आश्रम च दृष्टवान्। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुन्दीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रियस्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। संघटनस्य महानिदेशक ट्रेडोस अधानोम घेब्रेसस अवदत् यत् अस्य संक्रमणस्य संकटं सम्प्रति राष्ट्रियस्तरे अतीवाधिकं क्षेत्रीयस्तरे अधिकं वैश्विकस्तरे च न्यूनम् इति मूल्याङ्कितम् अस्ति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् अधुना यावत् द्वयशीति प्रकरणेषु 7 जनाः मृताः, परन्तु वास्तविक प्रकोपः एतस्मात् बृहत्तरः भवितुं शक्नोति, यतः प्रायः 50,000+ सन्दिग्धप्रकरणानि 77,100 सन्दिग्धमृत्यवः च पञ्जीकृताः सन्ति। IPL 20-20 क्रिकेट क्रीडास्पर्धायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायण्ट्स पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धेयं 7:30 समारप्स्यते इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। सुनो ना।
4: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी।

0: सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है शिवराम नाग और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

थे शिवराम नाग और साथियों के स्वर में बत्री नाट गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों

0: रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 257 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई। और प्रदेश में आज सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान 18 जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चुने हुए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
5: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। रोजगार मेला आज देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। रायपुर में ये आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि आज 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि ये केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि भारत को विकसित बनाने की एक जिम्मेदारी है।
6: देश में लगभग 51,000 युवाओं को शासकीय नौकरियों में आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में 257 कैंडिडेट्स को फिजिकली तथा कुल 803 कैंडिडेट्स को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें रेलवे के 200, डाक विभाग के 54, वित्त विभाग के 11, स्वास्थ्य विभाग के 7 एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 कैंडिडेट्स को इस मंच से स्वीकृति पत्रक दिए गए हैं।
4: इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा नवा रायपुर में पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी ने की। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि पैक्स समितियों को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 96 पैसे महंगा हुआ है। रायपुर में अब पेट्रोल 105 रूपए 36 पैसे और डीजल 98 रूपए 47 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इस बीच राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और

0: हरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई जा रही है। आज विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इन मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कड़ी में मुंगेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया। साथ ही 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने शंकरनगर खमाड़ी कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा कल 24 मई को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 तक होगी। दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र का द्वार बंद कर दिया जाएगा। इस बार परीक्षार्थियों को फेस स्कैन सिस्टम से गुजरना होगा। चेहरा मैच होने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी परिवार के सदस्यों के साथ ही जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वॉकथन आज सुबह आकाशवाणी केंद्र से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस आकाशवाणी केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि रेडियो आज भी समाज के हर वर्ग तक पहुंच रखने वाला प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम प्रमेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में आकाशवाणी की 90 वर्षों की ऐतिहासिक और अनवरत यात्रा का स्मरण किया।
1: आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने एक वॉकाथन का आयोजन किया था और इसमें हमारे सभी साथियों ने, सभी श्रोताओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये 90 वर्ष की जो यात्रा है, ये आकाशवाणी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत के साहित्य को, लोक कला को, लोक साहित्य को सहेजने और संवारने का काम किया है।
0: वहीं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा राजधानी में कल स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया गया। दो सत्रों में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान ने सुगम संगीत पेश किया। वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। दोनों ही गायकों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। रायपुर के आकाशवाणी केंद्र द्वारा स्वरोत्सव के इस संगीतमय आयोजन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने अपने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से लेकर प्रमुख अभियंता तक सभी को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज बारसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी को बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों की टीम हिड़पाल गांव की पहाड़ी और घने जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान ये आईईडी बरामद किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में 1-2 स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। इस दौरान गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजनांदगांव आज सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग में 45 डिग्री सेल्सियस और रायपुर, माना तथा बिलासपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया।

गया। इस बीच विशेषज्ञों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के कोपरा रिजर्वायर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले में 29 दिन पहले हुए करही गोलीकांड के सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्तौल बरामद की है। और बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 257 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई। और प्रदेश में आज सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान 18 जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम टेंगा दादा, राम राम।
1: राम राम ना झिटकू, राम राम
0: अमर लिसने
1: दख समय होलन तो अमरुक लागे से
0: हाँ।
1: ने
0: आय का सत्य गोटा आले हम भेट घाट तो हलू ने कार्यक्रम सुन तो बीता दादा दीदी मन भेट घाट हूँ एचुए संगे बस्तर किशोर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गाँव कारी दादा दीदी बुड़ू बढ़ाए संग जोहरिया संगवारी के मैं झिटकू
1: और मैं डेंगा
0: हम ही दोनों करूँ से
1: राम
0: राम।
1: मंत्र पीला मन के तो भूल कुक नहीं होए
0: नहीं होए
1: तो पीला मन के हम चो दोनों चो बटले खुबे खुबे माया। और झिटकू
0: हाँ डेंगा दादा
1: तू तो जानी इसकी जसन दख हमी बस्तर ने रहूं से ने
0: हाँ।
1: और बस्तर ने दख जंगल झाड़ी रान वन ने
0: हाँ।
1: और ये पानी कांजी सपाए खूबे प्राप्त मात्रा ने मेरे से
0: हाँ। राशि था लोग बाग देश विदेश ले देखो कैसा था हम चो बस्तर चो प्राकृतिक सौंदर्य बल्लो ने ने
1: हाँ। और दख का है कि बस्तर चो जोन कला है
0: हाँ।
1: ये वाले खिंडिक दूसर ठान ले अलग हो ऐसे
0: हाँ,
1: नहीं
0: अलग हो
1: और बस्तर चो काया कि अपना अलग एक ठन पहचान बले
0: हाँ,
1: ऐसे
0: अपन चुनाव बना ली से
1: नहीं
0: हाँ।
1: बल्ले बस्तर ने रतो लोग जो ना है बस्तर चो संस्कृति खान पान रहन सहन है नी पींदा
0: हाँ,
1: ओड़ा
0: हाँ,
1: बोल चाल सपाए खिंडिक दूसर ठान ले खिंडिक अलगे चाय
0: हाँ अलगे चाहे
1: नहीं
0: हाँ। हुनिका जी हम चो बस्तर देश दुनिया ने अलग पहचान छान ली साबन
1: हाँ
0: चो
1: और यही जो अलग हिसाब आए एचो ले हम चो पहचान बले बने से
0: बने से
1: और दक का है कि हम जो बस्तर संभाग आए ये का है कि जनजातीय क्षेत्र हो तो कारण
0: हाँ
1: नहीं
0: हाँ
1: ये था जो लोग खूबे सरल सीधा सादा और खूबे सुंदर लोग आते
0: खूबे सुंदर लोग आत
1: नहीं
0: और हम चो जनजाति वर्ग ने बल्ले के अलग अलग जनजाति छ जहन माड़िया मुरिया धुरवी
1: हाँ
0: कई प्रकार चो जनजाति आसे ने
1: हाँ
0: और हुनमन चो जसन जनजाति आसे उसन हुनमन चो कला संस्कृति
1: कला
0: वाला से
1: संस्कृति बला
0: हाँ।
1: से
0: हुनमन चो पिंदा ओड़ा बले अलग आसे हुनमन चो गीत संगीत बल कुछ कुछ अलग हो से हुन चो
1: हाँ। और यही संस्कृति का आया है दक हम जो बस्तर के गोटो सुंदर क्षेत्र बनाए से
0: हाँ
1: नहीं
0: हाँ अलग
1: और यही सुंदर चीज के दक तो कचे लोग दुरिया दुरिया ले ऐसे
0: दुरिया दुरिया ले ऐसा था आय का
1: मंत्र दक एथान ने जोन रसोत लोग मन ये मन चो बले कर्तव्य आए
0: हाँ
1: कि हम चो जोन बले पुराना संस्कृति आए ने
0: हाँ
1: नहाले कला आए एक ही हमके बचाऊन और सहजून संगातो राय
0: संगातो राय एक गोट सत्य बोल देंगे दादा कहे कि हम चो एक जिम्मेदारी वाल बने से तेबे तो ये तो भी तीन पीढ़ी जाने दे कि हम चो कला संस्कृति हम चो चीना बना काय रहे बोल
1: काय
0: बाजू
1: रहे और ये भी हम ही ध्यान नहीं दे लू ने तो ये काया कि धीरे धीरे हंसते जाए दे
0: हाँ हंसते
1: और
0: जाए दे
1: हंसते गेलो ने काया है कि हम चो ये तो पीढ़ी के तो ये चो बारे ने जानकारी नहीं मिले दे
0: हाँ जानकारी नहीं मेरे दे उन्हीं का झाम के कला संस्कृति ने जुड़ू नहीं रहता और एक पारंपरिक कला संस्कृति है आजकल तो नवाचार हो से बहुत कुछ बल्लों ने नवा नवा कलाकृति बल हो से
1: हाँ नुआ नुआ हिसाब ने
0: हाँ
1: अलग अलग वार्ड चो बनाए सोच बोले
0: बनाए सो जैसन कि आजकल ये बस्तर ने कोंडा गांव जिला ने एक जन असन मूर्तिकार आसे
1: हाँ
0: जे
1: हाँ
0: असन दिया चो आविष्कार कर लो से जे ने तेल लगोन भातिन एक असन आकृति बना लो सुपर घुम्मत चो आकार ने
1: हाँ
0: दिया
1: हाँ
0: ने तेल सरते जलेक नहीं हुन आप लो आप ऊपर ले तेल गिरे से
1: हाँ
0: हामी जान
1: गजरे
0: की
1: से
0: हाँ
1: नहीं
0: घसरे से और हामी जान की नानी दिया में तेल डालन भातिन जरूर ले कुछ दाय तक जलवाए ने
1: हाँ हाँ
0: पासे
1: हाँ
0: बुझन जवाए तो हुन असन आविष्कार कर लो से कि हुन तेल सरते जे लेकिन ऊपर ले आपने घसरते जीवाए
1: हाँ
0: असन
1: और दक ये तो खूबे नगद गोट के सांग लीज
0: हाँ
1: मानतर हुनी हिसाब ने दक हम जो बस्तर चो जो बांस कला है
0: हाँ
1: ने
0: हाँ
1: हस्तशिल्प कला है
0: हस्तशिल्प कला
1: घड़वा शिल्प कला है
0: हाँ
1: नाले मूर्ति कला है
0: हाँ
1: ने
0: डोकरा कला बोलो
1: हाँ
0: हाँ
1: लोह शिल्प कला बले आए
0: हाँ हाँ
1: तो ये सपाए जो कला है
0: हाँ
1: ये हम जो बस्तर के गोटो का अलग पहचान दे इसे
0: अलग पहचान दे इसे
1: और ये हम चो का जो गर्व चो गोटा है
0: गोट है हाँ
1: ने
0: हाँ
1: कि हम ही बस्तर ने रहूं से
0: हाँ
1: ने ये तो होली गोट बात
0: हाँ
1: मंत्र हम चो लगे और बल गोट बात रुआ है
0: हाँ
1: आले एक बल हम रहूं दो
0: आले हम रहूं दे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सीट तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सीट तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया ना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मौला देने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
6: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव निहोली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असल ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
1: और ये कहानी का रात श्री नक्स आए जैनु सलाम तो हम भले कहानी सुनो वाले
0: आले सुनो
7: पिटो पिटले हो
8: गो
7: रंटार तो कोले आमंदुंगले
8: इंगो
7: हुंतो निराले
8: इंगो
7: निरालन कोले आल वाले हतुंगले
8: इंगो
7: अनीन तो वाले निकड़ा कोले आल मलपैतले
8: इंगो
7: इता कोले आल तो टीराल पैतले
8: इंगो
7: अनीन तो अदेन तिंदलाय बिचार की तुंगले
8: इंगो
7: अचोन तद पर नियमल मल्लाय में नायार नाव टीरी री तेरा गागिरिंग नी बार डालंग हविंग इतले कोलियाल नीरादून
8: इंगो
7: नीरादून पसाह की इतले
8: इंगो
7: अचोन तो अद पर अले से पलटंग के वीट इतले
8: इंगो
7: अचोन तो पलटा की तुंगले
8: इंगो
7: कोलियाल तो मधुन दौड़गी दौड़गी तिंदले
8: इंगो
7: निराल तो गोचने

अचो तो गढ़ हवा भी तितले कोलियाल अचो तो पैर पूर्ण पैर अदन परकंदले नीराल अचो तो पैर सा परकने पैर सा बगा तो कल इतले अचो तो जेक तो कल तो ना तिंदा का इतले अचन तिन्नीन पार तिंदक नीरा मत जेक पोसला इतले चारो चारो इंदले मत कतुन करसंदले कोलियाल अगान तो नीरा लवेहतले इजक तिंदका इजक बगा वित्कीतले अचोन तगन पर पोसला जेक नाकुन दादिन पीड़ितं कुड़ां कहीं तो ना इतले अचोन तो अले नन्ना वका चूड़ का से इतले अचोन तो बट बट हुड़ा जुके कुवा इतले अचोन तो अद कहंदले बट बट हुड़ ले ले तानांकोंडा निगंदोड़ को लोसकतले अचोन तो अगड़ाए वाद ईता उमिस ने कायले चोड़ कोलियाल भी तितले अचो डे पेर

0: ने
1: हाँ
0: और द काय सुंदर कहनी सांगते रहो
1: हाँ
0: मात्र मैं बोलते रहे कहनी संग संग गोटो गीत होलो ने खूबे नंगत रहती
1: खूबे
0: बोलते रहे
1: नंगत लागती।
0: आले तभी ममता चंद्राकर और
1: हाँ
0: मंचो संगवारी मंचो गालू गीत के सुनते भी।
1: हाँ ले सुनो।

0: हाँ,
1: हाँ
0: गोविली
1: ढेंगाना
0: दक गीत ने
1: ना।
0: मंत्र तक ज्ञान ध्यान संगे गीत गोविंद बल होली मंत्र
1: हाँ
0: समय होली हम चो जातो
1: हाँ घड़ी दगलक समय बल होन जे लिया
0: नहीं
1: हम से।
0: तो
1: हाँ
0: आले विदा मांगू फिर।
1: हाँ बस्तर किशोर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांवकारी दादा दीदी बूढ़ू बढ़ाए संग जोरिया संगवारी के जातो पूरे मैं झिटकू
0: और मैं डेंगा
1: हामी दोनों करूं से
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जुहार ना झिटकू भाई, जुहार
1: जुहार डेंगा दादा, जुहार
0: द कमर लिसने
1: हाँ अमर ले
0: और किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो जम्मा है किसान दादा दीदी मन के। मैं डेंगा
1: और मैं झिटकू,
0: हम दोनों करूं से
1: जुहार।
0: और झिटकू भाई
1: हाँ डेंगा दादा,
0: द काया है कि किसान वाणी कार्यक्रम भीतरे तो हमी दादा दीदी मन का जिका है नुआ नुआ ज्ञान ध्यान चो गोट नहाले वाट
1: हाँ
0: आंते चरुआ
1: आंते चरुआ हाँ।
0: और तू तो जानिस की दक के बे काया है कि घाम बले खूबे होए से और चमास अमरू आए बे
1: हाँ।
0: और हम चो खेती कमानी चो काम मूर होतोर
1: मूर होतोर शुरू होली
0: होली
1: मूर होली हाँ
0: ने
1: हाँ।
0: और तक आजकल तो तू जाने इसकी हम चो किसान दादा दीदी मन बले काया है कि आजकल खिंडी का आधा पढ़ून लिखून नहीं
1: हाँ।
0: खाली धानच के नहीं कमाए सो
1: हाँ, नहीं कमा सो
0: बल्ले संगे संगे काया है कि साग सब्जी चो बल कमानी कर सो
1: हाँ। बोलो ने कि एक फसल नहीं करो दो तीन फसल एक साथ मतलब मिक्स बुलवा थे उनके
0: हाँ।
1: उन कमानी कर सो था।
0: और तक काया है कि आजकल नहीं साग सब्जी नहीं बले खूबे नगद खेती किसानी हो से
1: हाँ
0: खिड़िक मेहनत मशागत तो काई नहीं बल लागे से
1: हाँ कहीं नहीं बल लागे से
0: मांतर काया है कि दक जुगे लाभ बल तो मिले से
1: हाँ लाभ मिले से। और ये साग सब्जी कमानी में अगर समय आने अगर समय नहीं लागे 40 और 50 दिन ने भले आज फसल होए से
0: होए से
1: उन्हीं का जे कोनी कोनी धान संगे संगे हमी सब्जी चो कमानी बल करुक सकूं से।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और असन कमानी मन के चुनाव करते रहे जे जरूरत आसे रोजमर्रा जिंदगी में उन मन के कमानी करते रहे।
0: हाँ। और द काया है कि आजकल खिंडिक मिक्स कृषि बल कर सो बल्ले काया है कि दुई तीन फसल के मिसाउन बले ने
1: हाँ, कर
0: एक
1: सो
0: साथ कमानी कर सो
1: कमानी कर सो
0: तो काया है कि हुंचो ले काया है कि दक जोन हमचो मेहनत जोन मसागत आए उन तो लागे से ही
1: लागू है
0: मांतर मेहनत मसागत संगे संगे हमके ये गुट के बल ध्यान दे तो रहा है कि हमी नगत बीज चो उपयोग करूं नगत समया ने खद भात देऊं
1: हाँ
0: और नगत समया ने पानी कांजी देऊं
1: हाँ पानी कांजी देख लगवा तेबे तो हम जो अच्छा विकास होए दे और हम जो फर धरे दे।
0: और समया समया ने हमके कहा है कि फसल चो बीमारी नहाले रोग राही के बले ध्यान दे तो रहा है
1: हाँ
0: उन चो कजे जोन बले ओखद नहाले जोन दवाई होए से
1: हाँ
0: एक बल समय समय ने जानकार भाई बहिन मन ले पूछून
1: हाँ पूछन
0: थोड़े
1: बात
0: ये
1: इन
0: जो उपयोग बल कर तो रहा
1: हाँ उपचार बल करत रहा
0: और
1: है।
0: तू तो जानिस दक झिटकू कि आजकल हाट बाजार ने साग सब्जी चो कितरो महांग
1: हाँ आजकल और असन ये भी फिर आप सीजन बुलवात
0: हाँ
1: इधर लाए फसल जो कटाई होली से ये भी काचो बेड़ा ने नुआ फसल दख तो कम मिरवाए
0: नहीं मेरे
1: इधर लाए रेट खूबे रहुआए।
0: रहुआ
1: हाँ तो एक ऑफ सीजन बुलवात इधर लाए जे फसल धरू रहुआत कमानी करू रहुआत
0: हाँ
1: हूं चो रेट बढ़िया रहुआए।
0: और हम जो किसान भाई बहन मन भले ये गोट के लेक कर सोत होती
1: हाँ जान
0: और
1: सोत
0: काया है कि हुन सीजन हिसाब ने हुन मन भले जोन फसल चो
1: हाँ
0: कमानी कर तो रहा है
1: हाँ
0: हुन चो कमानी कर सोत
1: कर सो
0: तो तेबे तो हुन मन के रेट बोले अच्छा मिरे से होती
1: हाँ। हुन मन आजकल खूबे जागरूक खोला सत किसान दादा दीदी मन
0: हाँ
1: काहे
0: हाँ
1: कि मोबाइल चो जमाना है सबके तो जानकारी मोबाइल नहीं मिरे से हुन मन आगे जागरूक रह सत कि दल ना कौन भी तीन फसल धर ले कमानी अच्छा हो दे बरुन
0: और
1: भातिन।
0: दक काया की कृषि महकमा जो ना है ये
1: हाँ
0: बले समय समय ने किसान भाई बहन मन चो ट्रेनिंग वगैरह बल कराए से
1: हाँ
0: ये चोल बले हुन मन के जानकारी मिलते
1: जानकारी
0: रहुआ
1: मिले
0: है
1: से
0: और आजकल जो थोड़े जो किसान भाई बहन मन आत ये मन
1: हाँ
0: पढ़ा लिखा बोला
1: पढ़ा लिखा बला
0: तो झपके काई बले गोट बात के समझ सो
1: समझ तो और सरकार बल्ले असन असन योजना मन के निकरा से जेने प्रशिक्षण बल दाए से और कमानी कर तो का जे बीज बल दाए से
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो असन कमानी कर लो ने हम के अच्छा आमदनी में रुक सके से होनी का जे दादा दीदी मन तुम्हें संगे संगे मिक्स कमानी बल लेक जहन की धान कमानी संग संगे हमी सब्जी बल लगाऊं जैसे कि आलू होली टमाटर होली गोंदरी होली असन मन के बल लगा रहता रहा संगे संगे।
0: और क्या है कि द किसान भाई बहन मन फसल चक्र के बले अपनाए सो फसल चक्र के अपना लो ने क्या है कि हम चो जो भूई चो बाढ़ती आए ये
1: हाँ
0: बल नगत रहे से
1: नंगत रहे से
0: और समय ने हमके उपजन बले खूबे मिले से
1: हाँ असन ने उपजाऊ क्षमता बरकरार रहे से मतलब जसन की हमी गोट की फसल लगाते रह लेक जे पोषक तत्व रुआ माटी ने हुन कम होते
0: भूई
1: जाए
0: चो
1: से
0: उपजाऊ शक्ति बल कम हो से
1: कम हो से आई
0: ने
1: हाँ
0: तो ये फसल चक्र के बले अपना और समय हिसाब ने साग सब्जी जो कमानी करो तार आप लोग भारती बल
1: करो
0: हाँ। नहीं हाँ। ये तो होली नगद गोड बात मंत्र हम चो लगे और बल गोड बात रहुआ है हाँ। अलेक बल हम राउंड देव
1: तेबे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% किस इत्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% किस इत्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई किया अनबूताते वेंड मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
0: हाँ दक किसान वाणी कार्यक्रम भित्रे नहीं हाँ। मैं खेती कमानी चु गोट तो सांगते रहूं
1: हाँ, सांगो इसे
0: मानतर काय है कि द खेती कमानी ने काय होए से कि जसन जोन बले कीड़ी
1: हाँ।
0: नहले फसल के नुकसान कर सो और असन बले कीड़ी रह सो जोन फसल के खिंडिक लाभ बले
1: लाभदायी रह सो
0: तो हुनी हिसाब ने आज ही हम चो लगे गोटोक भेंट वार्ता आसे
1: हाँ।
0: और ये डॉक्टर आशीष अनंत संगे गुड बात करला सोत मर्सी सोना रानी
1: अच्छा।
0: तो मैं बोलते रहे ये गुड बात के हम बल सुनो और दादा दीदी मन बल सुनो आ लेते हुए
6: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष अनंत। आप उद्यानिकी महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और आप कीट विशेषज्ञ हैं और कीट के बारे में आज हमसे बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे किसानों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष जी से पूछना चाहूंगी कि वो अपने बारे में कुछ बताएं।
7: हाँ नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष अनंत और मैं उद्यानिकी महाविद्यालय में एक सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ और मेरा जो विषय है मैं कीटों के पहचान उच्चान और उसका जो समाधान होता है उसमें कार्यरत हूँ।
6: अच्छा
7: जी
6: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कीट क्या है।
7: जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि बहुत लोग हमेशा जब भी हम कीट की बात करते हैं तब एक हमारे मन में भ्रम पैदा होते हैं कि सारे कीट हानिकारक होते हैं।
6: अच्छा
7: तो कीट का मतलब है कि जिसका 3 जोड़ी पैर होता है और जिसका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, मतलब कोई भी इंसेक्ट को कीट कहने के लिए 3 जोड़ी पैर आवश्यक है और उसका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है उसे हम कीट कहते हैं मैडम। मान लो किसी का 2 जोड़ी है या जैसे हम कनखजुरा को देखते हैं तो उसके बहुत सारे पैर होते हैं तो उसको हम कीट की कैटेगरी में नहीं शामिल करते हैं।
6: अच्छा तो वर्तमान समय में हम देखते हैं जबकि फसलों का समय है और फसलों में बहुत सारे कीट लगते हैं
7: जी,
6: है ना। तो जो कीट होते हैं कई बार हमारे फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
7: अगर हम देखा जाए तो कीट शब्द हानिकारक ही नहीं होते हैं, ऐसे अच्छा। भी प्रकृति में बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को, फसलों को और उपज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज का जैसे टॉपिक है हमारा लाभदायक और हानिकारक कीटों में अंतर, तो सबसे पहले मैं लाभदायक कीटों के बारे में बताना चाहूँगा मैडम
6: जी।
7: तो लाभदायक कीट वो होते हैं जो हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी से हमको शहद की प्राप्ति होती
6: हाँ,
7: है, मोम की प्राप्ति होती है, हमारे फसलों को परागण करते हैं। इसी के ही साथ साथ जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके धागे से विभिन्न प्रकार की साड़ी बनाए जाते हैं, साल बनाए जाते हैं, कपड़े तैयार करते हैं।
6: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया परागण करते हैं, तो ये परागण क्या होता है?
7: जी हाँ, परागण का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे होते हैं जब एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं
6: जी,
7: तो हर एक फूल में परागकण मौजूद होते हैं, तो उसके पैर में या विंग में जो परागकण चिपक जाते हैं, जब दूसरी फ्लावर में वो जाते हैं, दूसरे फूल में जाते हैं, तो परागण हो जाता है।
6: अच्छा, ये जो परागण की प्रक्रिया है इससे क्या हमको लाभ है?
7: जी देखिए, जनरली जितने भी कीट होते हैं ये तो हमारे लिए जाते नहीं हैं
6: हाँ।
7: ये फूलों के पास जाते हैं और उससे एक रस को पीने की कोशिश करते
6: जी,
7: हैं
6: जी।
7: जिसको हम बोलते हैं नेक्टर बोल देते हैं, उसी से बाद में अपना शहद का निर्माण करते हैं मधुमक्खियां खास करके
6: जी।
7: तो इससे हमारा जो विभिन्न प्रकार के हम पर्यावरण में फसलें देखते हैं, चाहे सब्जी की फसल हो गई, चाहे फूल की फसल हो गई, चाहे फल की फसल हो गई, इसमें बहुत प्रकार से परागण करके फसल की जो उपज होती है काफी हद तक बढ़ती है।
6: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि परागण के द्वारा मधुमक्खियां हमारे लिए शहद बनाती हैं और ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। अब ये बताएं, जो आपने शुरू में बताया कि एक लाभदायक कीट होते हैं और एक हानिकारक कीट होते हैं, तो लाभदायक कीट की श्रेणी में और कौन कौन से कीट आते हैं?
7: देखिए, लाभदायक कीटों में बहुत प्रकार से उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर लिए कि परागण करते हैं, तो परागण में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे पृथ्वी पर फसलें अभी मौजूद है उसमें 80% परागण करते हैं वो कीट ही होते हैं।
6: अच्छा।
7: एक साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि अगर इस पृथ्वी से मधुमक्खी खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो इंसान 4 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक परागण नहीं होगा तब तक फसलों में फल नहीं लगेंगे, तब तक हमारी सब्जी उत्पादन नहीं हो सकेगी। तो परागण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बिंदु ये है, बहुत सारे ऐसे कीट भी होते हैं जो हमको प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाते हैं।
6: अच्छा।
7: जैसे हम मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन से हमको शहद की प्राप्ति होती है
6: जी।
7: और मधुमक्खी के छत्ते से मोम की प्राप्ति होती है। अच्छा। इसके अलावा रॉयल जेली भी एक सिक्रेशन करती है मधुमक्खी के द्वारा
6: जी जी।
7: तो मधुमक्खी के कारण हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरा लाभ ही होता है। और ऐसे जो कीट हैं जिसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर, मतलब रेशम का पालन करते हैं, उसमें रेशम की प्राप्ति होती है
6: जी।
7: और एक लाग कीट है, लाग कीट वे कीट होते हैं जो पौधों का रस को चूसते हैं और अपना बॉडी को ऐसे बढ़ाते जाते हैं, एक मोम टाइप सिक्रेशन करते हैं जिससे उसका शरीर बढ़ता है और उससे बहुत प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे वार्निश बनाए जाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं जी।
6: बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि कीट हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और बहुत सारे फायदे हमें होते हैं। जैसे आपने बताया कि मधुमक्खी अगर ना हो तो हम 4 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकते। बहुत अच्छी जानकारी, और ये हमारे लिए आय का स्रोत भी है और हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि हानिकारक कीट कौन कौन से होते हैं?
7: जी, हानिकारक कीट वे होते हैं जो हमको किसी न किसी तरीके से हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, या हमारे भंडार गृह में नुकसान पहुंचाते हैं, या कुछ ऐसे कीट होते हैं जो जानवरों में डिसीज फैलाने का काम करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे कीट होते हैं जो मनुष्यों को भी डायरेक्ट हानि पहुंचाते हैं, जैसे मच्छर देखते हैं, मच्छर से हमको मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया, वैसे ही हमारे घर में होते हैं घरेलू मक्खी, उससे भी विविध प्रकार की बीमारी फैलाते हैं। इसी को हानिकारक कीट की संज्ञा में रखा गया है।
6: जी, हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हानिकारक कीट क्या है और लाभदायक कीट क्या है। और हमारे किसान कई बार ये होता है उनके साथ कि वो पहचान नहीं पाते हैं हानिकारक कीट कौन से हैं और लाभदायक कीट कौन से हैं, और कई बार इनको नियंत्रण करने के लिए हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिसे हम बिना रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किए हम जैविक तरीके से इस पर नियंत्रण कर सकें?
7: जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम आए दिन जब देख रहे हैं रसायनों का अंधाधुंध उपयोग होता जा रहा है।
6: हाँ।
7: जिससे हमारी मिट्टी, जिससे हमारी हवा और हमारा पर्यावरण पूरा संतुलन खराब,

0: दूषित हो रहा है।
1: जी दूषित हो रहा है। इसी घड़ी में बहुत सारे ऐसे कीट भी होते हैं जिसको हम परभक्षी कीट बोलते हैं और परजीवी कीट होते हैं।
0: जी
1: ये वे कीट होते हैं जो हानिकारक कीटों को खाते हैं।
0: अच्छा,
1: इसका हमारे कृषि में और उद्यान की फसलों पर इसका काफी प्रयोग किया जाता है।
0: इनके बारे में आप कुछ विस्तार से जानकारी बता सकते हैं?
1: जी देखिए, जब भी हम जैविक प्रबंधन की बात करेंगे उसमें कीट अग्रणी लाइन में रहते हैं, क्योंकि जो परभक्षी कीट रहते हैं अपने शिकार को डायरेक्ट मार कर खा जाते हैं। इनमें से जो प्रमुख कीट है जिसको हम बोलते हैं, हम देखे हैं चींटी होता है, वो भी बहुत प्रकार के कीटों को खाने काम करते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: हम जो देखते हैं फाफा जिसको बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, ये मच्छर के बच्चे को खाने का काम करते हैं।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा प्रेइंग मेंटीड होती है जिसको शिकारी मेंटीड के नाम से जाना जाता है, ये बहुत प्रकार की इल्ली को खाती है, चूसने वाले कीटों को खाते हैं। इसी के साथ साथ एक लेडी बर्ड बीटल होती है, इसको चूसने वाले जो कीटे हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया है उसको नियंत्रित करने के लिए। जी
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे एक जो कीट है वो हानिकारक कीटों को खाकर हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे मित्र ही हैं कुछ कीट, है ना। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि जो लाभदायक कीट है जिनसे हमको हानि नहीं होती है, इन कीटों का संरक्षण हम कैसे करें?
1: देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पर्यावरण में कुछ हानिकारक कीट होते हैं उसको मारने के लिए हम विविध प्रकार का रसायन डालते हैं। जैसे हम मिट्टी में रसायन डाल देते हैं, फिर पौधों पर छिड़कते हैं, तो होता क्या है मैडम, इसके साथ साथ जो हानिकारक जीव तो मर जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लाभदायक कीट होते हैं उस केमिकल के प्रभाव से वो भी मर जाते हैं।
0: तो एक चीज चिंता का विषय है,
1: ये बहुत चिंतित विषय है ये। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जब भी पौधों पर बौर आए या फूल आए उस टाइम हमको कभी भी कोई रसायन का यूज नहीं करना चाहिए।
0: हाँ।
1: क्योंकि उस टाइम में बहुत प्रकार के ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो फूलों पर मंडराते हैं और उससे वो रस पीते हैं, और जब भी उस रस को पीते हैं तो जहर उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे उसके कुछ ऐसे प्रजाति है जो विलुप्त भी हो गई है। और सबसे ज्यादा इसको जो प्रभावित हो रही है वो मधुमक्खी प्रभावित हो रही है।
0: अच्छा,
1: मधुमक्खी की संख्या हम देखते हैं तो कुछ दशकों में बहुत ही कम हुई है इसी रसायन के प्रभाव से।
0: अच्छा
1: जी,
0: क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि कौन से समय में हमें कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। जब हमें अच्छे से पता हो कि कौन से समय में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, अगर उस समय सीमा को हम पहचान ले तो हम मधुमक्खियों का संरक्षण अच्छी रीति से कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी थी कि हम उन कीटों को जो हमारे मित्र हैं उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि जो हानिकारक कीट हैं, क्या हम उसको मारने के लिए भी जैविक खाद का या रसायन का उपयोग कर सकते हैं?
1: जी, कुछ ऐसे मार्केट में कीटनाशी आते हैं जो पौधे से बना है, जैसे नीम। नीम से अगर बना हुआ हम उत्पाद अगर कीटों को मारने के लिए यूज करते हैं तो वो हानिकारक और लाभदायक जीवों के ऊपर उतना प्रभावी नहीं होता। हाँ, हानिकारक जीव तो मर जाते हैं लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसका जो अवशेष होता है वो मिट्टी पर नहीं रह जाती है, जिससे हमारे पर्यावरण बहुत अच्छा रहता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर हम जैविक खाद का उपयोग करें तो उसमें हानिकारक कीटनाशक तो मर जाएंगे, लेकिन जो हमारे कीट हैं जिनसे हमको लाभ मिलता है वो बचे रहेंगे और उसका असर हमारी मिट्टी पर भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं, क्या कुछ ऐसे भी कीट हैं जिसका औषधीय महत्व है या जिनसे कुछ बीमारियां ठीक हो सकती हैं या बीमारी ठीक होने में हमारी सहायता करती है?
1: जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। देखिए, जो कीट होते हैं कीट सिर्फ हानिकारक नहीं होते, इसका अपना एक औषधीय महत्व भी है। जैसे हम अपने बस्तर की मैं बात करूं, तो बस्तर में जब किसी को भी बुखार होता है तो जिसको हम चापड़ा बोलते हैं, चीटी से उसको थोड़ा कटवाते हैं
0: जी,
1: जिससे क्या होता है उसको बुखार में राहत होती है।
0: अच्छा, ये आपने बताया कि जिसको बुखार होता है उससे हम चापड़ा चीटी से उसको कटवाते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि चापड़ा चीटी में कौन सा ऐसा रसायन होता है जिसके कटवाने से बुखार ठीक हो सकता है।
1: जी, चीटी क्या है, फार्मिक एसिड सिक्रेशन करते हैं
0: जी।
1: जैसे ही वो कोई किसी के बॉडी को कट करता है तो उसमें वो फार्मिक एसिड चला जाता है, इससे उसका सूजन कम हो जाती है।
0: अच्छा।
1: और इससे जो रोग है, जो बीमारी है, उसे निजात मिल जा सकता है। इसके अलावा मैडम मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी के डंग से आज बहुत प्रकार के भी उसका एक अलग औषधि महत्व है। उनके डंग से वात रोग जिसको हम बोलते हैं, ज्वाइंट पेन जिसको बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं, ये तक अभी ठीक हो रहा है। और अभी में हाल ही में एक इसका एक और रिसर्च आता है कि मधुमेह जैसी बीमारी को भी ठीक कर दिया है मधुमक्खी के डंग से।
0: अच्छा
1: जी।
0: और कई बार डॉक्टर साहब ये सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहे थे और बहुत सारे मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया और वो व्यक्ति घायल हो गया, और कई बार हम ये भी सुनते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, बहुत प्रकार के जैसे बीमारियों का इलाज है, इसमें मुख्य रूप से ये होता है हम कितना डोज उसको दे रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे मधुमक्खी किसी के शरीर में अगर आक्रमण कर रही है तो उस रसायन का जो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसको हम सीमित मात्रा में कुछ चीज का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए वरदान साबित होता है।
0: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा डोज हानिकारक होता है, वैसा ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कीट हमारे लिए लाभदायक ही होते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं, कीट का एक अलग संसार होता है, तो आप इनके विशेषज्ञ हैं और कई कीटों का कुछ अलग गुण होगा, कुछ महत्व होगा, तो उनके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें।
1: जैसे हम कीट के बारे में जब भी बात करते हैं, हमारे घर में भी कीट आते हैं, जैसे काकरोच आते हैं
0: जी,
1: घरेलू मक्खी आती है, टर्माइट आती है, तो ये तो हमारे घर के लिए नुकसान हम बोल देते हैं, लेकिन हमारे ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे कीट हैं। अब कैसे है, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ
0: जी।
1: जनरली जितने भी टर्माइट कीट होते हैं, जिसको हम लोग दीमक बोलते हैं, ये क्या करती है, सूखी पत्ती है, टहनी है, इसको खा के सड़ा गला के ये मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करती है।
0: अच्छा।
1: अगर टर्माइट ही, अगर दीमक ही नहीं रहे तो हजारों टन हमारे पास जंगलों में ऐसा कचड़ा हो जाएगा। तो
0: अच्छा।
1: एक हिसाब से ये हमारे लिए मौन कीट है, साफ सफाई कर्मी है।
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: ऐसे भी कीट होते हैं जो हम देखते हैं गोबर को साफ करने काम करते हैं, जिसको गोबरेला कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: आपने देखा होगा कि ये जब भी गोबर के ऊपर ये कीट होते हैं तो उसको गोल गोल करके अपने घरों की तरफ ले जाते हैं और साफ सफाई करने काम करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात बताई कि ये पर्यावरण संरक्षक भी होते हैं, जैसे आपने गोबर साफ करने की बात बताई और दीमक ना हो तो बहुत सारा कचरा फैल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि कीट, हम कई बार हम कीटों को हानिकारक ही समझ लेते हैं, लेकिन आपसे जब हमने बातचीत किया तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई कि कीट पर्यावरण के रक्षक भी होते हैं। क्या कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं?
1: जी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बस्तर में हम चापड़ा को
0: जी
1: खाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो चापड़ा कुछ नहीं, वो रेड चीटी होती है
0: जी।
1: ये इसमें बहुत ही इसका अलग औषधि गुण होता है। उसी प्रकार से जब हम छिंद की पेड़ होता है, जो ताड़ के पेड़ में कीड़ा होता है, उसको भी हम खा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा जो टिड्डी होता है उसको भी कुछ जगह ऐसे खाने का ऐसे प्रचलन में है। तो कीट एक हिसाब से हानिकारक नहीं है, उसमें बहुत प्रकार के प्रोटीन, खनिज, विटामिन होते हैं, और ये मेरे ख्याल से भविष्य में ये एक अलग ही स्रोत हो सकता है प्रोटीन का
0: जी।
1: जी
0: हाँ, हमारे बस्तर में चापड़ा विशेष रूप से खाई जाती है और बहुत स्वादिष्ट माना जाता है इसे, और आपने बताया कि छींद का जो कीड़ा है वो भी उसे खाया जा सकता है। और भी बहुत से ऐसे कीट हैं जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब ये है डॉक्टर

0: आज तक हमें नहीं मालूम हो।
1: चलिए, अभी तक ने तो हमने कीटों के बारे में बहुत ही जानकारी ली, लेकिन एक कीट के बारे में अब मैं ऐसा बताने की कोशिश करता हूँ जिसके बारे में शायद ही सुने होंगे।
0: जी
1: एक कीट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम आता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कहने का मतलब,
0: जी जी
1: कैसे पता चलेगा कि डेड बॉडी है वो 2 दिन पहले मरी है या 1 सप्ताह पहले? हम टीवी में देखते रहते हैं,
0: जी
1: सीआईडी में देखते हैं कि
0: जी
1: फॉरेंसिक
0: बिल्कुल।
1: की टीम आती है
0: हाँ
1: और पता लगाती है कि ये डेड बॉडी कितने दिन पहले मरी है। तो इसमें एक प्रकार की कीट काम आती है जिसको मक्खी बोलते हैं, ब्लो
0: जी
1: फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में। ये करती क्या है, जब भी कोई डेड बॉडी या जानवर हो या इंसानों की डेड बॉडी अगर आसपास होती है तो उनमें जाके अंडे दे देती है। अगर कोई डेड बॉडी में अगर अंडे आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डेड बॉडी है अभी अभी मरी है। मान लो अगर उसमें इल्ली निकल रही है तो हम बोल सकते हैं थोड़ा पुराना है।
0: जी
1: अगर उस डेड बॉडी से एडल्ट कीट निकल रही है तब हम बोल सकते हैं ये जो डेड बॉडी है 1 महीना हो गया करके।
0: जी
1: तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो कीट के लाइफ साइकिल का स्टडी कर लेते हैं
0: जी
1: और उसके हिसाब से यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये डेड बॉडी कितने दिन
0: कितनी
1: पहले
0: पुरानी
1: मरी
0: है।
1: है। और
0: जी
1: जो हत्या की जो गुत्थी को सुलझाने का काम आता है, ऐसे भी मतलब कीट होते हैं हमारे पर्यावरण में।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई, और शायद इस विषय में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि कीट ही हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए भी एक लाभदायक हो सकते हैं, और उनकी गतिविधियों के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि जो मृत शरीर है वो कितने दिनों तक कितने दिनों का है या कितने कितना पुराना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हानिकारक और लाभदायक कीटों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, और मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कुछ और बताना चाहेंगे।
1: मैं बताना चाहूँगा कि सभी कीट हानिकारक नहीं होते हैं। हानिकारक और लाभदायक कीटों में अभी हम अंतर बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो हानिकारक कीटों को हम जैविक प्रबंधन तरीके से अगर उसका उन्मूलन करें तो हमारा पर्यावरण रसायन मुक्त होगा, संरक्षण भी होगा इसका, और हमारी मिट्टी, हवा, पानी ये सभी शुद्ध होगी। रही बात हम कीट की, जब दुनिया में देखते हैं तो कीट हमारे लिए लाभदायक ही होते हैं, चाहे डायरेक्ट तरीके से लाभदायक हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। हम अभी जाने हैं कि बहुत प्रकार से ऐसे भी कीट होते हैं जो लाभदायक हैं। तो हम ये लास्ट में बोल सकते हैं कि कीटों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि
0: जी
1: कैसे वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रही है, कैसे कुछ कीट होते हैं जो हमारे पर्यावरण को बताते हैं कि हमारा पानी कितना साफ है, मिट्टी कितनी खराब है, इन्वायरमेंट कितना गंदा है, ये भी
0: जी
1: बताते हैं कुछ कीट। तो
0: जी
1: कीटों का एक अलग ही महत्व है हमारे पर्यावरण में। कीट हानिकारक तभी है जब उसका पॉपुलेशन कुछ हद तक बढ़ जाए और उसको रोकना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा सबको जीने का अधिकार है इस पृथ्वी में,
0: जी
1: सब जीव समान होते हैं।
0: जी
1: इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
0: डॉक्टर आशीष अनंत, आप हमारे स्टूडियो में आए और कीटों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ जीटको भाई,
3: हाँ डेंगा दादा,
2: दक ये काय सुंदर गुड बात रहे ने।
3: हाँ
2: और दक जोन बले कीड़ी रसोत,
3: हाँ
2: ये सपाई कीड़ी हमचो फसल के नहले हमचो देह पाए के नुकसान करतो नुआत,
3: हाँ नुआत
2: ने कोनी कोनी कीड़ी मन हमके खिंडी लाभ बले कराए,
3: लाभ बले कराए सो था।
2: और ये हिसाब ने तू सुन ली सोती जसन चापड़ा चट ने,
3: हाँ चापड़ा
2: चापड़ा हम चो बस्तर ने तो चटनी चो रूप ने हुन चो खूबे उपयोग हुए से,
3: हाँ उनके खाओ से।
2: और हमी ये बले दखू से नहाले सुन लू से बले,
3: हाँ
2: कि जसन जर बुखार बल धरे से
3: हाँ, हाँ,
2: चापड़ा फापड़ू आ देह ने,
3: हाँ देह ने फापड़ू
2: ने,
3: हाँ
2: और चापड़ा चावलून तो जर बले ठाने छांडे से,
3: हाँ छुकने छाण जाए
2: ने,
3: हाँ
2: उसने दक का है कि मधुमेह बीमारी के बले सांगला एमन,
3: हाँ
2: कि जसन सुगर जोन बीमारी आए,
3: हाँ
2: ये चो बले उपयोग ये कीड़ी हिसाब ने हो सके बेहतर हो।
3: हाँ
2: डॉक्टर साहब,
3: हाँ कीड़ी चबा ले खून चो उपचार बल हो से बलून सांगला।
2: तो यही कहे हम चो किसान दादा दीदी मन के खिड़िक ध्यान देतो रहे
3: हाँ
2: कि कौन कीड़ी हमके जुगे नुकसान करे से,
3: हाँ
2: तो हुसन कीड़ी के थोड़े मरला तो हिसाब वाट तो बनाते
3: बनाते रहे हाँ।
2: मानतर जोन कीड़ी हमचो फसल नाले हमके लाभ दे से
3: हाँ।
2: उसन कीड़ी मनचो थोड़े संरक्षण वाले कर तो खूबे जरूरी
3: हाँ, खूबे जरूरी है तेबे तो हमके सहायता दे दे जसन की बलसत की

0: हम जो खेती कमानी ने किसान चु मित्र के छुआ इन
1: हाँ
0: बोले तो एक प्रकार से कीड़ा है चाहे उनके
1: हाँ
0: हम के अगर दोही छिंचले खून बोले हजुन जाए से
1: हाँ
0: तो असन रासायनिक दवाई रस थुनमन चो छिड़काव अगर कर तो नुहाय उनमन चो जो का तो कीड़ी मर रुआ थुनमन रलिक तेबे तो उपजाऊ क्षमता हम चो माटी चो बढ़न रहे
1: बड़े दे और का है कि दक जसन जैविक खाद ने बले हुन चो उपयोग
0: करतो रहे से। हाँ हाँ
1: तो हमके ये जानतोर खूबे जरूरी है किसान दादा दीदी मन
0: हाँ
1: कि कौन जेनी से हमके नुकसान करे से
0: हाँ
1: और कौन हमके फायदा
0: फायदा दे से।
1: दे से।
0: हाँ
1: तो ये तो होली खूबे नगद गुड बात।
0: हाँ
1: मैं बोलते रहे नगद गुड बात संगे गोटक नगद गीत के आले सुनू ते
0: आले सुनाऊं दिया।

0: हाँ डेंगा दादा काय रसिया गीत रहे ने पर्यावरण बितिन गीत रली और आजकल हुंचो कारण बले हम चु लगे हाँ ये हम चु लगे गीत रली महेश पांडे और हुंचो संगवारी मंचो हाँ
1: द काय है कि गीत तो पक्का रहे
0: हाँ
1: और पर्यावरण हिसाब ने तू बलते रही
0: हाँ।
1: और हम ही सपाए लोगों के एक गोट के बल ध्यान दे तो रहा है
0: ध्यान दे
1: कि रुक राही के खिंडी बचाऊं
0: हाँ।
1: चलू
0: चलो होनी कारण तो आजकल कितरो
1: कसम गरम लागे से ने
0: हाँ गांव एकदम ढाल मारे से आजकल
1: और द काय है कि रुक राही रलो ने हमके छाए बल दे से लहरा बल दे से पानी बल दे से
0: पानी बल दे
1: पाखर बल दे से
0: हाँ
1: ने
0: हाँ
1: तो यही का जिका है कि दक हमचो आवश्यकता हिसाब ने तो काय है कि गजकूट के काट तो रे चाहे ने मानतर काय है कि गोटो गज के काट लो ने 10 टन बूटा कम से कम लगा तो रहा है ने
0: हाँ
1: तेबे तो होए दे
0: हाँ काय
1: और असन ने कहा है कि हम ही पर्यावरण चुबले रक्षा करुक सकूं दे ने
0: हाँ
1: तो ये तो होली गोड बात
0: हाँ
1: ने
0: हाँ
1: मानतर तक कहा है कि फिर समया होलोन तो विदा मांगुक लागे से
0: हाँ मोड रख सकलुक लागे से
1: ने
0: हाँ
1: तो मैं बोलते रहे
0: हाँ
1: हले समय होली
0: हाँ
1: तो विदा मांगो
0: हाँ लेते हैं
1: तो किसानवाड़ी कार्यक्रम सुन तो जमाए किसान दादा दीदी मन के जातो पूरे मैं डेंगा
0: मैं झिटकू
1: हमी दोनों करूं से जुहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
1: आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी रायपुर द्वारा 22 मई को विमतारा ऑडिटोरियम रायपुर में स्वरोत्सव का आयोजन किया गया।
2: वंदे मातरम। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित संगीत सभा स्वरोत्सव में पधारे सभी देवी और सज्जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिसकी धुन से होती है सबकी सुबह सुहानी, जिसकी धुन से होती है सबकी सुबह सुहानी, घर घर पहुंच रही है जन जन की कहानी, गांव से शहरों तक धरती से लहरों तक, गांव से शहरों तक धरती से लहरों तक, 9 दशकों से गूंज रही है अपनी आकाशवाणी, अपनी आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम के आरंभ में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वी राजेश्वर ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया।
3: सम्माननीय पद्मश्री श्री मदन चौहान और उनकी प्रतिष्ठित कलाकार टीम, सम्माननीय श्रीमती श्वेता शिवाले और उनकी उत्कृष्ट समूह, दूरदर्शन, PIB, CBC, आकाशवाणी और जिला प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण, पूज्य आकाशवाणी वरिष्ठ सदस्य, सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक, जीवंत युवा, संगीत प्रेमी, मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, मुझे आप सभी का स्वरोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है, जो भारत में रेडियो प्रसारण की 90वीं वर्षगांठ का भव्य उत्सव है। आवाजों, धुनों और यादों के 9 दशकों का क्या शानदार यात्रा रही है। भारत में रेडियो प्रसारण स्वतंत्र संग्राम के दौरान यहाँ एक शक्तिशाली एकता और साहस का उपकरण बन गया। इसने नेताओं की आवाजों पहुंचाई, लाखों लोगों को प्रेरित किया और हमारे राष्ट्र की सामूहिक भावना को मजबूत किया। आज रात जब हम उसे गौरवशाली अध्याय को याद करते हैं, स्वतंत्र के बाद रेडियो लोगों को विश्वसनीय साथी बन गया। उसने किसानों के शिक्षित किया, समुदायों का मार्गदर्शन किया, स्वास्थ्य में जागरूकता फैलाई और सरकार की दृष्टि को देश के सबसे दूरदराज कोनों तक पहुंचाया। वास्तव में रेडियो हमारे राष्ट्र के प्रगति और विकास की आवाज रही है। आइए हम इस अद्वितीय योगदान की तालियों से सराहना करें। आकाशवाणी भारतीय संगीत और संस्कृत को संरक्षित और प्रचारित करने के अपने मिशन में अडिग रही। संगीत अनुभाग स्थापित करके प्रतिष्ठित कलाकारों को भर्ती करके और संगीत समारोह आयोजन करके आकाशवाणी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय संगीत की आत्मा फलित फुलित रहे। आज रात जब हम अपने माननीय अतिथि कलाकार पद्मश्री मदन चौहान और श्रीमती स्वाति शिवाले का स्वागत करते हैं, आइए हम उन्हें इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से सम्मानित करें। आकाशवाणी रायपुर क्लस्टर की ओर से मैं हमारे सम्माननीय अतिथि कलाकारों, वरिष्ठ अधिकारियों, पूज्य वरिष्ठ और यहाँ उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस संध्या की दिव्य सुरों में डूब जाएं और भारत में रेडियो की सदगत यात्रा का उत्साह मनाएं। धन्यवाद।
1: इस सुरमई सांझ में सबसे पहले श्रीमती श्वेता शिवालय ने ठुमरी, दादरा और मिर्जापुरी कजरी की ऐसी तान छेड़ी कि संगीत प्रेमी झूम उठे।

श्वेता शिवाले जी के स्वर में। आइए अब सुनते हैं सावनी की ऐसी ही एक वानगी। बोल हैं तुमको आने में, तुमको बुलाने

मिर्जापुर की कचरी उत्तर भारत की अत्यंत लोकप्रिय लोक गायन शैली है, जो विशेष रूप से वर्षा ऋतु में गाई जाती है। इसमें मेघ, झूला, नदियां और गांव के वर्णन के साथ प्रेम और विरह की भावनाएं बड़ी मार्मिकता से व्यक्त होती हैं। श्वेता शिवाले जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक मिर्जापुरी कजरी, जिसके बोल हैं, सेजिया पे लोटे काला नाग।

स्वरोत्सव के दूसरे चरण में पद्मश्री मदन चौहान ने अपने सधे हुए सुर में गजल गायकी, सूफियाना कलाम और कबीर भजन की सांगीतिक प्रस्तुतियां दी।

मदन चौहान जी की आवाज में अब पेश है नातिख लखनवी की गजल, बुझी हुई शमा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं कि दिल की हस्ती तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं।

0: स्वरोत्सव की ये सुरमई सांझ जवां होती रात तक जारी रही, जिसका संगीत रसिकों ने खूब लुत्फ उठाया। इस संगीत सभा के समापन अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख उपनिदेशक श्री पंकज मेश्राम ने आभार व्यक्त किया।
1: बैठे हुए महफिल में हम ये सोच रहे हैं कि महफिल से उठा जाए तो क्या कह के उठा जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, बंदिशें होती हैं। आज के इस खास सौरोत्सव कार्यक्रम में पधारे आप सभी रसिक श्रोताओं का हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज का ये विशेष आयोजन ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा की खुशनुमा याद में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य कलाकार थे पद्मश्री श्री मदन चौहान, श्रीमती श्वेता शिबाले और साथी। आपने अपनी दिलकश और अलहदा गायकी से आज की शाम को रोशनी से तरबतर कर दिया, पर यह सफर आप सबकी उपस्थिति के बगैर तय करना आसान नहीं था। आप सबने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम विशेष तौर पर आभारी हैं दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक श्री संजय

0: मिश्रा और उनकी पूरी टीम का, जो इस आयोजन में हर समय हमारे साथ रही। हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं पीआईबी से पधारे उप महानिदेशक श्री जयभाई सर का। हम आभार व्यक्त करते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा जी का, जिनका कीमती वक्त हमें इस आयोजन के लिए मिला। हम इस कार्यक्रम के मंच संचालक दीपा खटवार, रेणुका काले और सौम्या रिजवी का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में हमें विशेष सहयोग दिया। और अंत में हम आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और हमारे क्लस्टर प्रमुख श्री वी राजेश्वर सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन अपने अंजाम तक पहुंचा है। उन्होंने हम सबको एक टीम की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और अपना कीमती और बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद।
1: इसी के साथ 22 मई को विमतारा ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित सौरोत्सव पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गौरवमयी 90 वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर में आयोजित सौरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पिला मन काजे गोट। प्रस्तुत करता है रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर।

0: तो पटके दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन
1: पिलामन का जे गोट सुनतो नानी बड़े सपाय पिलामन के मचो बाटले खुब्बे खुब्बे मया और लाड। हाँ तो पिलामन आमी ये कार्यक्रम भित्रे रोजे दिना तुमचो पूरे धरुण भाती अमरु से आमचो देशचो माटी ने जन्म धरलो वीर पुरुष वीर योद्धा और महान समाज सुधारक मंचो गोट की जोन की आम के आमचो समाज के आमचो देश के आप लोग कर्म ले और आप लोग ज्ञान ले नगद बाट के दखाला और आम के आमचो देश चो प्रति देशभक्ति के जगाला। आमी सपाय लोग के गोटोक सुतूर ने चलतो काजे सीख दिला बाट दखाला। असन तो आमचो देश ने कैक जन महान हस्ती मन जन्म धरला मानतर आजी आमी जानवा आमी गोठियावा आमचो देश चो असनी वीर पुरुष और वीर योद्धा जोन आप लो देश और आप लो मातृभूमि चो रक्षा काजे आप लो जीवना के खपाला मानतर फेर वाले देश चो दुश्मन मंचो पूरे हार नहीं मानला और आप लो वीरता और शौर्य चो लागुन आप लो नाव के अमर करला असनी ये वीर और महान योद्धा आत महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप चो जन्म 9 मई सन 1540 के राजस्थान जो कुंभलगढ़ नाव चो जगह ने राज परिवार ने होली। ये मंचो बाप रला महाराजा उदय सिंह और माए रानी जीवंत कंवर रला। महाराणा प्रताप पीला बेरा लेची खूब बेसाहसी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय रला। ये मंचो पीला बेरा चो नाव की कारली महाराणा प्रताप के पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चला तो चो शिक्षा मिरली और महाराणा प्रताप बले पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चला तो ने महारत हासिल करला। एक के दखुन ये मंचो बाप महाराजा उदय सिंह खूब बेहरिक होते रला। धीरे धीरे समया होते गेली और महाराणा जुआन होला। सन 1572 ने महाराणा प्रताप चो राज्य अभिषेक होली और ये समय ने ये मंचो राज ने खूबे संकट और विपत्ति मन के बले सामना करो पड़ ली मांतर महाराणा प्रताप आप लो सूझबूझ धैर्य साहस और पराक्रम ले सपाय विपत्ति चो सामना करला। महाराणा प्रताप आप लो बाप राजा उदय सिंह चो आखिरी इच्छा चो मान करुन भाती आप लो सौतेला भाई जगमाल के राजा बनातो चो विचार करला। मांतर हुन समय मेवाड़ राजचो विश्वासपात्र चुनावत राजपूत मन जगमाल चो राजा बनतोर मेवाड़ राज का जे खूबे नुकसान होय दे बोलून भाती जगमाल के राजा बनतोले मना करला। मांतर जगमाल सिंहासन छाड़ूक नी चाहते रहे यही काजे पाछे रीस होन भाती बदला धरतो काजे अजमेर जाऊन राजा अकबर चो सेना ने मिसलो। यही समय ने राजकुमार प्रताप के मेवाड़ चो राजा बनाला और संगे संगे महाराणा चो खिताब बले मिरली। ये समय ने दिल्ली ने राजा अकबर चो राज चलते रहे और अकबर चो मुगल सेना मेवाड़ राज के आपलो राज ने मिसातो काजे चित्तौड़ चो चारों बाटले घेरला। मांतर महाराणा प्रताप चो वीरता और साहस ले युद्ध के लड़ला और कठिन परिस्थिति ने बले हार नहीं मानला और आपलो मातृभूमि के गुलाम हो नहीं दिला। मुगल सम्राट अकबर यमनचो राज के जीतून भाती आपलो राज ने मिसाउ चाहते रलो मांतर राणा प्रताप यमन के असन नी होग दिला और जीवना भर यमन संगे संघर्ष करते रला। महाराणा प्रताप 7.5 फुट डेंग और यमनचो वजन 110 किलो रली। यमनचो सुरक्षा कवच 72 किलो चो और भाला चो वजन 80 किलो रहे। महाराणा प्रताप जेबे युद्ध करुक लाए जाते रहोत हुन समय ने यमनचो तलवार ढाल कवच और भाला ये सपाय के मिसौन भाती 208 किलो ले बले आगर वजन के उठाउन भाती युद्ध करते रला। आजी बले महाराणा प्रताप चो कवच भाला तलवार ये सपाय अस्त्र शस्त्र मन उदयपुर राजघराना चो संग्रहालय ने सुरक्षित आसे। महाराणा प्रताप लगे गोटोक घोड़ा रलो हुंचो नाव चेतक रली। ये घोड़ा बले खूबे समझदार और वीर रलो और महाराणा प्रताप के बले चेतक घोड़ा के खूबे लाड़मया करते रला। गोटोक समय ने युद्ध बेरा ये घोड़ा 26 फीट चो घाटी के डगौन भाती महाराणा प्रताप चो जीवना के बले बचालो। असन तो महाराणा प्रताप आपलो जीवना ने कैक ठन युद्ध के लड़ला मांतर एमन चो जीवना चो प्रमुख लड़ाई आए 18 जून 1576 के लड़लो हल्दी घाटी चो युद्ध। ये युद्ध ने मुगल सेना लगे 80,000 ले आगर सैनिक रला और महाराणा प्रताप लगे 20,000 ची सैनिक रला। फिर बले यमन हार नहीं मानला और आपलो पराक्रम के दखाला और मुगल सेना के पाट गुचा जातो काजे मजबूर करला। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध चो पाचे चो समया पहाड़ और जंगल ने बिताला। आपलो पहाड़ी युद्ध शैली चो कारण ने यमन कैक हार मुगल सेना के मात दिला। ये समय महाराणा प्रताप के खूबे तकलीफ चो सामना करुक पड़ ली मानतर फिर बले ये आपलो आदर्श के नी छाड़ला। ये महाराणा प्रताप जो पराक्रम, धैर्य और मजबूत इरादा रहे कि यही कारण ने 30 बरस लगातार प्रयास जो पाछे बले अकबर महाराणा प्रताप के बंदी बनाओ नहीं सकलो। महाराणा प्रताप जो प्रिय घोड़ा चेतक रलो, जोन आप लो आखिरी सांस तक आप लो स्वामी चो साथ दिलो। आखिरकार जंगल ने शिकार खेलते समय के पावलो घाव चो कारण ने 19 जनवरी 1597 के चावंड नाव चो जगह ने एमन आखिरी सांस धरला। ये खबर के सुनून भाती अकबर बले खूबे दुखी होलो। हाँ तो पीलामन ये रहे सूरवीर महाराणा प्रताप चो जीवना चो गोट। आले एदाय सुनू ये गोटो गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जय गोट, प्रस्तुति थी रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या एवं न्यूज 8:09 अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी

0: ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें।

0: पहल करें, जहां तक कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर

0: रेडियो सुन तो सपाय भाई बहन मन के सेवा जोहार। तो देखा आमी आमचो रान आमचो जीवना ने रान बनचो गोड बात करूं से असन तो सबू जानास कि रान आमचो जीवना का जे कितलो काम दे से। भले ने जोन रान बन न्यासत होनेत मन जानुक सकोत कि हुन मनचो जीवना ने कितलो संग दे से रान। मंतर आमी ये जानुक सकूं कि जोन बाटे रान बनासे रुक रही आसे तो हुन बाटे बल्ले ने लहरा जोन आमी निरवा लहरा बोलूं से हुन मेरे से आरु जोन पर्यावरण प्रदूषण जोन बोलूं से हुन चले आमी बाचुक लाए सकूं से। तो असने ची आजे आमचो रान आमचो जीवना ये कार्यक्रम ने आपन मन के सुनाऊं से गोटोक हल भी नाटक रूक राय संगे जीवना।
1: लक्ष्मी ए लक्ष्मी लक्ष्मी ए लक्ष्मी कौन बाटे गेली जाले बायले बले आले ये गोड़ के धोएन ता ये कहाँ गेली सरे
2: इलासो भीतरे राना मंडालेस जानू होनी बाटे रहे। ये जाले काय होली हुन बस काने
1: आले खिंडी कस्तीर ने बसुक तो देस फेर सांगे दे आले उन कुर्चिक देसे बाटे शहर बाटले बले नहीं उन साहब मन उन रोत रान बन मोहकमा चो बड़े जनाब मन इवरला गांव चो स्कूल चो मास्टर ये सरपंच पटेल कोटवार पंच सब पाए रला।
2: जाले का हिसाब ने ए बस का के संगाउन रला हो मैं बले तो ये दे बोलून रहे मांतर रान बाटे नी गेले तो आमचो जीवना नी चले ए काजे नी अमर ले काय।
1: हुनी रानचो गोट काजे तो बस का हाक देव रहो रानचो राखा काजे रान बन राखा समिति बन ली से
2: हुन समिति तो आगत ले बनू रहे काय हो
1: बन तो काज तो बनू रहे काय मांतर आजी फेर उता सांगला कि रान बंचो कितरो मोला से मोचो बले मन के भेदली रे
2: असन
1: हो
2: जाले काय काय गोट के सांगला गुनफुन थाने
1: उता सांगला कि धखा आमचो जीवना ने रान कितरो काम दे से रान रले बरसा होए से बरसा होले बेड़ा खाड़ा चो कमानी होए से
2: असन आए ने
1: हो
2: रान रलो ने तो बरसा हुए सी ए गोट के आज ही जान ले
1: ओए रे मैं बोले तो मैं बोले आज ही ची जान ले और बरसा तो होए से चे संगे संगे नहीं नीनास धर तो काजे नगत लहरा बले रुख राई ले मिरे से मने हो
2: ये रुख राई ले लहरा बले मिरे से
1: हो
2: जाले रुख राई मन आमचो खूब बेकाम चो जीनी साथ
1: हो रुख राई ले नहीं लेहरा मिरे से तेबे आमी नीनास धरुक सकूं से और आमी रान बन के धीरे धीरे सारते जाऊं से रान बन कोनी दिने सरुन गेले सब पाए मनुक मांदी मरुन आरु सरुन जादे रे।
2: ये गोट के तो सत्य बल्ला सो जाले रान बन के बचाऊक लागे दे रान बन ले आम के मोहू टोरा सरगी चारपाक कएक ओसो जिनिस बले मिरे से रान बन नी रहले तो खूब बे मुश्किल होए दे
1: तेबे तो बोले से मैं आजी चो गोट मोचो जीव के भेदुन गेली
2: आले आले होली बे एबर ये सांगा राखा जगा काजे कसन कर सो थुन के
1: ये पारी हिसाब ने जातो राय मने काए आमचो पारी होले आमी बले जावा दख इदे हुन बाटे तू चो रांदा काय होली जाले ये बाटे भोरल लीसे जे
2: ये हो जाए से
3: एना कोटू कहाँ जासिस ना
1: ये नड़गु आए कायनो ये दे सरपंच लगे जाते रहे ना ये काचो काचो पारी लगलीस जाले खमन बाटे राखा करुक जातो राय माने काय
3: हाँ असन जाले मैं बोले आई देना मानतर ये गोट तो पंचायत भवन बाटी गेलो ने आम के सांगुन दे दे
1: है असन आए ने आले ते बे ये पंचायत भवन ची बाटे जाऊं नहीं सरपंच घर बाट फिर काय का जावा ता ने
3: हो हो
1: हो
3: ए ना
1: हां
3: राम साय लेका ना बया होलोस मने
1: है
3: हो
1: ई राम साय बया होलो
3: हां
1: ई फिर कसन बया होलो ना
3: असन बड़े बया नो आय ना
1: है
3: काके मार पेट नी करी
1: नी करे ने
3: मानतर असनी बया बुद्धि महा गोटो काम करे से हो निन मय बोले से ना
1: बया बुद्धि महा काम करे से
3: हो
1: ई तो परले होली ना काय काम करे से गुनुक
3: हुन काय के सांगुआस ना
1: है
3: हो नहीं डोरी के धरलो से
1: डोरी के ने
3: पूजा पोस्टा ने हाथे बांधुनु आत होनी डोरी चो गोचा के घेनु ना आनलो से और बूटा मन ने बांधे से बांधुन बांधुन बोलते जाय से
1: बोलते जाय से जाले हुन असन काय काज करे से ना
3: होन बोले से ना रुख रही मन आम चो संग संगवारी आ यही काजे ये मन के मैं मीत बांधे से असन बोले से ना
1: और काय करे से ना
3: और काय नहीं करे असने बुलुन बुलुन रहे से मचो मित मन के कोनी काय नहीं करा बले से दिन ने बुले से और सांझ बेरा घर ही ऐसे
1: और को कहीं कहीं नुकसान तो नहीं करे
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं को कहीं कहीं नुकसान नहीं करे ना
1: नहीं करे ने अरे दक ये गोठिया गोठिया आमी फिर ये अमरलू पंचायत भवन लगे ने आले आले जाऊं देखो ना
3: आले जाऊं जाऊं आले जाऊं
1: ये केबे केबे आम के राखा काजे जातराई जाले ने
3: हो आले जाऊं जाऊं जाऊं जाऊं जाऊं

0: देखा ना दादा मन और दीदी मन, ये रुख नहीं मचो मीतात, देखा एक एक कोनी नी लागा, नहाले हाँ नहाले मैं पखना ने मारे दे, हाँ मचो मीत के कोनी नी लागा।
1: एना राम साय
0: आय
1: तू काय करसीस बाबू,
0: आय
1: ये रुख राई सप्पायचो संग देवात ना, ये तुझे ही नहीं आमी सप्पायचो संगवारी आत ना बाबू, हो तू सत्ते बलसीस हो।
0: आय सप्पायचो संगवारी हे, अच्छा तो आय दादा सप्पायचो संगवारी आ, मचो मीत सप्पायचो संगवारी, मचो मीत सप्पायचो संगवारी, हाँ हाँ मचो मीत सप्पायचो संगवारी, हाँ अब और मैं दूसर रुक लगे जाए देता। हो मीत बांधो रुख राई के, मीत बांधो रुख राई के, हम के मया करुआ।
2: बया तो होलो से मानतर बया होन बले सोर चुगोट के गुठे आए।
1: हाँ तू सत्ते बल सिस रे, राम साय सोरा आना सत्ते गोट के बले से, रुख राई नीरलो ने आमचो जीवना काय होती, रुख राई आसे तेवे तो आमचो जीवना आसे।
3: मैं तो गोटोक विचार करें से ना,
1: हाँ,
3: गोटू
1: हाँ,
3: मोचो बाड़ीन जित्रो बर ठाना आसे ना,
1: हाँ, हाँ,
3: होता भीने भीने किसम चो गोटोक गोटोक बूटामो ना आए दे।
1: हाँ।
3: आवरु होन बूटामन के मैं नगद जतन दखा राखा करें दे।
1: हाँ।
3: बूटा रेले जीवना आए ए गोट के आजी मैं रामसाय बयाली समझ लेना।
1: हाँ, तू सत्य गोट के बल सी स्नानड़गू।
3: हाँ।
1: हाँ। ये रामसाय बया बुद्धि ने आसे मानतर सोर चो गोट के सिखाए से।
3: हाँ।
1: आम के सप्पाय लोग के गोट के सांग तो राय सिखा तो राय।
3: हाँ।
1: कि रुख रही रले जीवना आए।
3: हाँ।
1: आम के तो जसन रान बनासोत।
3: हाँ।
1: एके बले जित्रो होक सके।
3: हाँ।
1: जतन कर तो राय और उवाट कर तो राय।
3: हाँ ना।
2: आले आले करा से जतन, मान तरे बे घरे जाऊं।
1: हाँ।
2: खूब पे बुता से।
1: हाँ। आले जाऊं तेबे आल जो
3: जाओ जाओ जाओ जाओ
2: सुन सासो, राम साय उजर लो मने।
1: राम साय उजर लो जाले सुनु तो रहे, उनके कोचो लगाया जाले दखाउक लाए नीला सोत बोलून, जाले सुधर लो ने।
2: हाँ, कौन डॉक्टर के दखाला जाले, एबे नंगत होन बहुत लो मने।
1: मांतर गोटो गोट तो आए रे। बया बया कितरो बया दखले, मांतर असन गियांचो गोट सांगु बया मैं पहिल हार दखले।
2: गोट तो तुमी सत्य बल सास, बया होन बले कसन नंगत नंगत सोरसो तुर्च गोट मन के सांगते रहे ने।
0: काका कहाँ गेलिस ना?
1: राम साया आए, आओ बाबू आओ आओ भीतरे आओ, ये कुर्ची ने बस, ये भई आमी तुचे ही गोट के गोठे आते रहूं।
0: होए ना काका।
1: हाँ।
0: कसन हो रहे जाले।
2: हाँ।
0: मांतरे बे उजर ले जानू।
2: एदे बाबू एदे पानी एदे।
0: हाँ। मैं यही बाट ले जाते रहे, डंडी काका लगे ओलून दखें दे बल्ले का।
1: हाँ। अच्छा कर लीस बाबू, ये मांतर नहीं बाबू, तू के मैं गोटो गोट के सांगे से सुन है।
0: काय गोट आए गुनुक काका?
1: तू ही नहीं बाबू, खूबी अच्छा अच्छा गोट के सांगीस, रुख राई रले जीवना आए, रुख राई रले सप्पाए चो भले आए, असन सांगीस ना। दखनु ये तुच्चे लागुन मोचो बाड़ी ने रेटे रेटे धाड़ी ले मैं बूटा मन के मंडाले से।
0: असन आए जाले अच्छा थोली काका, एबे मैं विचार करें से जे काम के भया होन बया बुद्धि ने कर ले, हुनके असनी बले तो सबके समझाऊन करी होय देच।
1: हाँ, असनी बले समझालो ने नंगत गोट तो आए छे बाबू।
0: दखा काका और काकी।
1: हाँ।
0: रुख राई रले लहरा पानी नगत रहे से, बरसा नगत होय से। बरसा नगत होले हमचो बेड़ा खड़ा ने उपजन बले नगत होय से।
1: हाँ।
0: बेड़ा खड़ा धान पान नगत रले हमचो जीवना नगत चले से, ये हिसाब ले दखले रुख राई हमचो जीवना चो मुरात आत कसन।
4: तो दखा अपन मन सुनलास कि रुख राई संगे जीवना बले ने रुख राई रलो ने आमचो जीवना के कितलो नगद बनाव सके, आरु आमचो जीवना ने भले ने आमचो देह पाए ने जोन भले बीमारी से मारी आए हुन जो टुकलाए नहीं सके असन गुण आमचो रान बनने आसे। तो एवे भले समय आसे जितलो भले रान ने रुक रही आसे उनके बचाऊं और भले बूटा मंडा तो मोर करूं। सपाए रेडियो सुनतो भाई बिनमन के खूबे खूबे सेवा जुहार।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। रायपुर के पंडित दीनदयाल सभागार में आयोजित 19वें रोजगार मेले की रेडियो रिपोर्ट अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
3: ऑडिटोरियम में आयोजित 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
4: आज 23 मई को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल सभागार में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजन के मुख्य अतिथियों में माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद, अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात मंडल रेल प्रबंधक श्री पी दयानंद ने स्वागत उद्बोधन में कहा,
5: सर्वप्रथम आज के इस रोजगार मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तथा उन युवक युवतियों को हार्दिक बधाई जिन्हें आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि रोजगार मेले का यह 19वां आयोजन है तथा पूरे भारत वर्ष में कुल 47 स्थानों पर इसका आयोजन आज किया जा रहा है। इस मेले के तहत कुल 51,000 से भी अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे और आप सभी नव नियुक्तों को संबोधित करेंगे। रायपुर के कुल 803 युवाओं का चयन किया गया है। आज हम यहाँ पे कुल 257 नव नियुक्त उपस्थित हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात इनमें से कुल 25 नव नियुक्तों को स्टेज पर माननीय मंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अंत में सभी नव नियुक्तों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।
4: इसके बाद माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सभागार में उपस्थित अभ्यर्थियों, मीडिया से संबंधित और आम जनों को संबोधित करते हुए बताया,
6: पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर के इस पावन पवित्र सभागृह में मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, युवा साथियों तथा गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज 23 मई 2026 को पूरे देश में 47 स्थानों पर भारत सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले के इस भव्य आयोजन में हजारों युवा साथी एकत्र हुए हैं। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि भारत के युवाओं की प्रतिभा, उनके सपनों और उनके उज्जवल भविष्य का यह पावन पवित्र उत्सव है। यह वह मंच है जो हमारे देश के युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के आधार पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। आज देश में 19वें रोजगार मेले के कार्यक्रम में देश भर में लगभग 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन संपन्न हो रहा है। आज देश में कुल 51,000 से अधिक तथा रायपुर के इस कार्यक्रम में हमारे बेटे और बेटियां लगभग 257 कैंडिडेट जो फिजिकली तथा कुल 803 कैंडिडेट्स को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए जाएंगे। आज रेल विभाग के 200, डाक विभाग के लगभग 34, वित्त विभाग के 11, स्वास्थ्य विभाग के 7 एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 कैंडिडेट्स को इस मंच से स्वीकृति पत्रक प्रदान किए जाएंगे। बेटा, आज के इस अवसर पर देश के यशस्वी और शुभंकर प्रधानमंत्री जी की ओर से ये पत्रक वितरित करने के लिए मैं आपके बीच में हूं और देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं आपको हृदय से खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में रोजगार मेले की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य था अगले कुछ वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लगभग 11 लाख से अधिक युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दर्शाती है कि हमारी सरकार ने मिशन मोड में कार्य करते हुए बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए। 26 अप्रैल 2025 को आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में 51,000 से अधिक युवाओं को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए गए। 24 जनवरी 2026 को आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में लगभग 61,000 से अधिक युवाओं को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा रोजगार मेलों के माध्यम से गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं को नियुक्त किया गया है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की आशाओं और सपनों की कहानियां हैं जिनके बच्चे आज आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो हर युवा को अवसर प्रदान करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण है। बच्चों, विकसित भारत 2047 की नींव हमारे युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और समर्पण पर टिकी है। रोजगार मेले का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनका उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना है। रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को न केवल नौकरियां दी जा रही हैं, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। यह मेला युवाओं को आत्म सशक्तिकरण का अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। 13 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि भाषा कोई बाधा न बने। रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नए नियुक्त कर्मचारियों को कर्मयोगी प्रारंभ जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 1400 से अधिक ई लर्निंग कोर्स उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में प्रगति के नए कीर्तिमान, नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों ने युवाओं को एक नई दिशा दी है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बच्चों, स्टार्टअप की संख्या 2014 के 100 से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे 8-9 करोड़ लोग पहली बार उद्यमी बने। लखपति दीदी योजना ने 1.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिससे वे नौकरियों और स्वरोजगार की

0: तैयार हुई है। युवा साथियों, आप इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा राष्ट्र है, जहां पर 65% युवा भारतवर्ष में निवास करते हैं। आज आपको जो अवसर मिल रहा है, यह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप इस अवसर पर का पूरा लाभ उठाएं, अपने कौशल को निखारें और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। रोजगार मेला भारत सरकार की उस सोच का प्रतीक है जो युवाओं को सशक्त बनाकर देश को मजबूत बनाना चाहती है। यह मेला केवल नौकरियां प्रदान नहीं करता बल्कि यह आशा, विश्वास और आत्मविश्वास का संदेश देता है। आज मैं सभी युवाओं को, सभी हमारी बेटियों को जो आज यहां इस रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, एक बार फिर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार खूब सारी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपना संक्षिप्त वक्तव्य यही विश्रांति की अनुमति चाहता हूं। जय हिंद।
1: तत्पश्चात माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने सभागार में उपस्थित अभ्यर्थियों और आमजनों को अपने उद्बोधन में कहा,
2: रोजगार मेला के तहत 51,000 नियुक्ति इस देश में दिए जाने हैं और सीधे नियुक्ति पत्र देने के लिए यह आयोजन किया गया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह 19वां आयोजन है। इस आयोजन में कुल 47 स्थानों पे आयोजन किया जा रहा है और इस मेले के तहत जो प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे और नव नियुक्तों को संबोधित करेंगे, यह हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से इस देश में उन्होंने देश की कमान प्रधानमंत्री के रूप में संभाली और लगातार इस देश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में उन्होंने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूं कि वो इस देश की युवाओं को रोजगार देकर उनके आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। रायपुर के कुल 803 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें रेलवे के कुल 724, डाक विभाग के 34, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के 28, स्वास्थ्य सेवाओं के 12 और हिंदुस्तान कापर लिमिटेड में 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो दिया जा रहा है। आज इस स्थल पर कुछ कुल 257 नवनियुक्त उपस्थित हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात इनमें से कुल 25 नवनियुक्तों को स्टेज पर माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं और हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी जो यहां पहुंचे हैं, मैं उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: इसके पश्चात माननीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली भारत के 47 स्थानों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण और संबोधन किया गया।
0: साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी

की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें यहां पहुंचाने के लिए हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में

0: नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। बड़े नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात सभागार में उपस्थित भारत सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों से हमने बात की और उन्होंने बताया,
2: आपका नाम और आप कहाँ से हैं?
3: मेरा नाम सनी कुमार है और मैं बिहार से हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से था, ग्रामीण डाक सेवक में, यहाँ बस्तर डिवीजन में था मैं
2: जी।
3: तो इसी कारण से मैं यही फॉर्म डाला और यहीं पे मेरा सिलेक्शन हो चुका है। हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रूप में।
2: कितनी तैयारियां की फिर आप, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे पद पर थे आप, और उसके बाद फिर ये?
3: मैम, तैयारी तो 2021 से चल ही रही थी, तो 2023 में मैं जेडीएस में सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद से मेरा लगभग 0.5 मार्क्स से

0: में, किसी में 1 mark से रह जा रहा था, तो इसी कारण से इस कारण से डिले हुआ मैं, और आखिर में जाकर के ये बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे लाइफ में अभी आया मैं।
1: प्रधानमंत्री की जो पहल है रोजगार मेला आयोजित करके नियुक्ति पत्र प्रदान करना, ये आपको कैसा लगता है?
0: ये बहुत बढ़िया पहल है मैम, और जैसा कि ये 19वां रोजगार मेला था, तो जिसमें मोदी जी ने बोला है कि लोगों को ये रोजगार नहीं प्रदान करता है, एक आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्रोत बनता है मैम, तो ये सबसे बढ़िया पहल है मैम। यही संदेश, एक ही संदेश है कि जो जिस चीज की भी तैयारी आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हों, लगातार उसमें मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ जुड़े रहें, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे जिस फील्ड में भी हों।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी को।
2: नीरज कुमार सिंह,
3: आपको किस पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है?
2: असिस्टेंट लोको पायलट।
3: असिस्टेंट लोको पायलट जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
3: और आपने इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की?
2: मतलब 1-1.5 साल तो अच्छे से मेहनत की, इसलिए मिला हुआ यह पोस्ट।
3: जैसे इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए कुछ बता सकते हैं युवाओं को कि किस तरह के मतलब विषय पढ़ने पड़ते हैं, किस लाइन पे जाना पड़ता है?
2: इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है, तो दोनों पे ध्यान देना पड़ता है।
3: बहुत बहुत बधाई आपको आपके पद प्राप्ति के लिए।
2: थैंक यू, थैंक यू।
4: हेलो, नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
5: सूरज विश्वकर्मा।
4: तो कौन से पद के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
5: जी, मैं रायपुर डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए नियुक्त हुआ हूँ।
4: असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ पहले आपको इस पद के लिए।
5: जी धन्यवाद।
4: और कितनी मेहनत की आपने, हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या तैयारियाँ की आपने?
5: तैयारी तो मैम करनी पड़ती है, इसमें बहुत अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, कम से कम 1 साल तो लगता है इसके पीछे।
4: जी
5: जी,
4: आज आपको इतना बड़ा मतलब पोस्ट मिल चुका है, तो हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
5: श्रोताओं को कहना चाहेंगे मेहनत करते रहिए, आपका भी समय आ जाएगा। मोदी जी ने अच्छा अभिवादन दिया सबको, खुश तो सभी हैं, परिवार वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, सभी खुश हैं।
6: मैं हेमंतपुरी गोस्वामी।
4: सर आप कहाँ से?
6: मैं दुर्ग से हूँ, और मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है एज अ CSA।
4: जी, सबसे पहले तो इस पद के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।
6: जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
4: और इस पद को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है सर?
6: मैं 2020 में से प्रिपरेशन शुरू किया था, और 2025 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो लगभग 5 साल लगे मुझे। कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती थी, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब अवसर से हम दूर हो जाते थे, बाकी अभी 2025 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी देखिए, तो सभी को बहुत सारी खुशियां होती है, घर वाले भी काफ़ी खुश हैं कि जितना भी मेहनत करें बस दिल से करें, सिलेक्शन जरूर होता है। कभी कभी थोड़े से नेगेटिव्स वाले लाइफ आते हैं, बट लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू।
3: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
7: मेरा नाम देवाशीष मजुमदार।
3: जी देवाशीष जी, आपको कौन से पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
7: एज अ CSA इन बैंक ऑफ बड़ौदा।
3: अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
7: बहुत अच्छा लग रहा है।
3: और आपने इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की?
7: मैं लास्ट ईयर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ June 2025 में, एंड मुझे 1 साल लगा प्रिपेयर करने के लिए, ऑलमोस्ट 6 महीना प्रिपेयर करने के लिए लगा, एंड आज सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है इस बात की।
3: और आप युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं?
7: हाँ, युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब आप हमेशा मेहनत करते रहिए, एंड जो भी एग्जाम्स हैं उसको अच्छे से दीजिए एंड क्लियर कीजिए, दैट्स इट।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बधाई आपको आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए।
7: थैंक यू।
8: पुष्पांजलि ठाकुर।
3: पुष्पांजलि जी, आपको कौन से पद पर अब नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
8: मेरे को ABPM पोस्ट पर मिला है, मर्रा BO में।
3: इसमें किस तरह के कार्य होते हैं ABPM?
8: मुझे आर्टिकल मिलेगा, उसको गांव-गांव पहुंचाना होगा, जहां मेरे आश्रित गांव है।
3: जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये पत्र प्राप्त करके?
8: बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, तो अभी जनवरी में फॉर्म आया था GDS का, तो मैं गूगल में सर्च की कि ये कौन सी पोस्ट है, क्या क्या होता है, और मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती थी, अपना खर्च खुद उठाना चाहती थी, तो ये पोस्ट में फॉर्म डाली, फिर मेरा फर्स्ट लिस्ट में आया नाम मर्रा BO में।
9: इस तरह आज 23 मई को रायपुर के पंडित दीनदयाल सभागार में 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण और रोजगार मेले समारोह का समापन हो गया।
10: रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। कार्यक्रम पाड़ में आइए सुनते हैं परदेसीन माता पाड़। वादक कलाकार हैं खगपति और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: आप सुन रहे थे फिरंता पहाड़। वादक कलाकार थे खगपति और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचार अब हम क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।